ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 1, तदनुसार 22 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। सुनते हैं चिंतन, वाचन और निर्माण सुरेंद्र झा का है।
1: किसान भाई लोकन,
2: मृत्यु और मां अमृतंगम है। हमरा मृत्यु सा अमृतत्व दिसलो चलू, ई उपनिषद कालीन प्रार्थनाक अंश थिक। मृत्यु सदैव भयोत्पादक रहल अछि। एहन के अछि जकरा मृत्यु सा भय नहि हो? संगहि अमरता ककरा प्रिय नहि छैक? ई मृत्यु आ अमरत्वक विचार सदैव मानव मन के मथैत रहल अछि। भगवान बुद्ध अमरत्वेक जिज्ञासा में गृहत्यागी भेलाह। नचिकेता मृत्यु आ अमरत्वक विभेद बुझक लेल यमराज लग गेल रहथि। प्रायः सब तत्ववादी दार्शनिक मृत्यु आ अमृतत्वक विवेचना कलने अछि आ सांख्यवादी दार्शनिक तो मृत्यु के मानते ही नहीं छथि। महाभारत में सनत सुजात अमृतत्वक स्वरूप स्पष्ट कलने अछि। सनत सुजात धृतराष्ट्र संवाद में नियतिवाद आ कर्मवादक विरोध स्पष्ट रूपेण उल्लिखित अछि। धृतराष्ट्र नियतिवादी छलाह, किंतु विदुर, सनत सुजात, कृष्ण आदि नियतिवादक समर्थक नहीं छलाह। ओ लोकनि प्रज्ञावादी वा आयतिवादी छलाह। आयतिवाद स्पष्टतः नियतिवादक विरोध करै छल। हमरा लोकनिक मूल प्रश्न ई अछि जे मृत्यु की थिक आ अमृतत्व ककरा कहै छै। प्रज्ञावादी मोह के मृत्यु कहै छथि। मोहक त्याग अमृतत्व थिक। दोसर शब्द में प्रमाद मृत्यु थिक आ अप्रमाद अमृत थिक। असुर लोकनिक पराभव प्रमादे के कारण भेलनि। ब्रह्मवादी अप्रमादक आश्रय ग्रहण क ब्रह्मपद वा अमृतक अधिकारी बन जाय छथि। मृत्यु के कोनो प्रकट रूप नहीं अछि। ओ बाघ जका जीव के नहीं खाय छै। मृत्यु बाहर सँ नहीं अबै छै, ओ त जीवधारी के देह में निवास करै छै। कोना शरीरस्थ प्रमादे मृत्यु थिक। क्रोध मोहादि दुर्गुण शरीर में रहनिहार ओही मृत्यु रूप प्रमादक वाहन अछि।

0: एहिसँ मोहित व्यक्ति एहिठाम मरिकऽ ओहिठाम जाइ छथि आ पुनः ओहिठामसँ एहिठाम अबै छथि। बौद्ध आ जैन दार्शनिक लोकनि सेहो प्रमादकेँ मृत्यु आ अप्रमादकेँ अमृत कहलनि अछि। अप्रमादो आमत पदं प्रमादो मच्चतो पदं अप्रमत्ता नमीयन्ति जे प्रमत्ता मता जथा। संसार भरिक दुखवादी दार्शनिक मृत्युकेँ महादुखक संज्ञा देलनि अछि। एहि मृत्यु दुखसँ त्राण पेबाक अनेक प्रकारसँ मीमांसा होइत रहल अछि। वैदिक दृष्टिकोणक अनुसार ब्रह्मचर्य आ तप द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त कयल जा सकैत छै। अथर्ववेद में कहल गेल अछि, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। ज्ञान मार्गी सांख्यविद लोकनिक मतानुसार मृत्युक कोनो अस्तित्व नहीं अछि। सांसारिक विषय भोग दिस आँखि मुनिकऽ दौड़निहार व्यक्ति मृत्युतुल्य अछि। विषय में गुण देखब पहिल मृत्यु थिक। विषयानुवर्ती होइते ही मनुष्य काम आ क्रोधक वशीभूत भऽ जाइत छै, ई ओकर दोसर मृत्यु थिक। अंतरात्मा में काम क्रोध मोह मत्सर आदिक प्रवेश आत्माक हनन करै छै, यह थिक मृत्यु। जे मनुष्य मृत्युक एहि रहस्यकेँ बुझि लै छै ओकरा लेल मृत्यु भय समाप्त भऽ जाइ छै।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचन और निर्माण सुरेंद्र झा का था। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, सुनते हैं कृषि चर्चा। वाचन अनिल कुमार कर्ण के हैं।
2: किसान भाई लोकनि, आजुक कृषि चर्चाक संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। आइ कृषि चर्चा में हम सब एहन विषय पर चर्च करब जकर सटीक जानकारी सब गोटेक लेल आवश्यक अछि। ओना ई काज अंदाज सँ वा एक दोसर के अनुभव सँ ई काज हम सब बहुत वर्ग सँ करैत आबि रहल छी, मुदा हम सब विज्ञानक युग में जीव रहल छी, एकर ठीक जानकारी रहब बड्ड बेसी आवश्यक अछि। ओ काज अछि फसिल में उर्वरक सभक सही मात्राक निर्धारण कोना करी, आवश्यक पोषक तत्व के मात्राक लेल उपयुक्त खाद और उर्वरक के मात्रा सँ प्राप्त पोषक तत्व के मात्रा के ज्ञात करबाक लेल किछ खास गप पर ध्यान राखब आवश्यक अछि। एकरा एहि तरह आसानी सँ बुझल जा सकैत अछि जे मान लेल जाए अपने 150 किलोग्राम अंडी के खली प्रति हेक्टेयर के दर सँ अपने खेत में व्यवहार कयलहुँ आ अपने ई जानय चाहै छी कि एहिसँ कतेक नाइट्रोजन के प्राप्ति भेल। अंडी के खली के 1 किलोग्राम में 0.042 गुणांक अछि। आब अपने 150 किलोग्राम के 0.042 सँ गुणा करब तो गुणन फल 6.300 भेटत। कहबाक तात्पर्य ई भेल जे अपने के एहिसँ 6.3 किलोग्राम नेत्रजन के प्राप्ति भेल, अर्थात 6 किलोग्राम 300 ग्राम नेत्रजन के प्राप्ति भेल। ठीक एहिना 25 किलोग्राम नेत्रजन के व्यवहार अमोनियम सल्फेट के रूप में करबाक अछि, तो अमोनियम सल्फेट के गुणांक 4.85 अछि। अपने के 25×4.85 के गुणन फल हैत 121.25, अर्थात 25 किलोग्राम नेत्रजन प्राप्त करबाक लेल 121.25 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट के व्यवहार करबाक चाही। एहि विधि सँ हमसब कोनो उर्वरक वा खाद में उपस्थित पोषक तत्व के मात्रा प्रतिशत में जँ ज्ञात अछि तऽ हमसब खाद वा उर्वरक के मात्राक निर्धारण कऽ सकै छी। एहि लेल हमसब एहि सूत्र के मदद सेहो लऽ सकै छी, ओ अर्थात व्यवहार कयल गेल उर्वरक में पोषक तत्व के मात्रा, ब व्यवहार कयल गेल उर्वरक के मात्रा, स उर्वरक में व्यवहार कयल गेल पोषक तत्व के प्रतिशत मात्रा। आब अ बराबर ब गुणे स बटे 100। ठीक एना दोसर सूत्र अछि क बराबर त गुणे 100/100। क भेल अपने के उर्वरक के वांछित मात्रा, त व्यवहार कयल जाय वाला कुल पोषक तत्व के मात्रा। एहि गप के विस्तार सँ जानकारी के लेल हमसब कोन खाद वा उर्वरक में पोषक तत्व के कतेक प्रतिशत उपस्थित अछि, यूरिया खाद में प्रति किलोग्राम उपस्थित नेत्रजन के प्रतिशत

0: मात्रा अपने के 46.0% अच्छी। ठीक एहना अमोनियम क्लोराइड में प्रति किलोग्राम उपस्थित नेत्रजन के मात्रा 20.6% अच्छी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नेत्रजन के मात्रा 25.0%, अमोनियम क्लोराइड में 25.0%, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन के प्रतिशत मात्रा 16%, सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस के मात्रा 16%, डाई कैल्शियम फॉस्फेट में 38%, सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस के मात्रा 16%, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस के मात्रा 48%, म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास के मात्रा 60%, पोटासियम सल्फेट में पोटास के मात्रा 48%, 200 किलोग्राम गोबर के खाद के ये गुणांक 0.005, कंपोस्ट के 250 किलोग्राम के गुणांक 0.004, गंधक आधारित जे प्रेस्मोडाई 100 किलोग्राम में 0.010। तो किसान भाई लोकन अ तरह हम सब कोनो खाद व उर्वरक में प्राप्त नेत्रजन व पोषक तत्व के कतेक प्रतिशत उपस्थित है, कतेक मात्रा में व्यवहार करक चाहिए, हम नीक जकां जानकारी प्राप्त क सके छी। एहि लेल विशेष जानकारी के लेल अपने कृषि विज्ञान केंद्र व कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क क जानकारी प्राप्त क सके छी। आजुक कृषि चर्चा के समय सम्पन्न हेबा पैछ, अनिल कुमार कर्ण के चलवाक आज्ञा देल जाए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, वाचन अनिल कुमार कर्ण के थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। अब आप समाचार सुनेंगे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से डिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए

0: 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमण कुमार वर्मा, इनसे बातचीत कर रहे हैं PN झा। विषय है मोतियाबिंद कारण और लक्षण।
3: चर्चा के इस अंग में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, जो आंख के रोग के विशेषज्ञ हैं, साथ ही गला नाक कान के भी विशेषज्ञ हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे अपने श्रोताओं के लिए मोतियाबिंद के कारण और उसके निदान पर। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद का ये है क्या, कारण क्या है?
4: मोतियाबिंद हमारे देश में अंधापन का प्रमुख कारण है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त आंखों की पुतली के मध्य में एक पारदर्शक लेंस होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें आँखों के अंदर प्रवेश कर दृष्टि पटल, जिसे

0: रेटना कहते हैं, पर छवि बनाती है और मनुष्य देख पाता। बढ़ती उम्र के कारण या किसी अन्य कारण से भी पारदर्शक लेंस में सफ़ेदी आ जाती है या लेंस अपारदर्शक हो जाता है।
1: यानी ये जो
0: अपारदर्शक लेंस को मोतियाबिंद कहते हैं।
1: इसके कारण क्या है?
0: मोतियाबिंद, सबसे सामान्य मोतियाबिंद बढ़ती उम्र के कारण 50 से 60 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। यह धीरे धीरे बढ़ता है और रोगी की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। उम्र के कारण जैसे बालों में सफ़ेदी, चमड़े में परिवर्तन होता है, उसी तरह लेंस में भी परिवर्तन आता है। हेरिडिटी या अनुवांशिकता की भी इसमें प्रमुख भूमिका है।
1: क्या इसमें खान पान का भी कोई असर होता है?
0: जी हाँ, निश्चित ही। भोजन में विशेष रूप से प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, खासकर विटामिन सी, राइबोफ्लेविन की कमी और विटामिन ई की कमी से मोतियाबिंद की संभावना बढ़ जाती है।
1: तो इसके अलावे और क्या क्या जो प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक या रासायनिक कारण हो सकते हैं जो आँखों पर असर डालते हैं?
0: अन्य प्रमुख कारणों में सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनका आँखों पर असर होता है, और यही कारण है कि हमारे देश में मोतियाबिंद के रोगी ज़्यादा हैं। यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। सिगरेट पीने वालों में भी मोतियाबिंद उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। चोट, आँखों में चोट लगने के कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है।
1: क्या डायबिटीज़ वगैरह अगर किसी को हो रक्त में या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो, इन सब का भी असर होता है क्या मोतियाबिंद?
0: डायबिटीज़ का तो असर होता है। डायबिटीज़ के असर से मोतियाबिंद आँखों में हो सकता है, और आँखों में पहले से मोतियाबिंद है तो वो और उसका उपचार न किया जाए तो मोतियाबिंद जल्दी पकता है। अब कभी कभी ये भी देखा गया है कि बच्चों में जन्म से ही मोतियाबिंद होता है। इसके अलावा आँखों में कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके असर से भी, जिनके कॉम्प्लिकेशन से भी मोतियाबिंद हो सकता है।
1: तो इसको कैसे पहचाने का? एक आम आदमी उसका लक्षण कुछ होता होगा जो पहचान सके?
0: जी हाँ, मोतियाबिंद के रोगी के आँखों की रोशनी बिना दर्द के धीरे धीरे कम होती जाती है। एक ही चीज़ का दो या तीन दिखना या चार दिखना, इसे डिप्लोपिया या पोलियोपिया कहते हैं, ये हो सकता है। और आम तौर पे ये भी देखा गया है कि किसी रोशनी के स्रोत के चारों तरफ रंग बिरंगे धारियों वाले, जिसे कलर्ड हैलोज कहते हैं, वो उत्पन्न होता है, और रोगी की शिकायत होती है कि उसे रोशनी के चारों ओर इंद्रधनुषी रंग दिखाई पड़ रहा।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की स्वास्थ्य चर्चा में मोतियाबिंद क्या है, उसके लक्षण क्या है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, विषय था मोतियाबिंद कारण और लक्षण। इसमें विशेषज्ञ थे डॉक्टर रमण कुमार वर्मा, इनसे बातचीत कर रहे थे पीएन झा। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में हम सुनते हैं सबसे पहले देशभक्ति गीत संवेद स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत संवेद स्वर में। अब सुनते हैं भक्ति संगीत के अंतर्गत जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम जय राम इस बोल के साथ ये भजन। गायक कलाकार थे पुरुषोत्तम दास जलोटा। अगला भजन लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, और कार्यक्रम के अंत में जगजीत सिंह की आवाज़ में एक और भजन सुनते हैं।

जगजीत सिंह के द्वारा गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। अब निवेदित है रामचरितमानस गान।

के बाद उनके उदर में अनगिनत ब्रह्मांडों के दर्शन प्राप्त हुए। काकभुशुंडी ने 100 कल्प उन ब्रह्मांडों में बिताए। जब अयोध्यापुरी में श्री राम अवतार का समाचार सुना तो हर्षित हो वहां जा पहुंचे, श्री राम जन्म महोत्सव देखा, किंतु फिर भी मोह नहीं मिटा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर थे ए हरिहरण के। श्रोताओं, आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे आप सुनेंगे, 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। सुबह 8 बजे समय होगा समाचार प्रभात का। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे 9:10 पर, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे।

फिल्म संगीत आप हमारे इस सभा में सुनेंगे 10 बजे, दोपहर 12 बजे, 1:15 पर आपकी फरमाइश के अंतर्गत आप फिल्म संगीत सुनेंगे, और इसके साथ ही 2:30 पर भी आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार होंगे अलाउद्दीन खान। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे 11:30 पर, और महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी संसार का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 12:30।

0: 1:10 पर कुछ देशभक्ति गीत आप सुनेंगे और 2:10 पर रोजगार सूचना प्रसारित की जाएगी। दोपहर समाचार का समय होगा 2:15 पर। संध्या 5 बजे आप सुनते हैं युववाणी कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आप सुनिएगा तरुण कुसुम। विद्यापति गीत आप सुनेंगे शाम 6:15 पर और मैथिली में संवाद आप सुनेंगे 6:25 पर। गांव घर का समय होगा 6:30 पर संध्या काल, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे नन्हा मुन्ना राही। संध्या 7 बजे खेती गृहस्थी का समय होगा। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे रात 7:30 पर। सिंगरहार 8:15 पर प्रसारित किया जाएगा और समाचार संध्या 8:45 पर आप सुनेंगे। हेलो आकाशवाणी का समय होगा रात 10 बजे। अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडॉलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडॉलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहलीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुंबईनगरम् अपि गतवान्। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्पर हितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरं अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि

0: मेलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीय सहभागी रूपेण पश्यतीति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येक वर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोति इति। सः अवदत् यत् प्रधानमंत्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्ति इति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मक राजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने कांग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागीरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वेण्टम् कम्प्यूटिङ्ग् अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्र लुण्ठनं सागरीय आतंकवादः मादकद्रव्याणां क्रय विक्रयणम् अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रित मत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्र स्राव प्रकरणस्य प्रमुख विकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषण विभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषण संस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञात भुशुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपणचक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात

नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के आरंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री

0: आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल सेट के माध्यम से न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: तक बुनल जाए थी कतौ ने कतौ हमारा प्रेरणा स्रोत अछि। और एकरे कुशल हमारा लोकन बाल्यावस्था में जखन रही तो एकरे बड़ा सुंदर रहीम के एक अथी छलन है दोहा, रहीमन निजमन के बथा मन ही राख गोई सुनट रही है लोग सब बाँट न लै है कोई, तो कतौ ने कतौ अहाँ के जे अपन प्रोग्राम है अपन प्लानिंग है ओकरा कतौ ने कतौ अपना भर सीमित रह के ओहि पर आगा बढ़वाक चाही, ओकरा वैचारिक तौर पर ओकर प्रचार प्रसार नहीं करबाक चाही। और सुविचार के बाद हमारा लोग एक डेग और आजुक नमस्कार मिथिला के अंक में बढ़ाबित और जानकारी साझा करे श्रोता लोग आजुक दिनक इतिहास के संबंध में तो जानकारी साझा कर रहल छथि कुशल कुमार।
1: आज के दिन 1849 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने नावों को उतले पानी में उठाने के लिए उपकरण पेटेंट कराया। ऐसा करने वाले वह अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति बने। सन 1906 में आज ही के दिन राइट बंधुओं ने अपनी प्रसिद्ध फ्लाइंग मशीन के लिए अमेरिकी पेटेंट हासिल किया। सन 1984 में आज ही के दिन बछेंद्री पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा लहराया। और जैविक विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल यानी आज ही के दिन 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है।
0: तो आजुक दिनक इतिहास के जानकारी साझा कर कुशल कुमार देखु और हम लोग आई कुशल आजुक नमस्कार मिथिला कांग्रेस हम लोग चर्चा अही बात पर विषय पर करब बातचीत श्रोता लोग करब जे जैव विविधता के आजुक समय में कतेक जरूरी भ गेल है। आजुक विभागाभारी जिंदगी कतौ ने कतौ जे क्लाइमेट चेंज भ रहल अछि ग्लोबल वार्मिंग के संकेत वैज्ञानिक के द्वारा भेट रहल मौसम मौसम वैज्ञानिक जे छथि से बेर बेर कतौ ने कतौ की संकेत करै छै, तऽ जैव विविधता कतेक असर आबऽ वाला पीढ़ी और आबऽ वाला समाज पर पड़तै ताहि विषय मे हमरा लोकन चर्चा आजुक दिन में सेहो करब। मुदा नमस्कार मिथिला के हमरा लोकन के परम्परा है परिपाटी तकरा फिर एक बेर पुनरावृत्ति करैत दोहराबै छी। और सबसँ पहिले जे श्रोता लोकन के इंतजार रहै छनि मैथिली गीत के भोरे भोर आउ ई भोरे भोर सबसँ पहिले श्रोता लोकन के लेल हम आई सुंदर सन मैथिली गीत सुनै छी, ओकरा बाद फिर कार्यक्रम में हमरा लोकन पुनः वापस आब। आउ श्रोता लोकन अखन सुनै छी सुंदर सन मैथिली गीत।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार श्रोता लोकन, आजुक नमस्कार मिथिला कंक में हम रंजीत और हमारे संगे छुवचित कुशल हूँ। हमारा नमस्कार
0: रंजीत जी, आपको भी मेरा नमस्कार और साथ ही साथ नमस्कार मिथिला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुशल का प्यार भरा नमस्कार।
1: और जना कि श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हम लोकन करै छी सुविचार सँ, तो सबसे पहले आजुक सुविचार।
0: आज का सुविचार है चाणक्य नीति से, अपने रहस्यों को कभी किसी से उजागर मत कीजिए। किसी को ये रहस्य मत बताएं कि आपने क्या करने का सोचा है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे रहस्य बनाए रखते हैं और समझदारी से अपना कार्य करते हैं। यह है चाणक्य नीति।
1: देखियो आचार्य चाणक्य जैसा

0: कुमार विश्वकर्मा और वैज्ञानिक के ओर सौ प्राकृतिक खेती और समाकृतिक कृषि प्रणाली एलायंस के तरफ सौ महिला के जानकारी देल गेल। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में गुरुवार को मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना अंतर्गत जिला के 8 गो लाभु के बीच व्हीलर वाहन आइस बॉक्स सहित किट वितरण कैल गेल। वाहन वितरण में सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और मिथिला क्षेत्र के कतेको विधायक उपस्थित छला है। संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के तत्वावधान में डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रतियोगिता परीक्षा DCECE के आयोजन 23 और 24 मई को है। DCECE के आयोजन शहरी क्षेत्र में कुल 21 गो परीक्षा केंद्र पर 23 मई को, जखन कि 24 मई को DDCEIPM के आयोजन 11:01 के बैच का 15 मिनट तक लेल जाए। ओतए दोसर 4 बजे पत्र वहन तक कैल जाए। दरभंगा नगर समाहरणालय सभागार में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा के 2 दिवसीय बैसार के अंतिम दिन गुरुवार को कतेको विभाग के समीक्षात्मक में समीक्षा कैल गेल। एहि दौरान सांसद कतेको महत्वपूर्ण निर्देश देलन। सांसद कहलन कि दिशा समिति केंद्र सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण निगरानी समिति है। एकर प्रस्ताव के अनुपालन में कोनो प्रकार के शिथिलता स्वीकार नहीं कैल जाए। पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान पंचायत सरकार भवन के निर्माण, लंबित मामला और न्यायालय में विचाराधीन मामला के अद्यतन सूची उपलब्ध कराबों के निर्देश सेहो देल गेल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम क्लब्स के नज़ारा गुरुवार का थोड़े बदलल नजर आयल। सुविधा के घोर अभाव के लक अखबार में छपल के बाद ओठमन पोस्टमार्टम के परिसर में बदहाली में चेंज भ गए। आब ओत पंखा पेयजल और बैसों के व्यवस्था आम आदमी के लिए क दिल गए। बेनीपुर के NMM ट्रेनिंग स्कूल में MDM बेनीपुर बुधवार को 25-27 सत्र के छात्रा के कैंपिंग सरनेमी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कैल गेल। जैमे सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार कहलन कि अहाँ के शिक्षा देश के बचाव के लिए सबसे पैघ स्मरण और विपदा साबित भ सकते है। वो कहलन कि शिक्षा के बिना मनुष्य के जीवन अधूरा रहत ता लक शिक्षा मनुष्य के सबसे पैघ पूंजी मानल जाते। अही के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होते। नमस्कार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: तो रंजीत जी, आप कार्यक्रम में बात करते हैं कुछ मौसम संबंधित। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 20 से 24 मई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तरी बिहार के अनेक जिलों में गरज वाले बादल बनने की संभावना है। इसके चलते कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वर्षा के समय तेज हवा चल सकती है, इसकी संभावना भी है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 25 से 30% रहने का अनुमान है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 14 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है।
0: जो हम बात करें सवालों का यातायात संबंधी के जानकारी के बारे में, तो बताबे चली जे यातायात संबंधी के जानकारी में सबसे पहले हम बात करी सड़क मार्ग के। तो शहर में 1-way सिस्टम आइयो लागू है, ओमे कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गेल। जो कोनो VVIP मूवमेंट के कारण सड़क मार्ग में अगर परिवर्तन कैल जाए तो एकर सूचना अपने लोकन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के द्वारा जरूर देल जाए।

0: लेकिन एकटा मरीके लिए कोनो बात नहि छै। आइ अहाँ देखबै जे वैज्ञानिक, आइ वैज्ञानिकके युग छै, लोक वैज्ञानिकके पाछा ज्यादा विश्वास करऽ लगलखिन हँ। आइ विज्ञान कहै छै जे फलाना पक्षी विलुप्त भऽ गेलै, लेकिन ओकरा बचाबऽ लए सरकार अरबों रुपैआ खर्चा कऽ रहल छै। किएक ई बात केओ कोइ हमरा लोकनि सोचलियै जे आखिर ई जीव समाप्त भऽ गेलै प्रकृतिसँ, चाहे एगो दूगो बचि गेल छै बिरले, तऽ ओकरा जिन्दा राखऽ लेल सरकार लाखों रुपया खर्च किएक कऽ रहल छै? ओकर की उपलब्धि छै प्रकृतिमे? जाँ ओकर उपलब्धि छै प्रकृतिमे, जाँ ओकर जरूरत छै प्रकृतिके, ताँ सरकार ओकरा पाछाँ ओतेक रुपया खर्च कऽ ओहि जीवके, ओहि पशुके, ओहि पक्षीके, ओहि मानवके, ओहि सभ्यताके पालऽके प्रयास कऽ रहल छै। ओहिमे कतौ सफल होइ छै, कतौ असफल होइ छै। तऽ घुमा फिराके बात अबै छै ओतेक जैव विविधताके अगर हम देख लियै तऽ अहाँके अपना अगल बगलके समाहौलमे जतेक जीव जन्तु, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा देखै छियै, सबके प्रकृतिमे जीवाक अधिकार सुरक्षित छै। ओकर अधिकार अहाँ हनन नहि करियौ। अगर जंगल छै तऽ जंगल जंगली जीव ओहिमे रहै छै, ओ ओकर घर छै, ओकर अधिकार अहाँ हनन नहि करियौ। जल छै, ओहिमे जलीय जीवके जीवन यापन भऽ रहल छै, एहि प्रकृतिमे सन्तुलनमे ओकर कतौ ने कतौ योगदान छै, ओकर योगदान देबसँ ओकरा अहाँ नहि रोकियौ, यानि पोखरि झाखरि नहि भरबियौ, गाछ वृक्ष नहि कटियौ, तखने जैव विविधता।
1: लेकिन रंजीत जी, लोग आज के समय में अपना मकान और ऊंची इमारतें बनाने के चक्कर में आप भी देख रहे हैं कि जितने भी तालाब हैं, नदी हैं, सबको भरा जा रहा है, और पेड़ तो कट ही रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं कि पेड़ अब विलुप्त होते जा रहे हैं और उनके बदले पक्की पक्की बिल्डिंग और इमारतें खड़ी होती जा रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक तो है ही है।
0: एक बात हम कहूँ, माफ कर जाओ,
1: हाँ,
0: ये जैव विविधता दिवस आए सरकार के माध्यम सँ, निजी संस्था के माध्यम सँ, अर्ध संस्था गैर सरकारी संस्था के माध्यम सँ बड़का बड़का कतौ कतौ आयोजन हैत ठाम ठाम जगह पर, बड़का बड़का पाग डुपटा लोक सबके पहिराओल जेतै, लोक एकटा गाछ लगौता, फोटो खिंचौता, आ काल्हि फेर कहथिन जे हम जैव विविधता के सबसँ पैघ प्रमाणिक चीज छी, हम एहन काज कऽ रहल छी। ओ श्रीमान, एहि प्रकृतिके बचाबऽके लेल हमरा सब गोटेके जिम्मेवारी अछि, सब गोटे एकरा हम बचाबी, अपन आबऽवला भारतके, भविष्यके एकटा नीक भारतके पर्यावरण बना कऽ दियै, ई हमरा सब गोटेके जिम्मेवारी अछि। आओर हम प्रार्थना करै छियनि, अनुरोध करै छियनि समस्त श्रोतागणसँ, सङ्गे हम अपनो आपसँ ई कहि रहल छियनि जे जैव विविधता एहि प्रकृतिके बचाबऽके लेल हमरा लोकनिके हर सम्भव प्रयास करबाक चाही। आओर कार्यक्रममे आब आगाँ बढ़ै छी, समय बहुत भऽ गेलै, सबसँ पहिले हमरा फिल्म सङ्गीतके आनन्द लै छी, ओकरा बाद फेर जे छै से साप्ताहिक कार्यक्रम हेतै, समसामयिक घटनाक्रम जे परिपाटी नमस्कार मिथिला कार्यक्रमके छै हेतै, मुदा सबसँ पहिले फिल्म सङ्गीत।

अखन वालों कने फिल्म संगीत सुनै छलहुँ हैं और आओ आजुक नमस्कार मिथिला कंकण वालों कने किताब समय भेल जा रहा है साप्ताहिक कार्यक्रम सुनबाक आओ सुनै छी ई साप्ताहिक कार्यक्रम।

गांधी कथा में प्रस्तुत है गांधी जी के संस्मरण। गांधी जी हमेशा छुआछूत और हरिजनों के लिए अलग मतदाता सूची के विरोध में अपनी आवाज उठाते रहे। 17 अगस्त 1932 को जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी, तब इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस आपत्ति से निपटने के लिए सप्रू ने एक योजना पेश की और इसे गांधी जी के समक्ष रखा। गांधी जी ने कहा कि मैंने योजना के प्रत्येक पहलू पर गौर किया है और मुझे यह योजना पसंद नहीं आई। मैं हरिजनों के बीच कोई भेदभाव नहीं चाहता और न ही मैं यह चाहता हूं कि विधानसभाओं के हरिजन सदस्य हिंदुओं के किसी राजनैतिक एहसान से दबें। उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से मिले। दोनों में इस योजना पर चर्चा हुई और अंबेडकर ने गांधी जी के संशोधन को स्वीकार कर लिया। गांधी जी के उपवास के चौथे दिन अंबेडकर ने हिंदू नेताओं के सामने अपनी नई मांगें पेश की। मैकडोनाल्ड ने अपने फैसले में प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग को 71 स्थान दिए, लेकिन अंबेडकर ने 197 की मांग की। गांधी जी हरिजन स्थानों के लिए प्रारंभिक चुनाव 5 वर्ष में समाप्त करने के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर इस अवधि को बढ़ाकर 15 वर्ष करना चाहते थे। 24 सितंबर को हिंदू नेताओं और अंबेडकर में फिर बातचीत हुई और तय हुआ कि विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए 147 स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे। गांधी जी ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। उसी दिन यरबदा समझौते का मसविदा तैयार किया गया और गांधी जी के अतिरिक्त सभी हिंदू तथा हरिजन परामर्शकारों ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन गांधी जी तब तक अपना उपवास

विश्वास तोड़ने को तैयार नहीं थे जब तक ब्रिटिश सरकार इस समझौते को मैकडोनाल्ड के फैसले के स्थान पर स्वीकार करने को राजी न हो। लंदन में रविवार के दिन मैकडोनाल्ड, सर सैमुअल होर तथा लॉर्ड लोथियन ने बैठक की और लंदन तथा नई दिल्ली में यह घोषणा कर दी कि उन्होंने यरबदा समझौते को स्वीकृति दे दी है, अतः गांधी जी अपना उपवास तोड़ लें। 26 सितंबर सोमवार को कस्तूरबा जी ने गांधी जी को नारंगी का रस पिलाकर गांधी जी का उपवास तुड़वाया। गांधी जी के इस उपवास के कारण पूरे देश में सुधार और आत्मशुद्धि की लहर दौड़ गई। इस उपवास से अस्पृश्यता का अभिशाप तो नहीं मिटा, लेकिन इसके बाद सार्वजनिक रूप से अस्पृश्यता का समर्थन समाप्त हो गया। इस उपवास के बाद राजनीतिक लोग चाहते थे कि गांधी जी राजनीति में बने रहें, लेकिन गांधी जी हरिजनों तथा किसानों के कल्याण कार्य में लग गए, जिससे उनके अनेक मित्रों को दुख हुआ। गांधी जी समाज सुधार को ही स्वतंत्रता का मार्ग समझते थे। फरवरी 1933 में गांधी जी ने जेल में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और यंग इंडिया के स्थान पर हरिजन निकाला। उन्होंने अस्पृश्यों के लिए 3 पत्रिकाएं हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और हरिजन शुरू की। ये तीनों पत्रिकाएं हरिजनों की सेवा में समर्पित थीं। अस्पृश्यता निवारण जब तक न होगा तब तक साबरमती आश्रम में प्रवेश न करने की गांधी जी ने शपथ ली और वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कर वहीं रहने लगे। 1936 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व यद्यपि जवाहरलाल नेहरू ने संभाला, लेकिन वे गांधी जी को ही कांग्रेस का अस्थाई महाअध्यक्ष मानते थे। वे गांधी जी की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के निर्णय को ही अंतिम निर्णय मानते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला और इस तरह एक जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुई कांग्रेस पार्टी अब राजनीतिक पार्टी बन गई थी, जिसका पूरा श्रेय गांधी जी को मिला।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी कथा, और कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं रंजीत जी, अनुशासन का जीवन में कितना और क्या महत्व है।
1: अनुशासन जीवन में आगा बढ़वाक लेल सबसँ परम आवश्यक तत्व अगर किछु छै तऽ ओहिमे सबसँ पैघ तत्व छै अनुशासन। लेकिन एकटा बात हम सेहो फेर कहब जे उपदेश देनाइ बड़ा आसान होइ छै आओर स्वयं पर लागू केनाइ बड़ा कठिन होइ छै।
0: वो तो है ही।
1: हमरा लोकनि आकाशवाणी दरभंगा मे स्टूडियो मे बैस कऽ जतेक सहजतासँ अनुशासन शब्दके परिभाषित कऽ रहल छी, अनुशासन शब्द शायद ओतेक सस्ता शब्द नहि छियै। बात सब केओ गोटे करै छथिन जे हम बड़ा अनुशासित जीवन जीवै छी, हमर जीवन शैली बड़ा अनुशासित होइत अछि, मुदा आदमीके कथनी आओर करनीमे फर्क अपना नहि देखाइ छनि, हमरो अपन नहि देखाइए, ई मानववृत छै, लेकिन दोसरके जरूर देखा जाइत छै।
0: तो रंजीत जी, आप अगर आप किसी भी चीज़ में अनुशासित ढंग से अगर काम करते हैं तो आप हर समय सहजता महसूस करेंगे और बड़े से बड़े कार्य को आसानी से और आराम तरीके से आप कर सकते हैं। वहीं अगर जीवन संयमित नहीं है, अनुशासित नहीं है, तो कार्य करने का कोई समय निर्धारित नहीं रखते हैं तो किसी भी कार्य को किसी भी समय नहीं रखते, किसी भी कार्य को किसी भी समय नहीं करने का सोचते हैं तो वो सारा काम आपको एक सही समय पे नहीं हो पाता है। जिस तरह से कोई काम आप कभी कर रहे हैं, कोई काम कभी कर रहे हैं, और अनुशासित ढंग से अगर आप करते हैं कोई भी कार्य को तो वो सही तरीके से सहज तरीके से चला जाता है।
1: देखियो, अगर हम बात करब अपन जीवन शैली होइ, चाहे कार्यालय कोनो कार्यालय छै, ओकर सञ्चालनके जे नियमावली छै ओहिमे अनुशासनके बड़ पैघ स्थान छै। जे हम कतौ कोना बैसब, कोन व्यक्ति अपनासँ जे हमरासँ वरिष्ठ लोक छथि तिनका लग हम कोना बैसब, ओतऽ हमर भाषा केहन उपयोग हेतै, ओतऽ शारीरिक भाषा हमर केहन हैत, ई सब चीज मायने राखै छै। मुदा कखन, जखन दुनू तरफसँ समान व्यवहारके अंतर होइ।
0: और रंजीत जी, आप देख रहे हैं बहुत से लोग आजकल परेशान होते हैं, उलझनों में फंसे रहते हैं, क्यों? इनका सबसे बड़ा कारण यही है अनुशासित, क्योंकि कभी भी कोई भी काम किसी भी समय कर बैठते हैं। अब आपको देखा जाए कि सुबह उठ के अगर आपको शारीरिक मेहनत करनी है या एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, और सुबह उठ के आप नियमित ढंग से कुछ नहीं कर रहे हैं तो सुबह में आप खाना पीना खा रहे हैं और दोपहर में आप व्यायाम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को आप देखेंगे अभी भी रंजीत जी की शाम के समय एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन सब कुछ नियमावली सही समय सही तरीके से करेंगे तो उलझनों में आप नहीं फंसेंगे।
1: वो एक अलग नियमावली होइ छै। हम कहूँ जे अनुशासन जे छै से ओ जीवन के सबसँ पहिल उद्देश्य होबाक चाही, लेकिन कखन, जखन समानांतर पैरल व्यवहार चलैत होइ तखन। अब अहाँ देखैत हेबै जे कतौ कतौ लोक जे है तू बड़ अगुताह छौ, एकर मतलब की भेलै जे अहाँ दोसर पक्ष नहि बुझलियै आओर अहाँ जे छै से अपन बात मनाबैके लेल जिद पर आबि गेलहुँ, ई भेलै अनुशासनहीनता। अब सामने कोनो व्यक्ति बैसल छथिन जिनकर एकटा प्रोटोकॉल होइ छनि, ओहि प्रोटोकॉलके अगर हमरा लोकनि तोड़ै छियै तऽ ओ कहल जाइ छै अनुशासनहीनता। लेकिन ई तऽ लोक देखै छथिन जे अमुक आदमी एहि प्रोटोकॉलके तोड़िके अनुशासनहीनता कऽ रहलखिन हँ, लेकिन ओ व्यक्ति ई नहि सोचै छथिन जे आखिर ई एहन कदम

कहलखिन किएक। हमर प्रश्न हमेशा एहि चीजपर रहैए जे समस्याके उलझबियौ नहि, समस्याके समाधान तऽ क्यों, जकर समाधान की भऽ सकै छै। तऽ कोनो व्यक्ति अगर अनुशासित नहि रहलै, सब व्यक्ति अपना आपमे चाहै छै जे हम अनुशासित रही, कतौ हमरासँ कोनो ककरो प्रति दुर्व्यवहार नहि होइ, ओकर आशंका नहि बनै, मुदा आदमी अनुशासन तोड़लखिन किएक, अनुशासित भेलखिन किएक। जाहि दिन हमरा लोकनि एहि जड़िके ताकऽ लगबै, एहिपर काज करऽ लगबै, ताहि दिन अनुशासनके महत्व बढ़ि जेतै। अनुशासित भेनाइ अलग बात छै, एकर महत्व बढ़ेनाइ अलग बात छै। एकर महत्व तखने कायम रहतै जखन हम अनुशासित रहबै। कोनो शब्दके अर्थ तखने होइ छै जखन ओ शब्द धरातलपर अस्थायी तौर पर टिकै छै। आओर नमस्कार मिथिला कार्यक्रममे आब घड़ीके सुई जे हमरा लोकनिके किछु आओर इशारा कऽ रहल अछि, तऽ आब आजुक नमस्कार मिथिलाके अंकसँ अहीँ सब श्रोता लोकनिसँ हमरा लोकनि लै छी विदा। नमस्कार मिथिला।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आप अपने रेडियो सेट के अलावे हमें आप अपने मोबाइल के भी माध्यम से सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: की कहै छी?
1: हे ध्यान नहि अछि, रेडियो खोलू ने जल्दी, गाँव घर कार्यक्रम छूट जायत।
0: ठीके कहलहुँ, हमरा तऽ हे ध्याने नहि छल गाम घर कार्यक्रम में नीक नीक जानकारी के बात सब भाई बहन लोकन सब कहै छथिन। हे हे हे लिया, मोबाइल पर लगा दै छी, सुनैत रहू, अपन काज सेहो करैत रहू।
1: से तो हमरा बुझले नहि छल जे आकाशवाणी दरभंगा आप मोबाइलों पर सुन सकै छी।
0: हाँ ये रेडियो सेट नहि अछि तऽ आकाशवाणी के ऐप पर जाकर सुन सकै छी।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: मैं भतीजे के घर हो
4: हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
9: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम

0: की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे की बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
6: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि CBI के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। CBI अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। VCK के वन्नी यारासु और IUML के AM शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी

0: कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र

0: mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की 1 जून को होने वाली पहली बैन अलावामी सरबरा कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जाम पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का हुक्म दिया है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों मारा गया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। कुब्रुस के सदर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर ममलिकत अजय तमता ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। कुब्रुस के सदर के हमरा वजीर खारजा ट्रांसपोर्ट मवासलात और कामकाज के महकमे के वजीर सीनियर अहदेदारान और कारोबारियों पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी है। ये उनका भारत का पहला दौरा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर बातचीत करेंगे। इनमें तजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी तालीम सकाफत मोबिलिटी दिफा और सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक इख्तरा और तहकीक जैसे शोबे शामिल हैं। वो कसीर रुखी इश्तराक समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल मामलात पर भी नजरियात का तबादला करेंगे। बातचीत के बाद मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब मोदी कुब्रुस के सदर के एजाज में जोहराने की मेजबानी करेंगे। शाम में कुब्रुस के सदर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। कुब्रुस के सदर का दौरा गुज़श्ता बरस जून में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कुब्रुस के दौरे के एक साल के अंदर अंदर हो रहा है। भारत और कुब्रुस की करीबी और तवील मुद्दती शराकत दारी है। आइंदा बरस फरवरी में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 65 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: बिग कैट अलायंस की पहली बैन अलावामी सरबरा कॉन्फ्रेंस जो 1 जून को नई दिल्ली में होने वाली थी मुलतवी कर दी गई है। इस सरबरा कॉन्फ्रेंस में बिग कैट के दायरे में आने वाले जानवरों की 7 अकसाम को महफूज रखने पर तवज्जो मरकूज की जाती है, जिनमें शेर बबर शेर तेंदुआ बर्फानी तेंदुआ चीता जैगुअर और प्यूमा नीज उनका इको निजाम शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बिग कैट अलायंस की बैन अलावामी सरबरा कॉन्फ्रेंस चौथी भारत अफ्रीका फोरम सबरा मीटिंग के साथ साथ होने वाली थी। कई अफ्रीकी मुल्कों में बिग कैट्स जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं और ये मुल्क इन्हें महफूज रखने माहौलियाती पायदार निजाम और हयातियाती तनवों के तहफ्फुज की समत आलमी कोशिशों में अहम साझेदार भी हैं। चूंकि चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबरा मीटिंग अब बाद में किसी तारीख को कराई जाएगी, इसलिए फैसला किया गया है कि अफ्रीकी मुल्कों समेत सभी मुतालिका मुल्कों की वसीतर और सरगर्म शमूलियत को यकीनी बनाने की खातिर बिग कैट अलायंस की पहली सरबरा कॉन्फ्रेंस भी बाद में तलब की जाए। माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक वजारत के मुताबिक इसमें शिरकत करने वाले मुल्कों और मुतालिका इदारों के साथ सलाह मशवरे के बाद सरबरा कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली से सामर्थ सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।

0: भारत जितनी भी चाहे तवानाई खरीद सकता है, अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी पटना है, थोड़ी ही देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
2: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
3: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
2: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच, शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
3: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: और इस गीत के बाद
7: छाया गीत।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल की भर्ती करेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की। और मौसम विभाग ने आज अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले के दौरान शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कांवरिया पथ पर सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था समय पर करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पैदल पथ को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, शौचालय, साफ सफाई और पेयजल की बेहतर

0: बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने अधिकारियों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा ताकि उन्हें जलाभिषेक के दौरान कोई परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को मेला की व्यवस्था के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन भी जमा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए दक्ष युवाओं की भर्ती करेगी। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि यंग प्रोफेशनल चयन संबंधी नीति 2026 के तहत विभाग 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल का चयन करेगा। यंग प्रोफेशनल का प्रारंभिक चयन 2 वर्षों के लिए होगा। विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए ये भर्तियां की जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में केंद्रीयकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। इस सेंटर का टोल फ्री नंबर है 14417 और 1800-34-54-417। इस नंबर के माध्यम से विद्यार्थी या अभिभावक विद्यालय से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि 31 मई तक चलने वाले अभियान के तहत और नामांकित बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में 8 अंकों की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1 लाख प्रसव में महिलाओं की मृत्यु दर 96 रह गई है। पहले यह 104 थी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इससे बड़ी उपलब्धि बताया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने का तुरंत आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस वर्ष की थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है। इस अवसर पर बिहार राज्य जैव विविधता परिषद सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्य की अनूठी प्राकृतिक संपदा को बचाने के संकल्प के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार जैव विविधता संरक्षण के लिए आम लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण को व्यवहारिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक ओर दक्षिण बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, तो वहीं उत्तर बिहार में अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार में अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। कैमूर का अधिकतम तापमान 44.4, बक्सर का 43.4 और औरंगाबाद का 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में लू के साथ गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित दक्षिण मध्य भागों के 14 जिलों में लू जैसे हालात रहेंगे। वहीं विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना जताई है।
4: दिनांक 22 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
3: भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। वहीं 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 तक ही चलेंगी। यह आदेश सभी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 26 मई तक लागू रहेगा। राज्य में बाल श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे विमुक्ति अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में 34 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए। श्रम संसाधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सप्ते में 68 जगहों पर छापेमारी की गई। अभियान के तहत नियोजकों के खिलाफ 15 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना में पिछले दिनों 25 करोड़ रुपए मूल्य के स्मैक मिलने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषिकेश क्रांतिकारक को रांची से गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में बिहार पुलिस में सिपाही रह चुका है। वह नालंदा जिले के दीपनगर नगवा गांव का रहने वाला है। सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं जिले के पोखरा थाना क्षेत्र के पुतनगड़ा गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। बांका सिविल कोर्ट परिसर से 2 कैदी चकमा देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए। इस मामले में बांका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के कांगर पंचायत के कुहास में स्नान के दौरान 4 किशोर महानंदा नदी में डूब गए। गोताखोरों के प्रयास से एक बालक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। वहीं समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के शादीपुर बतनाहा गांव में पानी भरे गड्ढे में नहाने के दौरान डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। मधुबनी जिले के बाबूपरी थाना क्षेत्र के दोनवारी गांव में पुलिस ने एक युवक को 2 पिस्तौल और

0: 100 ग्राम मादक पदार्थ, ब्राउन शुगर समेत अन्य आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के सासाराम में 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से न्यू स्टेडियम फैजलगंज में आयोजित इस महोत्सव में लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर और वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 400 लीटर डीजल और ट्रांसफार्मर का 20 लीटर तेल जब्त किया गया। कटिहार जिले के बरारी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के तहत पुलिस ने 16 हाइवा और एक पोकलेन मशीन को जब्त किया है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पिछले 4 दिनों में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक की जुर्माना राशि वसूली गई। नक्सल मुक्त मुंगेर जिले के सवासीन पहाड़ के जंगलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 2 देशी बंदूक और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट संदीप कुमार ने बताया कि नक्सल गतिविधियों पर पूरी तरह विराम सुनिश्चित करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से पराजित किया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, पुलवामा हमले का सूत्रधार आतंकी हमजा बुरहान पीओके में मारा गया। प्रभात खबर की सुर्खी है, पुलिस को चैलेंज करने वालों को उसी की भाषा में 48 घंटे के अंदर मिलेगा जवाब, मुख्यमंत्री। दैनिक जागरण ने कोलकाता हाईकोर्ट के एक फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली मुंबई की दौड़ नहीं, बिहार के 3 अस्पतालों के लिए 6 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, 1 साल बाद सुधा दूध 2 रुपए हुआ महंगा। आज अखबार लिखता है, मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की महाबैठक, मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल की भर्ती करेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की। और मौसम विभाग ने आज अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: हे कतौ छी यौ?
1: की बात, की कहै छी?
0: हे ध्यान नहि अछि, रेडियो खोलू ने जल्दी, गाँव घर कार्यक्रम छूट जायत।
1: ठीके कहलहुँ, हमरा तऽ हे ध्याने नहि छल, गाम घर कार्यक्रम मे नीक नीक जानकारी के बात सब भाई बहिन लोकनि सब कहै छथिन। हे हे हे लिया, मोबाइल पर लगा दै छी, सुनैत रहू, अपन काज सेहो करैत रहू।
0: से तऽ हमरा बुझले नहि छल जे आकाशवाणी दरभंगा आप मोबाइलो पर सुन सकै छी।
1: हाँ ये रेडियो सेट नहि अइ तऽ आकाशवाणी के ऐप पर जाकर सुन सकै छी। हे अकर ऐप नोट कर ली, न्यूज ऑन AIR, एकरा डाउनलोड करी आ कतौ बैस कऽ अपन मोबाइल पर आकाशवाणी दरभंगा सुनैत रहू, अपन काज करैत रहू।
0: तऽ हमहू कहब जे सुनैत रही कार्यक्रम गाँव घर।
1: हे आकाशवाणी हरदम सुनैत रहू गाम घर कार्यक्रम, नीक नीक जानकारी के लेल, बुझलहुँ ने? आ हे अपना संगे संगे आनो के कहब।
2: अगला शुक्र माने 10 नवंबर के
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब हम पटना केंद्र से

कुदरत सबसे अजीम है, तेरी शान जल्ला जलालहु, तेरा फजल।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म आस्था से। गायक कलाकार हैं गुलजार और श्री राधा बनर्जी। गुलजार के लिखे गीत को संगीत से सजाया है सारंग देव ने।
1: जिसे तुम भटकना कहती हो ना मानसी, मैं उसे और जानने की तलाश कहता हूं, एक दूसरे को जानने की तलाश। मैं इस जमीन पे भटकता हूं कितनी सदियों से, गिरा है वक्त से कट के जो लम्हा उसकी तरह। वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा, गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूं, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले।

अभी आप सुन रहे थे आस्था फिल्म का ये गीत गुलजार और राधा बनर्जी की आवाज़ में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म तहलका से। गायक कलाकार हैं बाबला मेहता, कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल। संतोष आनंद के गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म नगीना से। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे निकाह फिल्म से ये गीत, महेंद्र कपूर, सलमा आगा और आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत के लिए संगीत दिया था रवि ने और गीत लिखे थे हसन कमाल ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म गाइड से। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव वर्मन। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में यह फिल्म संगीत। फिल्म का नाम था गाइड। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सजाया था सचिन देव वर्मन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। अभी आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को सुनने का। आइए इसके अंतर्गत सुनते हैं सरोद वादन राग अलहिया विलावल में। कलाकार हैं अलाउद्दीन खान।

अभियाप उस्ताद अलाउद्दीन खान का सरोद वादन सुन रहे थे राग लया बिलावल में। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई

0: नहीं को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
0: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
0: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
0: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
0: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
0: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी सुना तो है,
0: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
0: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
0: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओ वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
0: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
0: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
0: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओ। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ जी जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी,
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी,
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश।

0: आकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

0: आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
1: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
2: सालू मर्दा तिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता

0: यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
1: हाँ ये तो है।
0: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
1: सही कहा।
0: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
1: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हाँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
0: ठीक है,
1: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं। ठीक है ना।
0: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: आजी सुनिए।
1: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
1: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
4: हाँ।
1: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे, इसको भी डालो।
1: हाँ,
4: ये देखो
1: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये। ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
4: प्यारा लग रहा है।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
1: देखा तिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
1: हाँ।
4: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
1: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
5: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
6: हमारा शहर हो।
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
3: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
7: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
2: 113 वर्ष की सालू

0: बगदा थिमक्का का कहना है,
1: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मरता थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं।

0: तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम।

ये आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और मनु की फिल्म आजा सनम में। गीतकार थे गौहर कानपुरी और संगीतकार थे कविता पौंडवाल। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म सरगम का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

यह आवाज़ें थी केशव, क्षमा करेंगे, यह आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की फिल्म सरगम में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए आप सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए आप सुनते हैं फिल्म संघर्ष में मोहम्मद रफ़ी को गीत रचना शकील बदायूनी की और धुन नौशाद की है।

यह आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की फिल्म संघर्ष में। आइए अब सुनते हैं उर्मी की आवाज़ में फिल्म अकेली का ये गीत, जिसे लिखा है मुकुंद भालराव ने और धुन तैयार की है मेहुल व्यास ने।

ये आवाज थी रूमी की फिल्म अकेली में। आइए अब सुनते हैं बादशाह एवं अमृता सिंह की आवाजों में फिल्म आशिकी का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म गुमराह का ये गीत, आवाजें सचेत तांदूर की और परंपरा तांदूर की है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण नारी संसार।

नमस्कार बहनों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्वेता और एक बार फिर आपके बीच लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम नारी संसार। बहनों, आज शुक्रवार है और जैसा कि आप जानती हैं, हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ नए पुराने फिल्मी गीतों का और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। बहनों, आज 22 मई है और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के महत्व के बारे में समझ बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में

घोषित किया। मैनो, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि धरती पर पेड़ ना हो, पक्षियों की चहचहाट ना हो, नदियाँ सूख जाए और जीव जंतु विलुप्त हो जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? प्रकृति की यही विविधता पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल जंगल और जीव जंतु मिलकर बनाते हैं जैव विविधता। जैव विविधता हमारे भोजन, दवाइयों, स्वच्छ हवा और पर्यावरण संतुलन का आधार है। लेकिन आज के बढ़ते हुए प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक प्रजातियां खतरे में हैं। अगर समय पर रहते हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। बहनों, जैव विविधता की रक्षा करना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास से बड़ा बदलाव होना संभव है। इसके लिए हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, जल की बचत करनी चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम जहां तक हो सके उपयोग करना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन मिलाकर चलें। जब जैव विविधता सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो चलिए बहनों, बातें आगे और भी करेंगे लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: आइए बहनों, अब आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। विषय है लू से बचने के उपाय और वार्ताकार है विजेता सिन्हा।
1: नमस्कार, मैं विजेता आज आपसे बात करूंगी लू से बचाव के संबंध में। श्रोताओं, अभी गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। इस मौसम में हम जब अपने घरों में सुरक्षित नहीं तो भला बाहर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। अभी बाहर इतनी कड़ी धूप रहती है कि घर से निकलना तक मुश्किल रहता है। पर श्रोताओं, जो लोग कामकाजी हैं वो भला घर कैसे बैठ सकते हैं, उन्हें तो घर से निकलना ही पड़ता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल जाना ही होता है। जो महिलाएं बाहर काम करती हैं उन्हें भी इस लू भरी गर्मी का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, हमारे कहने का मतलब है कि काम किसी मौसम का मोहताज नहीं होता, उसे तो करना है ही, पर खुद को बचाते हुए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल कर, थोड़ी सावधानी बरतते हुए। श्रोताओं, इसलिए आज जानते हैं आखिर लू है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और इसका उपचार कैसे करें। श्रोताओं, हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक को सामान्य भाषा में लू लगना कहते हैं। लू तब लगती है जब आप लंबे समय तक धूप में अधिक टेम्परेचर में रहते हैं या काम करते हैं और आपका शरीर अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता। जी हाँ, लू लगने पर आपके

0: शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है और पसीना आना भी बंद हो जाता है, जिससे शरीर की गर्मी नहीं निकल पाती। ऐसे में आपके शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है, आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और व्यक्ति बेहोश होने लगता है, उल्टी होने लगती है, जी मिचलाने लगता है, तेज बुखार हो जाता है, त्वचा सूखने लगता है और लाल पड़ने लगता है, और त्वचा लाल पड़ के गर्म हो जाता है, सिर दर्द और चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो श्रोताओं, हमें इन सब समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए हमें लू से बचाव के कुछ उपाय जानने की जरूरत है, जिसे अपनाकर हम लू से बच सकते हैं। श्रोताओं, लू से बचने का सबसे पहला उपाय है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में सफेद प्याज रखकर चलें। इससे लू लगने की समस्या कम हो जाती है। महिलाएं घर से निकलते वक्त पानी पीकर निकलें और साथ में कॉटन स्टॉल, छाता, धूप का चश्मा अवश्य लेकर चलें। साथ में पानी की बोतल भी जरूर रखें। लू से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। घर से निकलते वक्त खाली पेट बिल्कुल ना निकलें। हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनें। अपने खाने में प्याज का सेवन जरूर करें। इसके अलावा मौसमी फलों का भी सेवन करें। खासकर उस फल का चुनाव करें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे कि तरबूज, संतरा, खीरा। इन फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन फलों को अवश्य अपने आहार का हिस्सा बनाएं। श्रोताओं, यदि घर से निकलते वक्त आप अपने नाखून पर प्याज घिस कर लगाती हैं तो आपको लू नहीं लगेगी। इन सब सावधानियों के बावजूद भी यदि आपको लू लग जाए तो आप तत्काल उसका इलाज घर में भी कर सकती हैं। आप मरीज को तुरंत छायादार और ठंडी जगह पर लिटाएं। यदि वो कसे हुए कपड़े पहने हो तो उसे तुरंत बदलने को कहें। उन्हें हल्के और ढीले ढाले कपड़े पहनाएं। उन्हें ठंडी हवा दें। उनके बदन को ठंडे पानी से पोछें। यदि मरीज होश में हो तो उसे तुरंत नींबू पानी या फिर नमक और चीनी का घोल बनाकर पिलाएं। इससे मरीज के शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। लू लगने पर कच्चे आम का शरबत बनाकर मरीज को पिलाएं। कच्चे आम को आग में पकाकर उसे मरीज के पीठ, तलवे और हथेलियों पर रगड़ने से भी लू की समस्या दूर होती है। तो श्रोताओं, इस तरह यदि थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा उपाय हम कर लें तो इस लू से हमारा बचाव संभव है, तो हम इस गर्मी के मौसम का भी आनंद अच्छी तरह उठा पाएंगे। धन्यवाद।
1: बहनों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक ऐसे राज्य में जहाँ इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जी हाँ, हमारी अगली चर्चा का विषय है बिहार के पर्यटन स्थल। भारत के हृदय में बसे बिहार ने दुनिया को ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता की नई दिशा दी है। ये वही धरती है जहाँ महापुरुषों ने जन्म लिया और जहाँ से शांति, ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया में फैला। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं महाबोधि मंदिर की। ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। अगर इतिहास और शिक्षा की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम अवश्य लिया जाता है। प्राचीन काल में यह विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था। यहां देश विदेश से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज भी इसकी गिरती हुई मीनारें बिहार के गौरवशाली इतिहास की कहानी कहती हैं। अब चलते हैं राजगीर की ओर। राजगीर अपनी सुंदर पहाड़ियों, गर्म जलकुंडों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित विश्व शांति स्तूप पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। बिहार की राजधानी पटना में भी कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनमें प्रसिद्ध गोलघर और तख्त श्री पटना साहिब पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान होने के कारण पटना साहिब सिख धर्म के लोगों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है।

मैंने अगर आपको प्रकृति और वन्य जीवन पसंद है तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपके लिए एक बेहतरीन स्थान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां अनेक वन्य जीव और सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। मैंने बिहार केवल इतिहास की धरती नहीं बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद समृद्ध राज्य है। यहाँ अध्यात्म है, ज्ञान है, प्रकृति है और संस्कृति की अनमोल विरासत भी है। तो चलिए, अपने बिहार के बारे में हमने बहुत सारी बात की, आगे भी बातें होंगी, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। आज इसमें हम आपको बताएंगे गर्मी से राहत के कुछ उपाय के बारे में। अभी देखा जाए तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लू की स्थिति आ गई है, इसमें लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। गर्म हवाएं, तेज धूप, ये शरीर में पानी की कमी पैदा करते हैं, जिस कारण चक्कर आना, पेट खराब होना, उल्टी, आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा जाने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। तो बहनों, इनसे बचाव के लिए भोजन में कुछ परिवर्तन करना जरूरी होता है। जैसे कि आमतौर पे हम लोग सादा भोजन भी करते हैं, लेकिन भोजन को तो सादा रखना है, इसके साथ ही साथ आप उसमें सलाद, कच्चा प्याज, दही, लस्सी, छाछ, ये सब आप जरूर शामिल करें। कोशिश करें कि दिन में एक बार जरूर सत्तू के शरबत को पिए, या फिर सत्तू को किसी भी रूप में आप जरूर खाएं। सीधा सा तात्पर्य है कि पेट को ठंडक पहुंचाने वाली चीज़ों को भोजन में जरूर शामिल करें। खीरा, ककड़ी, तरबूज, इन सभी का सेवन करने से भी शरीर में पानी की कमी नहीं होती और पेट ठंडा रहता है, तो इन्हें जरूर खाएं। साथ ही बासी भोजन के उपयोग से बचें। गर्मी के दिनों में बासी भोजन से कई प्रकार की बीमारियों का खतरा होता है, और आप जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं उनको खाने से भी बचें। कई बार ऐसा होता है कि खाना तो बहुत अच्छा होता है जो कि हम लोग बाहर खाते हैं, सड़कों पे खाते हैं, क्योंकि गोलगप्पा, चाट, ये तो महिलाओं की कमजोरी है, लेकिन गर्मी की वजह से कितना भी साफ सुथरे तरीके से बनाया जाए, वो बाहर होता है, धूप, गर्मी, लू, सब कुछ खाने में लगता रहता है, जिस कारण कि कभी कभी आलू, छोले, ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं और पता बिल्कुल नहीं चलता, और हम लोग जाते हैं और खुद पे कंट्रोल नहीं होता, और खाने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है लेकिन वो पेट के लिए बहुत हानिकारक होता है, जिसके कारण दस्त की समस्या, पेट में मरोड़ की समस्या, उल्टी, चक्कर, बहुत तरह की ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो सामने निकल करके आती हैं, और दिक्कत होती है आदमी का। बहुत सारा तबीयत खराब होना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं होती बहनों, मेरा अपना एक अनुभव है कि तबीयत खराब होने से बहुत सारी चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आपका पूरा जीवन ही इससे उलट फेर हो जाता है। आप रोज़मर्रा के काम को नहीं कर पाती, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती, कुछ भी करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है, मन ही स्वस्थ नहीं है, तो इंसान क्या कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि भोजन पे थोड़ा लगाम लगाएं और अच्छे भोजन को करें जो कि स्वास्थ्यवर्धक हो और जिनसे पोषण प्राप्त हो। इसके अलावा जब भी बाहर जाएं तो छाते का प्रयोग करें, धूप का चश्मा लगाएं, चेहरे को पतले कपड़े से ढकें, आप स्कार्फ से भी ढक कर रख सकती हैं, अगर मलमल का दुपट्टा है, सूती दुपट्टा, तो आप उससे भी अपने चेहरे को कवर करके रख सकती हैं। इससे त्वचा बचती है धूप में जलने से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है

धूप के सीधे संपर्क में जब हम लोग आते हैं तो स्किन में बहुत तरह की समस्याएं आ जाती हैं, रैशेस आ जाते हैं, खुजली, दाना, धारी आ जाती है स्किन पे, तो इन सब चीज़ों से बड़ी परेशानी आती है और चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, हाथ वाथ की त्वचा बिल्कुल काली हो जाती है। तो इसके लिए आप सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग करें, उसे लगा कर निकलें, छाता ज़रूर से लगाएं। और हाँ, एक विशेष बात कि जब भी आप धूप से वापस घर में आती हैं तो तुरंत से चेहरे पर ठंडा पानी ना डालें, इससे चेहरे में एक अजीब सी चीज़ होती है जिसको कि हम लोग देखने में आता है कि चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाता है, क्योंकि गर्म के बाद जब ठंडा पड़ा तो त्वचा में खिंचाव होगा, रूखापन आएगा और त्वचा लाल हो जाएगी और इसका फिर इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका खास ध्यान रखिए कि आप चेहरे पर पानी ना डालें और पानी पीना भी नहीं है, ये नहीं कि आए ठंडे से और फ्रीज का पानी निकाले, बर्फ़ का पानी लिए, आइसक्रीम कुल्फी कुछ भी खा लिया कि ठंडा ठंडा नहीं लगता है, शरीर और ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये नहीं करना है। दूसरी बात, हर घर में एसी होता है तो एसी में भी नहीं जाना, आप नॉर्मली पंखे में बैठिए, थोड़ी देर ठंडे हो लेना है, थोड़ा पसीना सूख जाए आराम से, तब नॉर्मल पानी पीना है, उसके बाद चेहरा हाथ पैर मुंह धो करके कपड़े चेंज करके तब एसी में जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसी यही एक कारण होता है जो कि हमें वायरल बुखार की ओर ले जाता है। और भी कई अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं जिनका खतरा बढ़ जाता है। तो मैंने छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं, अगर इन सभी बातों पर हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में ध्यान दें तो निश्चित ही स्वस्थ रह सकते हैं, बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस बार की गर्मी खुशनुमा बीते, ना तो हमें लू लगे और ना लू के कारण हमारी तबीयत खराब हो, और ना ही घर आने पर, जब बाहर से तो सुरक्षित चले आए लेकिन इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो घर आने पर घर में ही खुद को बीमार कर लेते हैं। तो एक माँ होने के नाते, गृहिणी होने के नाते, एक महिला होने के नाते हम सभी का फर्ज बनता है कि अपने साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखें और इन छोटी बातों को भी ध्यान में रखें। तो बहनों, अगर आप भी चाहें तो इस तरीके के सुझाव हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashvanidarbhanga@gmail.com। तो चलिए बहनों, स्टूडियो में लगी घड़ी इशारा कर रही है कि चलो श्वेता, वक्त हो चला है अपनी प्यारी श्रोता बहनों से विदा लेने का। तो दीजिए इसी के साथ विदा श्वेता को, नमस्कार।

अभी आप महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार सुन रहे थे। आकाशवाणी का यह दरभंगा केंद्र है। दिन के 1 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा

0: सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी 1:10 में आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रोजगार समाचार इसे आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर। दोपहर 2:30 पर हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवानी आप सुनेंगे संध्या 5:40 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हफ्तावार जायजा इसे आप सुनेंगे संध्या 6:10 पर। संध्या 6:15 पर हम आपको सुनवाएंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम।

ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम नन्हा मुन्हा राही, संध्या 6:30 पर। संध्या 7 आप सुनते हैं किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण होगा रात्रि 8:15 पर। और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य की। सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता होंगे मितेश कुमार मिश्रा।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का नमस्कार। श्रोताओं, आज आपके पत्रों को लेकर हम बैठे हैं यहाँ आपके मन पसंदीदा गीत सुनवाने के लिए, और बहुत सारे पत्र हमारे पास हैं। ये पहला पत्र शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार अंजुला लता आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव अमरपुर पिंडरा छत्तीसगढ़ से आप हैं दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा और लवी श्रीवास्तव।

आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साविर राही, मेहराज जहां। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाव मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिकेय भाव मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। आप लोगों ने सुनना चाहा है फिल्म समझौता में मोहम्मद रफ़ी और मुकेश को, जिसे लिखा है इंदिवर ने और इस गीत की धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

आइए अब सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम में लता मंगेशकर को आवाज़, लता मंगेशकर के इस गीत को सुनिए। फिल्म पत्थर के सनम में गीत रचना महजूल सुल्तानपुरी की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। इनामत टोला भगवतीपुर बिहार से आप हैं नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नव्या सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी, रासु देवी।

इनामा टोला भगवतीपुर बिहार से आप हैं, नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नव्या सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी, रासु देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी, निशु कुमारी और एम झंझापुर लंगड़ा चौक से हरे राम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी आप लोगों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को फिल्म पत्थर के सनम में।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

राम तेरी गंगा मैली फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा है। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डूम ने, वैष्णवी डूम ने, चंचल डूम ने, अर्जुन गौवनेकर, धीरज सवासेरे, लाल पोखर दरभंगा से आप हैं मोहम्मद कलीम दीवाना, मोहम्मद दानिश बाबू, मोहम्मद अमन बाबू, मोहम्मद सरफराज बाबू, मोहम्मद री राज बाबू, इसे फिर से सुन लें, मोहम्मद रिशाज बाबू, सोनी बेगम, शरद परवीन शाह, शाह परवीन, डॉली परवीन और परिवार के लोग, कोठवा नारायणपुर बाबा भट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेखपुर क्लब गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय और परिवार के लोग, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी और परिवार के लोग। तो लीजिए सुनिए आप लोग अपनी पसंद का ये गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से, आवाज़ें लता मंगेशकर और साथी की।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

दोस्तों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। अगला गीत फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं राजनगर मधुबनी से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, एम के गुप्ता एवं मित्रगण। छपरा दालदली बाजार से आप हैं संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार गुप्ता, सर्वजीत कुमार गुप्ता, सुधांशु कुमार गुप्ता। सीतामढ़ी महावीर स्थान से सुनने वाले हमारे श्रोता हैं प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, मिंटू गुप्ता एवं निक्की गुप्ता और परिवार के लोग। फुलवा शरीफ पटना से आप हैं अविनाश चंद्र, ज्योति गुप्ता, जाह्नवी और पीहू। महादेव घाट अमलेश्वर से सुनने वाले हमारे श्रोता हैं डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। ताजपुर मुरब्बा से आप हैं भाई कारी राय कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी रिंकी, रिक्की नीतू, फारूक भाई, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी, एस बाग पीली, एस बाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, पलक पंखुड़ी। राजनगर मधुबनी कांति निकेतन से आप हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता। तो लीजिए सुनिए आप लोग अपने पसंद का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। मुलौट कैंपस पंजाब से सतीश भिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटे, विवान लखविंद संधू, महावीर संधू, गुरुचरण, गरीवर रमेश मिगलानी, भटिंडा रोड डबलापुर से, इसे फिर से सुने, भटिंडा रोड डब वाली से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, नहर मंटो से कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जावेद अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान। आप लोगों ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है RD बर्मन ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से।

आइए आप सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म आराधना के ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी और धुन तैयार की है SD बर्मनी। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड से बंद्रा नगर इंदौर से, राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिकेय खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति, प्रयाग चौधरी

ग्राम महसो वाड़ी तहसील मलकपुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न थाड़े और वाल्मीकि थाड़े नीनाजी थाड़े स्वप्नील थाड़े अजय खिरोटकर भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया रानी अनीता राज गर्म्या राज अभिषेक कुमार अविनाश कुमार अमरेंद्र और वंश प्रसाद गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धा नंद आर्य अभय नंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद रोहित व मोहित कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार में सुनना चाहते हैं मुकेश भट्ट नीलम भट्ट नितिन पलक करण जीतू निहारिका वंश भट्टा और परिवार के लोग आप लोगों ने सुनना चाहा है अनुराधा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म आराधना का ये गीत। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की फिल्म आराधना में। इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म गीतों का हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर को 2 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी और अभिभावक विद्यालय से संबंधित अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 14417 और 1800345417 पर कर सकते हैं। राज्य सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए यंग प्रोफेशनल चयन संबंधी नीति 2026 के तहत 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल की भर्ती करेगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि यंग प्रोफेशनल का प्रारंभिक चयन 2 वर्षों के लिए होगा। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। वहीं 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 तक ही चलेंगी। यह आदेश सभी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों पर 26 मई तक लागू रहेगा। इधर बेगूसराय जिला प्रशासन ने भी 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सुबह 11 बजे के बाद पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25 मई तक लागू रहेगा। वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन ने 23 मई से सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को 10:30 तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। भारतीय स्टेट बैंक में अप्रेंटिस की रिक्तियां भरी जाएंगी। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कुल पद है 7150 यानी 7150। अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026। आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट है sbi.bankin। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निरीक्षक प्रयोगशाला सहायक समेत अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। पद की कुल संख्या 611 है। आवेदन शुरू होने की तिथि 1 जून 2026 से। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन इस वेबसाइट पर jss.jharkhand.gov.in। बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ये भर्तियां दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी। इसकी कुल संख्या 5000 है। अंतिम तिथि 8 जून 2026। आवेदन की प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट है bankofbaroda.bankin। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन के लिए

मांगी जा रही है। कुलपद है 1230, अंतिम तिथि 31 मई 2026। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से, आयोग की वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in। कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजर, इसे फिर से सुन ली, कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद रिक्तियां हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल पद है 660। इसका अंतिम तिथि 11 जून 2026 है। आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट है कोल इंडिया इन, इसे फिर से सुन ली, कोल इंडिया डॉट इन। अभी आप हमारे केंद्र से रोजगार समाचार सुन रहे थे। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब कुछ ही क्षणों में दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर

0: काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
0: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूजीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई

के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूए

0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति

0: इन जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

हीर रांझा फिल्म के इस गीत को अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे कैफी आज़मी और संगीतकार थे मदन मोहन। अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म अपनापन से।

ये आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की फिल्म अपनापन में। आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म कभी कभी का ये गीत।

आवाज़ थी मुकेश और लता मंगेशकर की फिल्म कभी कभी में। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म कुर्बानी का ये गीत।

ये आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की फिल्म कुर्बानी में। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म मेरे हमसफ़र का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुँह किशोर लता मंगेशकर के गाए फिल्म मेरे हम सफर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बजने बज चुके हैं। आज की पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5 बजे हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती हैं। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या कर

0: सकती हैं आप?
1: जी, मैं हाउसवाइफ हूँ तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउसवाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है तो चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है, तो और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, फिर उन लोग को नाश्ता कराना। ये सर
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है वो छोटी है।
0: अच्छा, और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: जी, मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है, आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टूटने का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज, ये
0: जी
1: सब।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी, मैं जीना है तो हंस के जियो
0: जी,
1: खाने दाल छेलियो।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनट वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: ब्यूटीशियन
0: है, बहुत अच्छी बात है ये। आप तो यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती है ना?
1: दीदी
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ जो लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब से तैयार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से तैयार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान, ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ। बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी।
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी।
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी।
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी।
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है
0: जी। हाँ बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। उसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिसे नापा जाता है
1: जी।
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
0: जी,
1: चाहे कोई पतीला ले
0: जी।
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो नमक
0: जी।
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिससे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं। और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।

0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट है या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर
0: जी
1: उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, और
0: जी
1: अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए
0: क्या बात है। और फिर जब इसको
1: जी।
0: ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज
1: जी।
0: बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था,
0: हाँ जी
1: लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए।
0: जी
1: हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी
0: जी
1: होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था,
0: जी
1: शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है,
0: क्या
1: उसने
0: बात,
1: ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा,
0: जी
1: अम्मा अब नहीं है
0: जी
1: लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था,
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी
0: क्या बात है। यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से?
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा अब इतना बज गया अब ये आएगा।
0: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलाम इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आप।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स

0: है। देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फ़ोन लगाया तो आपका फ़ोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज़ है आप।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी इन्हें बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी,
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने आप
0: जी।
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी
0: जी,
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत ये त्रिवेणी सभी मतलब हम लोग सच्ची सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात।
1: और हाँ रेडियो हमारे बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, हम कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही
0: जी। और कल्पना जी आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही बात है।
1: ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है ने, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे हमें।
0: क्या बात है, गाने की महफिल लग जाती यानी आपके घर में।
1: हाँ, और सभी सिंगर है हमारे देवर वगैरह सब, अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
0: जी,
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ।
0: क्या बात है।
1: हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 ईयर्स की हूँ अभी
0: जी जी,
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है
0: जी,
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री है एकदम
0: जी।
1: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सबके लिए, क्योंकि जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, बड़ा अच्छा लगा।
1: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना सुनाएंगी?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी।
1: आज

0: कॉल लगा।
1: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
0: बिल्कुल।
1: तो अनु जी हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
0: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
1: क्या बात है। तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
0: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
1: जी जी,
0: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
0: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
1: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
0: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
1: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
0: निकालना पड़ता है थोड़ा
1: जी,
0: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें।
1: जी,
0: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
1: क्या डॉली जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए आप भोपाल से हैं तो वहाँ का कैसा मौसम है इस समय?
2: मैम इस तरह तो गर्मी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि गर्मी की वजह से सारा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं बहुत ही।
1: गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं ये बताइए मुझे।
2: गर्मी से बचने के लिए देखो प्रतिदिन तो सब स्नान करते ही हैं, ऊपर से जैसे ठंडा कुछ जैसे नींबू की सिकंजी है या रुआबजा है या दही की लस्सी है ये पीते हैं, सब ग्लूकोज है घोल के, बस इसी वजह से सबको तराई मिलती है।
1: क्या बात है। और आम का पना नहीं बनाती आप?
2: मैम आम का पना नहीं बनाते हम, जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के जो आप जा डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए अपने परिवार का नाम।
2: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए। और मेरी सास का नाम सुमन है, मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है, मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
1: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
2: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1 2 4 माय नेम इज लखन।
1: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं।
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम अशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी,
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश रहूँगी।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दरक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दरक्षा जहाँ, आपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी,
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। ये लोग सहेली और ये लोग फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान, सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दरक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो, जैसे हम लोग सुनते हैं
0: जी,
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी। तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियां मेरा दामन, अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दरक्षा जी, लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियां मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, काया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है,
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा
0: जी,
1: प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ
0: जी,
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और हाँ, तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी।
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
0: क्या बात, आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगी सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पार
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सगा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियाँ थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं, और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं, या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़क कर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपने बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था, वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था। लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने

उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है, हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया।

और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहाँ से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहाँ के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसकी हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

पर तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे। उनकी हार होगी, तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए

बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा

हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है, मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आए और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम से।

दोस्तों नमस्कार, उपस्थित हो गए हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। अब से 40 मिनट तक हमारा और आपका बना रहेगा साथ इस कार्यक्रम में। आज आपको बता दें, हम आपसे करेंगे बातें, साथ ही सुनेंगे लोकगीत और इसके अलावा गैर फिल्मी गज़लें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो पहले थोड़ी आपसे हम बात कर लें। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे उसका विषय है जैव विविधता संरक्षण में युवाओं की भूमिका। तो आपको बता दें कि जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियां तथा उनके प्राकृतिक आवास। ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज बढ़ते प्रदूषणों, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण जैव विविधता गंभीर संकट का सामना कर रही है। ऐसे समय में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। युवा समाज की सबसे ऊर्जावान और जागरूक शक्ति हैं। वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं तथा स्वयं भी प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाकर उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक के उपयोग में कमी तथा स्वच्छता अभियानों में भाग लेकर युवा जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज के डिजिटल युग में युवा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पर्यावरण संबंधी संदेशों को व्यापक स्तर पर पहुंचा सकते हैं। वे स्थानीय स्तर पर पक्षियों, पशुओं और पौधों के संरक्षण के लिए अभियान चला सकते हैं तथा लोगों को प्रकृति के महत्व से परिचित भी करा सकते हैं। यदि युवा पीढ़ी आज जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प लेती है तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण मिल सकेगा। इसलिए प्रत्येक युवा का ये दायित्व है कि वो प्रकृति की रक्षा को अपना नैतिक कर्तव्य समझे और इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाए। तो ये थी दोस्तों हमारी आपसे बातचीत और अब कार्यक्रम में सुने लोकगीत।

तो दोस्तों, आप सुन रहे थे लोकगीत। आज जिन कलाकारों के गीत आपने सुने हैं, लोकगीत, वो कलाकार थीं पार्वती मिश्रा। जी हाँ, क्रमशः वो कलाकार थीं पार्वती मिश्रा, स्नेहा झा, कुमकुम झा और विभा सिन्हा। और अब दोस्तों, समय हो चला है कि आप तक हम पहुँचाएँ गैर फिल्मी गज़लें। तो ये पहली गज़ल है जिसे गाया है गुलाम

आप सुन रहे थे मोहसिन नकवी की लिखी हुई यह गज़ल, जिसे आवाज़ दी थी ग़ुलाम अली ने। अब जो गज़ल आप सुनेंगे उसे लिखा है पयाम सईदी ने, आवाज़ चंदन दास की है।

ये गैर फिल्मी गाना आप सुन रहे थे, बहुत प्यारा सा, इसे गाया था कमल बारोट ने। और इसके साथ ही दोस्तों आज का ये कार्यक्रम तरुण कुसुम समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

तरुण कुसुम युवा दोस्त सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आपको बता दें कि इस समय का जो कार्यक्रम होता है उसमें आप सुनते हैं नई फिल्मों के गाने। तो लीजिए, करते हैं इस गाने से शुरुआत।

0: आप सुन रहे थे क्रमशः फिल्म घूमर, किसी का भाई किसी की जान, सत्य प्रेम की कथा और किस्मत फिल्म के गीत। कलाकार थीं दीपाक्षी, खलीता, अल्तमश फरीदी, सुखबीर, मीत ब्रोज, मोनाली ठाकुर और साथी पूर्णिमा। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, कुछ क्षमय में अर्थात कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप

देंगे हफ्तावार जायजा, पेशकश होगी सज्जाद अहमद खान की। 6:15 पर विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे राम कुमार मल्लिक। 6:25 पर आप सुनते हैं मैथिली संवाद। शाम 6:30 गांव घर कार्यक्रम के तहत आज होगा नन्हा मुन्ना राही। बच्चे सुनेंगे चर्चा, स्वच्छता का रखें ध्यान बच्चे। 7:00 खेती गृहस्थी कार्यक्रम में जैविक खाद की उपयोगिता पर चर्चा होगी, साथ ही मौसम संबंधी जानकारी और समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे किसान भाई। 7:52 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:15 पर समय होता है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का। 9:30 साहित्य की कार्यक्रम, इसके लिए सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता होंगे मितेश कुमार मिश्रा। 4 फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हालो आकाशवाणी, हम आप तक पहुंचाएंगे 10:00। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। हमारा अगला कार्यक्रम होगा हफ्तावार जायजा।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। समाज फरमाइए, हफ्तावार जायजा पेशकश सज्जाद अहमद खान की है। सामीन,

आप सुन रहे थे रामकुमार मल्लिक के स्वर में ये विद्यापति गीत। आपको बता दें कि विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं कविवर विद्यापति की रचनाएं विभिन्न कलाकारों के स्वर में। 6:25 होने को हैं, कुछ क्षणों में आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल्हि 23

मई के 19वें रोजगार मेलाक अंतर्गत 51,000 सँ बेसी युवा लोकनि के नियुक्ति पत्र देताह। प्रधानमंत्री एहि कार्यक्रम मे सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसक माध्यम सँ नवनियुक्त युवा लोकनि के संबोधित सेहो करताह। रोजगार मेला देशभरिक 47 स्थान पर आयोजित कयल जायत। एकर अंतर्गत रेल, गृह, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा आ उच्च शिक्षा समेत विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय आ विभाग मे चयनित अभ्यर्थी लोकनि नियुक्ति पत्र प्राप्त कऽ सकताह। राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवाक कतेको वरिष्ठ अधिकारीक स्थानांतरण कयलक अछि। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाक अनुसार दीपक कुमार सिंह के राज्यपालक प्रधान सचिव नियुक्त कयल गेल छनि। कुंदन कुमार गृह विभागक सचिव बनाओल गेल छथि, जखनकि डॉक्टर बी राजेन्द्र के निगरानी विभागक अपर मुख्य सचिवक अतिरिक्त प्रभार देल गेल अछि। नीलेश रामचंद्र देवरे बिहार राज्य आवास बोर्डक प्रबंध निदेशक बनाओल गेल छथि। अरविंद कुमार चौधरी के मंत्रिमंडल सचिवालय विभागक अपर मुख्य सचिव नियुक्त कयल गेल छनि। ओतहि राजीव कुमार श्रीवास्तव

0: शिक्षा समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय आ विभाग में चयनित अभ्यर्थी लोकनि नियुक्ति पत्र प्राप्त कऽ सकताह। राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवाक कतेको वरिष्ठ अधिकारीक स्थानांतरण कयलक अछि। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाक अनुसार दीपक कुमार सिंह के राज्यपालक प्रधान सचिव नियुक्त कयल गेल छनि। कुंदन कुमार गृह विभागक सचिव बनाओल गेल छथि, जखनकि डॉक्टर बी राजेन्द्र के निगरानी विभागक अपर मुख्य सचिवक अतिरिक्त प्रभार देल गेल अछि। निलेश रामचंद्र देवरे बिहार राज्य आवास बोर्डक प्रबंध निदेशक बनाओल गेल छथि। अरविंद कुमार चौधरी के मंत्रिमंडल सचिवालय विभागक अपर मुख्य सचिव नियुक्त कयल गेल छनि। ओतहि राजीव कुमार श्रीवास्तव वित्त विभागक अपर सचिव बनाओल गेलाह। सीमा त्रिपाठी के राजस्व आ भूमि सुधार विभागक सचिवक अतिरिक्त प्रभार देल गेल छनि। अरविंद कुमार वर्मा के उद्योग विभाग में, जखनकि इनायत खान के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विशेष सचिवक अतिरिक्त प्रभार देल गेलनि। राज्य सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाक अंतर्गत जीविका दीदी के भेट रहल सहायताक राशिक अगला किस्त देबाक घोषणा कयलक अछि। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार प्रेस वार्ता मे ई जनतब देलनि। ओ कहलनि जे इएह मास लाभार्थी महिला लोकनिक खाता मे 20,000 टाकाक सहायता राशि पठाओल जायत। श्री कुमार कहलनि जे एहि योजनाक उद्देश्य महिला लोकनि के स्वरोजगार सँ जुड़बाक आ हुनका आर्थिक रूप सँ सशक्त बनेबाक अछि। शिक्षा विभाग सरकारी विद्यालय सब पर नजर राखबाक आ समस्या सभक समाधान लेल पटना में एक केंद्रीय कृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटरक स्थापना कयलक अछि। एकर अंतर्गत सरकारी स्कूलक विद्यार्थी आ अभिभावक विद्यालय सँ संबंधित अपन शिकायत टोल फ्री नंबर 1447 आ 1800345447 पर कऽ सकैत छथि। आगामी 25 मई सँ 11 जून धरि राजस्व आ भूमि सुधार विभाग दाखिल खारिज परिमार्जन मापी समेत आनो काजक समीक्षा सप्ताह में 3 दिन करत। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसक माध्यम सँ जिला सब में आयोजित समीक्षा बैसार में सम्मिलित हेताह। दिल्ली के एक अदालत IRCTC होटल घोटाला से संबंधित कथित धन शोधन मामला में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव आ हुनक परिवारक सदस्य तथा आनो लोकक विरुद्ध आरोप निर्धारित करबाक निर्णय 9 जून धरि लेल टारि देलक अछि। प्रदेशक उत्तरी आ दक्षिणी क्षेत्र में मौसमक अलग अलग मिजाज देखाई पड़ रहल अछि। एक दिस दक्षिण बिहार भीषण गर्मी आ लू के चपेट में अछि, ओतहि उत्तर बिहार में वर्षा सँ लोक के गर्मी सँ राहत भेटल अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार बिहार में अधिकांश स्थान पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार कऽ गेल अछि। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रहल। मौसम विभाग पटना, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल, भोजपुर आ बक्सर में लू चलवाक अलर्ट जारी कयने अछि। ओतहि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया समेत प्रदेशक उत्तर पश्चिम आ उत्तर पूर्व जिला में किछु स्थान पर अन्हर बरखा हेबाक आशंका बनल अछि। कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड पर रेल लाइन दोहरीकरण काजक कारणे कतेको ट्रेनक परिचालन में बदलाव कयल गेल अछि। कटिहार रेल मंडलक प्रबर मंडल रेल प्रबंधक अनूप कुमार सिंह जनौलनि जे 10 जून सँ 14 जून धरि 13 जोड़ी सँ बेसी एक्सप्रेस आ पैसेंजर ट्रेन रद्द रहत। ओतहि 12 जोड़ी ट्रेनक मार्ग 7 जून सँ 13 जून धरि बदलल गेल अछि। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र अंतर्गत मधुबनी जिलाक हरलाखी प्रखंडक हरिणय सीमा लग सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कयनिहारक विरुद्ध प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज कऽ विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कऽ देल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर।

0: कार्यक्रम गाम घर अंतर्गत नन्हा मुन्हा राही सुरनियार समस्त श्रोतागण के आशुतोष कुमार झा दिस स्वागत आ नमस्कार। संगही नमस्कार देवू भाई।
1: नमस्कार नमस्कार आशुतोष भाई। संगही समस्त श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार। आ आशुतोष भाई आई तब बुझते छी जे आई शुक्र दिन है। शुक्र दिन के हमरा लोकन धियापुता लेल बहुत रास कार्यक्रम लो के आवे छी।
0: मने कहियो न कि उजका दलान बच्चा सबक लेल आई अपना सब हुनके लेल गप सप करब आ गीत नाद का आनंद सेहो लेब। संगे चलब स्कूल
1: संग संग तय धियापुता के कहबन जे अहाँ सब अपना अपन रेडियो सेट पर बनल
0: रहू जैसे कि
1: अहाँ के सब लेल जे प्रोग्राम लो के आयल छी ओकर आनंद लिया।
0: मुदा एकटा बात हम कहब।
1: कहू कहू।
0: जे धियापुता जे बैसल छथि साँझक समय छी सब गोटा खेला कला हँ तऽ कनी साफ सुथरा भऽ कऽ जे अगर बैसै छथि पैर हाथ धो कऽ देखै छियै कते नीक लगैत अछि जे छोटका कक्का के बच्चा सबके देखियौ न आ बड़ा बढ़िया एकदम रेडियो सेट खोलि कऽ एकदम सँ कोना मे बैसल रहै छथि की।
1: ठीक है कहलो आशुतोष भाई। देखियो आशुतोष भाई जो कह पूछल जाए या देखल जाए तो सबसे पहले तो धियापुता कांच करची जका होइ छन। कांच करची के जेना लिबा तेना बुझू जे उ लिबत। ओना ही धियापुता के जे प्रारंभिक जे काल से ही धियापुता के जो है नीक संस्कार नीक विचार सिखेबाक चाही। तें आशुतोष भाई परिवार के प्रथम पाठशाला सेहो कहल गेल।
0: ठीके कहलो।
1: परिवार से ही धियापुता के नीक बा बेजाय शिक्षा दीक्षा आ संस्कार भेटत अछि। शिक्षा दीक्षा के संग संग व्यक्तिगत स्वच्छता के गप बहुत अहाँ पहनो अहाँ कहलो है।
0: निश्चित
1: धियापुता के देखलो है कि खेल के अयला है आ कोना में जो छे पाँव हाथ धो के आ अपन रेडियो सेट पर लागल छथि।
0: देखियो देवू भाई अहाँ बड़ा नीक कहलहुँ जे बच्चा जे होइ छथि से मून के जे होइ छथि से एकदम निश्चल होइ छथि। हुनकर हँसी हुनकर मासूमियत हुनकर निष्कपट व्यवहार जे अहाँके सामाजिक प्रेम के रूप में एकटा सामने अबैत अछि। देखियौ बच्चा रही या ककरो मुदा सबके हुनका प्रति प्रेम रहैत अछि ने। और संगहि संग अपना सभक समाज के खुशी आ एकटा नव उम्मीद सेहो उजगबै छथि ने। तऽ तखन तऽ ओ अगर स्वस्थ हेता तऽ निश्चित रूप से अपना सबके मून जे हैत से गदगद भऽ जायत।
1: आ गदगद तखने हैत एहि लेल जे छै माता पिता के परिवार लोकनि के जे सबसे पहले प्राथमिकता हुनका देबे पड़तनि। धियापुता कतौ जा रहल छथिन की कऽ रहल छथिन हुनकर माने कोन बाट पर चल रहल छथिन इहो देखरेख जो छै आशुतोष भाई बहुत जरूरी छै।
0: सबसे जरूरी छै देवू भाई बच्चा कतौ पढ़ै छथि से बड़का बात छै ककरा संग पढ़ै छथि ककरा संग समय बितबै छथि।
1: संगी हुनकर केहन छनि
0: सत्संगे गुना दोखे
1: हाँ।
0: तऽ अपना सबके पूर्वज कहने छथि
1: तऽ ताहि दुआरे अभिभावक लोकनि के जे ई ध्यान सदखन रखबाक चाही जे हुनक साफ सफाई के अहाँ पहिनो अहाँ गप करने रही कि धियापुता के साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान रखबाक चाही। तऽ सबसे पहिने हाथ पाँव नाखून बाल कपड़ा त्वचा साफ सुथरा अछि कि नहि। जौ नहि अछि तऽ अभिभावक लोकन के माता पिता लोकन के एहि लेल हुनका लोकन के ध्यान राखे पड़त।
0: ध्यान
1: दोसर दोसर आशुतोष भाई दोसर धियापुता के सदखन नीक आदत स्वच्छता के प्रति ध्यान दिलेबाक चाही। जेना प्रातःकालीन सूरज उगला सँ पहिने उठबाक चाही समय सँ शौच जयबाक चाही प्रतिदिन स्नान करबाक चाही जाहिसँ जाहिसँ जो छै जे हुनक जे छै
0: शरीर स्वच्छ रहत
1: स्वच्छ रहत।
0: नीक अहाँ कहबे कयलहुँ ने जे बच्चा सब ओनहियो जल्दिए बीमारीके चपेटमे आबि जाइ छथि बहुत कोमल होइ छथि तनुक होइ छथि। यदि बच्चा सब छोट छोट स्वच्छताके आदत अपनाबथि तऽ ओ कैक प्रकारके बीमारीसँ बचि सकै छथि आ स्वस्थ जीवन जीव सकै छथि। अहाँ बड़ा नीक कहलहुँ हँ। हम तऽ कहब नहेनाइ धोनाइसँ पहिले नियमित रूपसँ बच्चा सबके हाथ धोइके आदत

0: जे अभिभावक के छनि से दिएबाक चाही। अपना सब कोरोना काल में सिखबे केलौ नहि?
1: हाँ यौ आशुतोष भाई, ओनाहियो पहिने हो जहन अतिथि बनिके कतौ जाइ छलौ हैं, किनको दरवाजा पर जाइ छलौ हैं, तो ओ परम्परा के आइ हमरा लोकन बिसरि रहल छी, लेकिन जो परम्परा छल ओ अखन आइयो जीवित छै, आइयो हमरा लोकन के बीच छै, मुदा ओकरा अपना नहि रहल छी।
0: देखियौ, अगर सबसे ओ आदत अगर अपना सब नहि अपनेलौ तऽ देखलौ जे कतेक बड़का महामारी पूरा दुनिया में पसरि गेल छलै।
1: तऽ ताहि दुआरे कतौ जाइ छी तऽ पहिले हमरा लोकन के अतिथि देवो भव, पहले हुनका सबसे पहिने एक लोटा पानि देल जाइ छल हुनका आगू मे, आ तहन जो अपन जो भात पाँव धो कऽ आ तखन जो छै आसन पर जो छै बैसै छलखिन हँ, चौकी पर आसन पर तखन बैसै छलखिन हँ, आ तहन हाल समाचार पूछल जाइ छल।
0: यौ देवू भाई, ओहि समय के पहनावा जे छलै सेहो अलग छल, आब जूता मोजा पहिर के आबै छथि, और बहुत किछु एहन चीज अछि, लेकिन ओहि मे अपना सबके स्वच्छता के तैयो ध्यान राखऽ पड़त। जखन अपना सब कतौ बाहर से आबै छी तऽ जे कोनो जूता चप्पल रहैत अछि ओकरा बाहरे खोलि के राखि देबाक चाही
1: कि हाँ छै
0: निश्चित रूप से अपना सबके जे छै से जे हाथ धोई के जगह बनल छै ओतय जाके हाथ निश्चित रूप से धो के बैसबाक
1: चाही,
0: कियाकि जे कोनो अपना सब नाश्ता पानी करै छी या कोनो काज करै छी तऽ कीटाणु हाथक माध्यम से भोजन के माध्यम से अपना सबके पेट में पहुँच जाइत अछि। और अहाँ बड़ा नीक कहलौं जे बच्चा के रोज स्नान करबाक चाही और साफ कपड़ा पहिरबाक चाही, कियाकि गंदा कपड़ा और शरीर पर जमा धूल माटि कईक प्रकार के संक्रमण पैदा कऽ दैत अछि। नाखून के सेहो समय समय पर काटबाक चाही, कियाकि नमहर नह में गंदगी आ कीटाणु जमा भऽ जाइत अछि।
1: ओतबे नहि आशुतोष भाई, संग संग जो छै धियापुता की ता व्यक्तिगत स्वच्छता के गप कयलहुँ हैं, संग संग जै ठाम हमरा लोकन रहै छी ओहि ठाम के वातावरण केहन अछि, अहाँ के घरक अगुआरा पिछवाड़ा साफ सुथरा अछि कि नहि, अहाँ के अगल बगल में जो नाला नाली अछि तऽ ओहो पर विशेष रूप से ध्यान राखू, अहाँ के घर के कमरा केहन अछि, घर अछि ओकरा साफ सफाई बना के रखू, किएकि तऽ ओहिठाम हमरा लोकन बैसै छी उसै छी और हर तरह के वातावरण जो छै बाहरी वातावरण
0: संगे संग जे स्कूल में पढ़े छी ओकरो लग पास स्वच्छता बनाए के राखी, हरदम कूड़ा करकट के डस्टबिन में दी, और गंदगी के कखनो खासकर नेना सबके कहे छियनि जे इम्हर उम्हर नहि पसारबाक चाही। आजुक समय में स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहि बल्कि अपना सबके एकटा सामाजिक जिम्मेदारी सेहो अछि। इएह अपना सब अगर बच्चे से सीख लै छी तऽ पैघ भऽ कऽ एकटा स्वस्थ आ जागरूक नागरिक बनै छी। अंततः देवू भाई
1: नीक व्यक्ति बनब, अहाँ जहन नीक व्यक्ति बनब तऽ ओहिसँ आनो धियापुता के प्रभाव पड़तै,
0: निश्चित
1: टोला में समाज में गाम में, और अहाँ आगे चल के एकटा विशिष्ट नागरिक बन सकै
0: छी। निश्चित, स्वच्छ बच्चा स्वस्थ बच्चा
1: आशुतोष भाई,
0: हाँ हाँ, और ओ देशक उज्ज्वल भविष्य के पहचान छथि, ताहि दुआरे हर एक बच्चा के स्वच्छता के ध्यान रखबाक चाही, और जखन अपना सब स्वच्छ रहब तहन स्वस्थ रहब, आ तखन गीतो नाद नीक लागै छै, तऽ किया नहि पहिले गीत एकटा बच्चा सबके सुनाबियनि, तकर बाद फेर आयब अपना सब दलान पर।

0: चंदा मामा आओ आओ।
1: हाँ तो हमारा धियापुता के बालगीत हमारा लोकन सुनल लो,
0: मृदुला
1: मृदुला
0: मिश्रा
1: मिश्रा
0: के
1: के स्वर
0: स्वरमा।
1: में। आब एकरे संग आशुतोष भाई जे
0: हाँ
1: धियापुता के जे हमारा लोकन जो किसले जो लायल छी
0: सेहो सुनेबनि।
1: सेहो
0: मुदा
1: सुनेबे।
0: एक टा बात हम कहब, जे देखियौ जे नेनपने के दिन छी, जे अपना सब कतेक एखुनका समयमे देखै छी जे चारू कात इजोते इजोत अछि, आ नेनपर नहि छी तऽ की छी, जे बच्चा सब एखनो दौड़ल अंगनामे गेल छलथि आओर कहै छलखिन चंदा मामा आओ आओ, आ खूब इजोरिया लऽ लऽ।
1: देखियौ भोलापन आ भोलपन जे आवाज हुनका लोकन के मधुरता जे आवाज होय है आशुतोष भाई, जे धियापुता के जखने अहाँ के आगू में आयत आ कक्का चच्चा जहन कहे लगत
0: ठीके
1: तखन
0: कहलहुँ।
1: ओहि काल में अहाँ कितनो समस्या में रहब ना आशुतोष भाई, सबटा बुझू जो समस्या ओहि काल में अहाँ बिसर जाए, किएक तऽ ओ मधुरगर आवाज, ओ मने ततलापन बोली एते नीक लागे छे कि कितनो अहाँ टेंशन में रहब समस्या में रहब हुनकर आवाज
0: सुन
1: के।
0: समस्या समस्या नहीं बुझात, एहने एकटा कथो छल ना, जे
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: बेर अकबर कहलखिन बीरबल के, जे बीरबल एक आदमी हमरा कान पकड़ के मेट देलक, हाँ ओकरा कोन सजा देबाक चाही। बीच दरबारे में ओ सबसे पूछलखिन तऽ पूरा दरबारी भौचक भऽ गेल, केओ कहलक जे सजाए मौत देबाक चाही, केओ कहे 100 कोड़ा मारबाक चाही। बीरबल बहुत काल तक चुप रहलथि, जहन हुनका देखलखिन बादशाह चुप तऽ पूछलखिन जे की बीरबल की हेबाक चाही, ओकरा की सजा भेटबाक चाही। तऽ कहलखिन ओकरा सजा नहि भेटबाक चाही, ओकरा मिठाई भेटबाक चाही। तऽ ओ बुझि गेलखिन जे बच्चा कियो नहि, हिनके जे छल से घरके एकटा छोट बच्चा छल जे हिनका सङ्ग खेलाइ छल।
1: हँ छै
0: तऽ
1: ने,
0: नैनपन तऽ इएह
1: तो
0: होइत
1: यही
0: अछि,
1: नैनपन छै, हुनका सब सजा माफ छै बच्चाके
0: निश्चित रूपसँ।
1: तऽ हमरा लोकनि जे छै फेर आगू गपशप करब, मुदा धियापुताके लेल जे लायल छी किसले कार्यक्रम तऽ ओहो ने हमरा लोकनिके श्रोता लोकनिके सुना दिए।
0: आओर की,
1: तऽ ई हमरा लोकनि लायल छी आशुतोष भाई राजकीय मध्य विद्यालय स्टेशन रोड दरभंगासँ, संकलन वाचन आ निर्माणमे सहयोग छथि आशुतोष कुमार झा आ प्रस्तुति असद दाऊदके।
2: धियापुता जय।

0: बउआ दोस्ती हरेक रिश्ता में सबसे पवित्र रिश्ता है, जकर अस्तित्व एक से बेसी लोकक बीच में होता है। संसार में नीक सच्चा और ईमानदार मित्र भेटनाय वाकई बहुत भाग्यक विषय है। नीक दोस्त अपना सबक अर्थहीन जीवन के अर्थपूर्ण बना दी छथि, अपना सबके सफलता के नीक रास्ता दिखाबे छथि। ओ दोस्ते होय छथि जे अपना सबक जीवन यात्रा के आसान, उमंग से भरल और जीवन बना दी छथि। ओ अपना सबक गलती पर कखनो हंसत नहीं छथि, बल्कि अपन लगातार समर्थन से सही रास्ता देखा अपना सबके आगू बढ़ावे छथि। एकटा नीक दोस्त ओ होय छथि जिनका से अपना सब अपन जीवन के सबटा छोट पैघ खुशी, रहस्य और समस्या के बिना झिझक के साझा कऽ सकी। दोस्ती ओ रिश्ता है जे अपना सबके भावनात्मक समस्या से बचाबित है। नीक दोस्त कखनो अपन मित्रक आलोचना नहीं करे छथि, बल्कि हुनकर कमी के दूर करबा में हुनकर मदद करे छथिन। नीक दोस्त दुनिया में हीरा जेहन अनमोल पाथरों से बेसी कीमती होय छथि। आजुक किसलय कार्यक्रम है राजकीय कृत मध्य विद्यालय स्टेशन रोड से, एत बहुत रास धियापुता बैसल छा, बहुत किस सुनाब चाहे तो अब हिंदे सबसे गपशप करी। बुआ की नाम छी अहाँ?
1: मीनाक्षी कुमारी।
0: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाब चाहे छी?
1: कविता
0: सुनाओ।
1: है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पे ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत

0: के सेवा में अपना सर लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन में पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे।
1: वकी नाम से यहाँ का
2: शालिनी कुमारी।
1: आज कार्यक्रम में यहाँ की सुनाबा चाहे जी।
2: ए मालिक तेरे वंदे हम
1: सुनो।
2: ए मालिक तेरे वंदे हम, ऐसी हो हमारे करम, नेकी पर चले

0: हल्का तरंगे पुन दर्शन हई पुन मति गंग एक अपराध छेब मोर जानी प्रसन्न माय पाए तू पानी की करब जब तक तो जोग ध्यान जन्म की तारत थे एक ही सन भनई विद्यापति समझो तो अंतकाल जनु विसरु मोहि।
1: वो की नाम छी
2: आरती कुमारी।
1: आज कार्यक्रम महा की सुनाबो छै
2: वसंती हवा। हवा हूँ हवा में बसंती हवा सुनो बात मेरी अनोखी हवा बड़ी बाबली हूँ बड़ी मस्त मौला नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा मुसाफिर अजब है न घर बार मेरा न उदय मेरा न इच्छा किसी की न आशा किसी का न प्रेमी न दुश्मन जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं शहर गाँव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर झूमती चली मैं हवाओं हवा में बसंती हवाओं।
1: बहुत वो की नाम छी अहाँ के
3: मणिराज।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी सुनो।
3: अशोक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे बनने वाले दुनिया में अमर में नाम लिखाएंगे जो लोग गरीब बिकारे हैं उन पे ना किसी का चाहे हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाए जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं हम उनके बुझे दबाएंगे हम उनको उत्साह जगाएंगे। रुक मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के दीवाने हम मातृभूमि के सेवा अपना स्वाद लगाएंगे हम उन बीड़ी को बच्चे से जो उनके पक्के सच्चे थे हम अपना नाम लिखाएंगे तो हम जग में नाम कमाएंगे।
1: नाम से यहाँ
4: कुमारी।
1: आज कार्यक्रम महा की सुनाबे चाहे छी
4: तू जिंदा है तो
1: सुनो।
4: तू जिंदा है तो जिंदगी पे जीत पे किन कर अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर या गम के आ चार दिन सितम के आ चार दिन या दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी पे जीत पे किन कर सुबह और शाम के नंगे होगन कर चूम कर तू सुन जमीन गाड़ी कब से झूम झूम कर तू आ मुझे सिंगार कर तू आ मुझे हसीन कर अगर कहीं स्वर्ग तू उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी जीत पे किन कर हजार बिस्तर का है मौत तेरे द्वार पर तो छल न सकी चढ़ गई हार कर नई सुबह के संग तू सदा तुझे मिली नहीं उमंग अगर कहीं स्वर्ग तू उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी पे जीत पे किन कर हमारे कारवाओं का मंजिलों का इंतजार ये आंधी है तूफानों की बिजली पीठ पे सवार है तू आ कदम मिला चल चलेंगे के साथ हम अगर कहीं स्वर्ग तू उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी पे जीत पे किन कर।
1: वह की नाम छी यहाँ का
5: सोनी कुमारी।
1: आज कार्यक्रम में यहाँ की सुनाबे चाहे छी
5: भूल गया क्यों
1: सुनो।
5: भूल गया है क्यों इंसान सबकी है मिट्टी की काया सब पे नबकी निर्जल छाया यहाँ ना कोई आया ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान धरती ने मानव उपजाया मानव ने ही देश बनाया बहु देशों में बसी हुई है एक धारा संतान। भूल गया है क्यों इंसान देश अलग है देश अलग हो बेस अलग है बेस अलग हो मानव ने लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान।
1: वह की नाम छी यहाँ का
6: रोहित कुमार।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी
6: कबीर के दोहरे
1: सुनो।
6: शायद इतना दीजिए जमे समय मैं भी खूब ना रहूँगा साधु नहीं भूख जाएंगे नित की ने राखी आंगन कुटी छवाए बिन साबुन बानी बिना निर्मल करो सुभार।
1: बोवा कोनो आश्रम में बहुतो रास छात्रगण पढ़े छला उनके सब में एक गोट छात्र का अपन ज्ञान पर बहुत बेस अभिमान भ गेल छला। गुरुदेव हुनकर क्रिया पर सदैव नजर राखे छलखिन। एक दिन गुरुदेव आश्रम में सब छात्र के अपना लग बैसा कर एकटा खिस्सा सुनाबे लगला। ओहि खिस्सा में एकटा घनगर जंगल में एकटा हिरण रहे छल। ओ अपना के बहुत बेसी चतुर माने छल। ओकर शरीरक ऊपर घनगर मुदा नर्म केश छल ताहि कारणे ओ और बेसी सुंदर देखबा में आबे छले। एक दिन जंगल में वो घास चर रहा छल तखने किछ शिकारी ओकरा देखलक आ ओकर पीछा केनाय प्रारंभ कऽ देलक। हिरण भागैत भागैत एहन ठाम पहुँचल जतः अंगूर के घनगर लता पसरल छले। ओकरे पाछू जाकर नुका रहल जखन शिकारी ओकरा पाछू करैत ओतः पहुँचल तखन अंगूरक घनगर झाड़ी हेबाक कारणे ओ ओकरा ताकि नहि सकल आ आगू बढ़ि गेल। हिरण अपन चतुराइ पर बड़ बेसी प्रसन्न भेल तखने ओकर ध्यान अंगूर के ओही हरियर हरियर कोमल पात पर गेले। आब ओकर लोभ जीह पर आबि गेले आ किछुए काल में ओ समूचा अंगूरक झाड़ी के सफा चट कऽ देलक। तखने ओ शिकारी सब सेहो हिरण के ताकैत वापस आबि रहल छलथि। अंगूरक झाड़ी आपात नहीं रहबाक कारणे आब ओ हिरण शिकारी सबके देखबा में आवे लगले। शिकारी फेर ओकर पीछा प्रारंभ कयलक आ ओकरा अपन शिकार बना लेलक। वापस जेबाक क्रम में ओ शिकारी सब अपना में यह गप करे छल जे अगर ओ हिरण

झाड़ी साफ नहि कऽ देने रहितै तखन ओकरा पकड़नाइ असम्भव छल। ओ अपन आश्रयके स्वयं नष्ट कऽ देलक, जाहि कारणे ओ मारल गेल। गुरुदेव कथा समाप्त करैत कहलथि, हमर ई कथा कहबाक तात्पर्य इएह छल जे सफलताके नशामे मनुष्य अपन विवेक स्वयं समाप्त कऽ लैत अछि आ स्वयंके संकटमे सेहो फँसा लैत अछि, ताहि कारणे अहंकारसँ अवश्य बचिकऽ रहबाक चाही। तुलसीदास जी सेहो कहने छथिन जे तुलसी साथी विपत्तिके विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक, अर्थात विपत्ति यानी कि मुश्किल समयमे मनुष्यके संग बस केवल ओकर ज्ञान विनम्रतापूर्वक कयल गेल व्यवहार विवेक साहस नीक कर्म अपन सत्य आ भगवानक नामेटा दैत अछि। एकरे संग हम आजुक कार्यक्रमके विराम दै छी। एक बेर फेर एहि विश्वासक संग विदा लै छी जे फेर भेंट होयब अगिला शुक्र दिन अहिना कोनो आन विद्यालयके बच्चाके मुखसँ किस लायक सब धियापुता जय।

0: हाँ, श्रोता लोकनि, अखन किसलै सुनल छलहुँ राजकीय मध्य विद्यालय स्टेशन रोड दरभंगासँ। संकलन, वाचन आ निर्माणमे सहयोग छला आशुतोष कुमार झा आ प्रस्तुति असद दाऊदके।
1: आओर देवू भाय, एकरे सङ्ग घड़ीके सुई कहि रहल अछि जे आब अपना सबके जे छै से गाम घरसँ खेती गृहस्थी दिस चलबाक चाही, आओर जे अपना सबके अन्नदाता किसान भाई लोकनि बैसल छथि हुनकर अपना सबके स्वागत करबाक चाही। तऽ बहुत बहुत स्वागत आओर नमस्कार
0: हमहूँ करै छियनि अन्नदाताके। भारतीय अर्थव्यवस्थामे किसान श्रोता लोकनिके बहुत पैघ योगदान रहै छनि, आओर हुनके पाकऽ जे अनेको तरहक जे तीमन तरकारीके भोग जे छै आशुतोष भाय, हुनके पाकऽ हमरा लोकनि भोग करै छी। तऽ हमरा लोकनि जे छै, हमरा लोकनि खेतीबाड़ी तऽ करै छी, मुदा खेतीबाड़ीके सङ्ग सङ्ग जे बहुत रास ओहिमे खेतीबाड़ीमे पूँजी लगै छै, मेहनत लगै छै, परिश्रम लगै छै, तखन जा कऽ खेतीबाड़ीमे उपजा बाड़ी नीक होइ छै। मुदा खेतीबाड़ी करबासँ पहिने कुछ गपके हमरा लोकनिके जे छै किछु आपसमे गपसप कऽ लिअ आशुतोष भाय। जे ओना तऽ हमर किसान श्रोता लोकनि जे खेतमे जखन जे रासायनिक खाद डालै छथिन, तऽ हुनका ई नहि बुझाइ छनि कि हम रासायनिक खाद कतेक डलबाक चाही, कतेक नहि डलबाक चाही, सन्तुलन मात्रा की हेबाक चाही कि नहि हेबाक चाही, केहन यूरियाके व्यवहार करना चाहिए। बुझै छथिन कि जतेक माने रासायनिक खाद डालब ओतेक उपजा हैत, मुदा ओहन होइ नहि छै। तऽ आइ एहिसँ सम्बन्धित आइ हमरा लोकनि गपशप करब जैविक खाद की उपयोगितापर। जैविक खाद आशुतोष भाई जे समस्त मानव आओर जीव प्राणीके लेल जो छै बहुत उपयुक्त मानल गेल अछि, तऽ ताहि दुआरे हमरा लोकनिके जे छै सदखन किसान श्रोता लोकनिसँ यही आग्रह करबनि कि अपने लोकनि जो छै जे जैविक खादके बेसीसँ बेसी व्यवहार करू।
1: अहाँ पहिलेहो कहि देलियै हँ देवू भाई जे रासायनिक उर्वरक अत्यधिक उपयोगसँ माटिक उर्वरता लगातार कम होइत जा रहल अछि, जाहिसँ भूमिक गुणवत्ता आ पर्यावरण दुनू प्रभावित भऽ रहल अछि। एहन समयमे जैविक खाद खेतीके लेल एकटा सुरक्षित, सस्ता आ पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनि कऽ आयल हँ। हम तऽ कहै छी जे अपना सबके एहि दिस विशेष रूपसँ ध्यान देबाक चाही। जेनाकि जैविक खादके अगर गप करी तऽ प्राकृतिक पदार्थ सब जेनाकि गोबर, पात सब, फसिल सभक अवशेष, अपना सब जे रसोई घरमे जे काज करै छी ओकरो अवशिष्ट, पशु अवशिष्ट, एकरा सबसँ तैयार कयल जाइत अछि।
0: ओतबे नहि आशुतोष भाइ, ई प्राकृतिकके सङ्ग मिलकऽ काज करैत अछि। जैविक खेतीमे कृत्रिम वा सिंथेटिक कारकके उपयोग वर्जित अछि। ओतबे नहि, जैविक खेतीमे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, पौध वृद्धि कारक, ई सबटा बुझू जे जैविक खेतीमे उपयोग नहि होइत अछि। यानी कहि सकै छी जे जैविक खेती अपने लेल, अपन के परिवार के लेल और स्वास्थ्य आ समृद्धि लेल बहुत ही उपयोगी अछि।
1: ठीके कहलहुँ हँ, जैविक खाद के सबसे पैघ लाभ यह अछि जे एहिसँ जे उत्पन्न होइत अछि फसिल ओ स्वास्थ्य के लेल बेसी सुरक्षित आ पौष्टिक होइत अछि। रासायनिक खादक विपरीत एहिमे हानिकारक तत्व नहि होइत अछि, ताहि कारणे ई मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दुनू के लेल लाभप्रद होइत अछि। एकर उपयोगसँ भूमिक उर्वरता नमहर समय तक बनल रहैत अछि आ उत्पादन

0: गुणवत्तामे सुधार होइत अछि। आओर वैज्ञानिक अहाँ कहलहुँ हँ जे ई माटिके आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करैत अछि, ओकर संरचनाके मजबूत सेहो करैत अछि। एकर प्रयोगसँ माटिक जल धारण क्षमता बढ़ैत अछि, जाहिसँ फसिलके नमहर समय तक नमी भेटैत अछि। सङ्गहि माटिमे जे उपलब्ध लाभकारी जीवाणु छै ओ सक्रिय रहैत अछि, जे पौधा सभक वृद्धिमे मदद करैत अछि।
1: जँ हमरा लोकनि जैविक खादके उपयोग करी तो एकर विशेषताके जँ गप करी आशुतोष भाइ, तो कम्पोस्ट वा गोबरक खाद 10 टन प्रति एकर वा 30-40 टन प्रति हेक्टेयर दरसँ हमरा लोकनिके व्यवहार करबाक चाही। खल्लीके सेहो जे छै हमरा लोकनिके सब तरहक माटिमे मिलाकऽ जे फसलमे एकर व्यवहार कयल जा सकैत अछि। एकर एक एकड़मे 105 क्विंटल दरसँ व्यवहार करबाक चाही। जैविक खादके प्रयोग कयलासँ माटिक भौतिक, अहाँ सेहो कहने रही कि माटिक भौतिक, रासायनिक आओर जैविक गुणपर प्रभाव पड़ैत अछि। ओतबे नहि, माटिक संरचनामे सुधार, जल धारण क्षमता, उष्मा शोषण क्षमता, परम्परागत आ जल निकासमे सेहो सुधार होइत अछि।
0: एखुनका समयमे जैविक खेतीके मांग तेजीसँ बढ़ि रहल अछि। किसान यदि जैविक खादके बेसी उपयोग करथि तऽ खेतीके लागत कम होयत आओर माटिक शक्ति सेहो बनल रहत। सरकार देखै छै सेहो किसान सबके जैविक खेती अपनेबाक लेल प्रोत्साहित कऽ रहल अछि। आओर अपना सब कहि सकै छी जे जैविक खाद केवल फसिल उत्पादनके साधन नहि बल्कि स्वस्थ पर्यावरण आ सुरक्षित भविष्यके एकटा आधारशिला अछि। ई खेतीके टिकाऊ, लाभकारी आओर प्रकृतिके अनुकूल बनबैत अछि।
1: आशुतोष भाइ, जँ किसान श्रोता लोकनि क्षारीय माटि आओर उस्सर माटिमे जैविक खाद, खास कऽ कऽ हरियर खादके लगातार व्यवहार कयलासँ माटिक भौतिक आओर रासायनिक दशामे सुधार होइत अछि। जैविक खादके व्यवहारसँ जमीनमे पहिनेसँ जे उपस्थित जीवाणुके क्रियाशील बनाबैत अछि, ओतबे नहि ई जीवाणुसँ नाइट्रीकरण, अमोनीकरण आओर नाइट्रोजन स्थिरीकरणमे सेहो वृद्धि कराबैत अछि। खेतमे खल्लीके व्यवहार कयलासँ सूत्रकृमी, परजीवीसँ फसलके जे छै बचाबैत अछि। आओर नीमके खल्ली यूरियाके सङ्ग मिलाकऽ व्यवहार कयलासँ नाइट्रीकरण प्रक्रिया धीमी होइत अछि। आओर किसान श्रोता लोकनि जँ एहि तरहे आशुतोष भाइ जहन नीम कोटेड यूरियाके जहन व्यवहार करै छथिन तऽ आओर बेसीसँ बेसी उपयोगी भऽ सकै छथि माटिके लेल।
0: देखियौ, यानी कि जैविक खादक प्रयोगसँ फसिलके गुणवत्ता आओर स्वादमे सेहो सुधार होइत अछि। एहिसँ उत्पन्न होइवला अनाज, फल आ तरकारी बेसी पौष्टिक मानल जाइत अछि। ई माटिके कठोर होइसँ बचबैत अछि आ ओकर प्राकृतिक संरचनाके बना कऽ राखैत अछि। जैविक खादके उपयोगसँ खेती टिकाऊ बनैत अछि, सङ्गहि आबयवला जे पीढ़ी छथि हुनका लेल उपजाउ भूमि सुरक्षित रहै छनि। ताहि दुआरे किसान भाइके बेसीसँ बेसी जैविक खाद अपनियाकऽ प्राकृतिक आ स्वस्थ खेतीके बढ़ावा देबाक चाही।
1: आ जँ हमरा लोकनि जैविक खेतीके बेसीसँ बेसी व्यवहार करब आशुतोष भाइ, तो मानव स्वास्थ्य नीक रहबे करत, संग संग समस्त प्राणी के सेहो सुरक्षा भेट सकत अछि।
0: तखने न जखन कियो अपना सबसे भेंट करो आबै छै त केना अपना सब कहै छियै जे रहि जाउ एते हमरा एठम।
1: हां, त आब हमरा लोकन सुनै छियै एकटा ई लोकगीत,
0: सुनल जाय।

0: हाँ, अखन हमरा लोकनि अरविंद कुमार झाके स्वर में ई लोकगीत सुन रहल छलहुँ, खूब निक लागल। आशा करै छियनि श्रोता लोकनिके सेहो निक लागल हेतनि।
1: निश्चित।
0: आब जे छै आशुतोष भाइ, जे हमरा लोकनि जे खेती बाड़ी हमरा लोकनि जे छै खेती बाड़ी कऽ कऽ अपन अन्न पानिके तऽ ओरियान कऽ लै छी, मुदा जे बथान पर जे माल मवेशी जे बांधल अछि तऽ ओकरो लेल जे छै ने किछु जे छै चारा ताराके व्यवस्था करय पड़त।
1: आओर की, ई तऽ सबसे आवश्यक अछि।
0: ओहोमे अखन आब बुझू जे ई जे समय जो आब आबि रहल अछि, ओ बुझू जे खरीफ मासके, तऽ ई खरीफ मासमे जे छै ओनाहियो जे चारा फसिलके ओरियान कऽ कऽ पहिले हमर किसान श्रोता लोकनि जे राखि लै छथिन, तऽ कोनो तरहक जे बरखा बूंदी जखन होइए तऽ ओहि कालमे जे छै चारा फसिल काज दैए। तऽ ओहेसँ सम्बन्धित हमरा लोकनि एकटा भेंटवार्ता सुनै छी। भेंटवार्ताके विषय अछि चारा फसिलके खेतीपर गपशप। वार्ताकार छथि डॉक्टर गंगाधर नन्दा, आ हिनकासँ गप कऽ रहल छथि आशुतोष कुमार झा।
2: आकाशवाणी दरभंगासँ हम आशुतोष कुमार झा, एखन हमरा सङ्ग छथि डॉक्टर गंगाधर नन्दा, सहायक प्राध्यापक शस्य विज्ञान एवं चारा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुरसँ। एखन हमसब गप करब चारा फसिलके खेतीके सम्बन्धमे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अहाँ का स्वागत।
3: सभी किसान भाई और बहनों को मेरा नमस्कार।
4: अपना सब पहले चर्चा कह चुकल छी जे हरियर चारा के खेती किसान भाई सभक लेल अत्यंत आवश्यक अछि, तखने बेगरता पड़ला पर ससमय ई भेट सकत। अपना सब गप कऽ रहल छलहुँ जनेर आ बाजरा के सम्बन्ध मे, जाहिमे अपना सब ज्वार बाजरा के किस्म, ओकर बीया के सम्बन्ध मे आ इहो गप केलहुँ जे एकरा कतार से कतार मे लगेनाइ नीक होइत अछि, और एकरा सभक सम्बन्ध मे की सब ध्यान रखबाक चाही से कहो।
3: अगर बात करें हम तो मल्टीकट वाला ज्वार के लिए हमको लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर हमको रखना पड़ेगा, आवश्यक है, आवश्यक है। वैसे बाजरा के लिए भी 30 सेंटीमीटर हमको लाइन से लाइन दूरी रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें खाद कितना जरूरी है,
1: खाद कतेक आवश्यक है, यह बहुत

0: हाँ,
1: बायोटेक।
0: तो अगर हम देखेंगे चारा फसलों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लगाते समय भी कुछ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालना होगा जैसे यूरिया, और बाद में हमको जब काटते हैं काटने के बाद भी यूरिया जरूरत पड़ता है ताकि हमारा
1: अच्छा,
0: जल्दी उसमें ग्रोथ आ जाएगा,
1: फिर ओकर जल्दी से बढ़ोतरी हो जाए ताहि कारण अपना सबके
0: उसे
1: कर
0: हम समय से
1: दिया।
0: फिर काट पाएंगे उसको।
1: ठीक,
0: ठीक है,
1: बहुत नीक।
0: तो अगर हम देखें तो हमको ज्वार के लिए 150 kg नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, 45 kg फॉस्फोरस की और 60 kg पोटाशियम की जरूरत पड़ती है मल्टीकट ज्वार के लिए।
1: ज्वार
0: तो
1: के
0: जिसमें हम की 45 kg नाइट्रोजन हमको लगाने के समय पर डालने की जरूरत है, और 45 kg 30 दिन लगाने के बाद डालने की जरूरत है, और 30 30 kg पहला कटाई और दूसरे कटाई के बाद हम लोग डाल सकते हैं।
1: बहुत सुंदर।
0: और ऐसे ही अगर हम बात करें बाजरा के लिए तो हमको 120 kg नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और 40 kg हमको फास्फोरस का जरूरत पड़ता है। तो जिसमें कि हम 40% नाइट्रोजन, इसका मतलब 48 kg नाइट्रोजन हमको बुआई के समय जरूरत पड़ता है, और 30% नाइट्रोजन हमको, इसका मतलब 36 kg नाइट्रोजन पहली कटाई के बाद डालना पड़ता है, और 36 kg नाइट्रोजन हमको दूसरी कटाई के बाद जरूरत पड़ता है।
1: एकर ध्यान रखना बहुत आवश्यक।
0: बहुत आवश्यक है, अगर समय से हम अगर खाद नहीं डालेंगे तो समय से हमारा ग्रोथ नहीं होगा, समय से हमको हरा चारा नहीं मिल
1: नहीं
0: पाएगा।
1: बेटा,
0: अगर हम बात करें गर्मी में कि गर्मी में हमको ज़्यादातर हरा चारा हम लोग उस क्षेत्र में लगाते हैं जहाँ हमारे पास पानी की सुविधा होती है। अगर हम बात करें तो कम से कम पूरे पीरियड में अभी से अगर हम लगाएं तो हमको 3 कटिंग मिलेगा, तो लास्ट तक वो अक्टूबर तक खींच के जाएगा, हम हरा चारा मिलेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, जनेरा हम लोग बरसात में भी लगाते हैं, तो बरसात में जब लगाएंगे तो बरसात में तो पानी देने की जरूरत नहीं पड़ता
1: जरूरत
0: है,
1: नहीं
0: उसमें
1: पड़ता
0: हमको ज़्यादा से 1 कटिंग मिलता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही कटिंग मिल सकता है। अभी से अगर हम लगाते हैं अमूमन हमको 5 से 6 बार पानी देना पड़ेगा बाजरा और हमारे ज्वार में। ज़्यादा ध्यान हमको इसलिए देना पड़ेगा, ज्वार लगाते हैं जो भाई बहन, कि हमको ध्यान देना होगा कि वहाँ पानी वहाँ जमना नहीं चाहिए।
1: है। अच्छा, पानी पटोना तो आवश्यक है, जमा नहीं होना चाहिए।
0: हाँ, जब जम जाएगा पानी वहाँ पे तो बाजरा के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके तुलना में अगर देखेंगे तो ज्वार हमारा थोड़ा सा पानी सह सकता है, लेकिन बाजरा एकदम पानी नहीं सह सकता। अगर बात करें कैसे हम उसको कटाई करेंगे, कटाई प्रबंधन कैसे होना चाहिए, उपज हमको कैसे मिलना चाहिए, अगर हम उसमें देखें तो ज्वार हम जो है लगाने के 60 दिन बाद पहला कटाई ले सकते हैं। पहला कटाई हमको क्या करना होगा, जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर काटना पड़ेगा ताकि हमारा नेक्स्ट कटिंग जो आएगा उसमें ज़्यादा टिलर आ सके, हमको हरा चारा ज़्यादा मिल सके,
1: एकर ध्यान रखने आवश्यक है।
0: बहुत आवश्यक है। उसके बाद दूसरा और तीसरा कटाई हम 45 दिन के अंतराल पर ले सकते हैं। वैसे ही अगर बाजरा की हम बात करें तो पहली कटाई हमको मल्टीकट बाजरा के लिए 45 से 55 दिन में लेना पड़ेगा, और दूसरा एवं तीसरा कटाई हम पहला कटाई के 35 दिन बाद लेंगे, और तीसरा कटाई जो है 50% फूल आने की अवस्था पे हम ले सकते हैं। तो इससे हमको क्या मिलेगा, ज्वार से लगभग हमको 500 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टर मिल सकता है मल्टीकट से बिहार के कंडीशन में, और ऐसे ही हमारे बाजरा में हमको लगभग 700 से 800 क्विंटल हरा चारा मिल जाएगा अगर हम इस सीजन में हरा चारा लगाते हैं और हमारे पास पानी की व्यवस्था है तब।
1: अच्छा, कटनी के बाद ओकरा पर अतिरिक्त ध्यान देवाक आवश्यकता पड़ी छे।
0: नहीं, कटनी के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको कटाई के समय पर ध्यान देना होगा, कम से कम ये जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर हम उसको काट
1: ऊंचाई
0: रहे हैं,
1: बराबर
0: और
1: छे।
0: उसके बाद थोड़ा सा अगर घास है तो थोड़ा निराई गुड़ाई करने के बाद हमको जो मैंने बताया है उतना हमको यूरिया डाल देने की जरूरत है पानी पटा के, तब जाके हमारा, और ज़्यादा ध्यान हमको कुछ रखना नहीं पड़ेगा, तब जाके हम समय से हमको हरा चारा मिल पाए।
1: अच्छा, एक अतिरिक्त में अपना सब गप कलो नेपियर घास का एकरा लेल की करे पड़त।
0: जैसे हम लोग ज्वार और बाजरा में बीज से लगाते हैं, इसमें बीज जो है फर्टाइल नहीं रहता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, गन्ने के जैसे हमको वो तना का कटिंग से इसको लगाना पड़ेगा, तो जिसमें कि 3 आंख होगा या 2 आंख होगा। अगर 3 आंख है तो हम उसको 2 आंख जमीन के नीचे 1 आंख जमीन से ऊपर रखना होगा, और 2 आंख अगर है तो 1 आंख जमीन के नीचे 1 आंख जमीन से ऊपर लगाना होगा, जैसे कि हम लोग इंख लगाते हैं। हमको जमीन से जो है 45 डिग्री करके हमको लगाना पड़ेगा, और लगाने के बाद गर्मी का सीजन है ये, इसको हमें अच्छे से पानी पटा देना पड़ेगा बढ़िया से, तब जाके हमारा नेपियर हम बढ़िया से होगा, और जो खेत में हम नेपियर लगाने जा रहे हैं उसको बढ़िया से जुताई कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमको ध्यान रखना होगा कि हम ये बहुवर्षीय हरा चारा है, मतलब
1: बहुवर्षीय अच्छा।
0: एक बार हम लगाएंगे कम से कम 3 साल से 5 साल ये चलेगा, तो इसीलिए जो भी खेत में हमको डालना है, हमारे पास कंपोस्ट है, हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, जो भी हमारे पास जैविक खाद है हम उसको अच्छे से मिट्टी में मिला देंगे ताकि हमको 3 साल के लिए हमको बढ़िया हरा चारा मिले।
2: बहुत नीक अहाँ कहलहुँ, किसान भाई लोकनि जखन एहि तरह चारा फसल का खेती करता तो निश्चित रूप से उनका कखनो दिक्कत नहीं हेतन। अहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ, श्रोता लोकन अखन चारा फसल के खेती पर भेंटवार्ता सुन रहा है। भेंटवार्ता काल छल डॉक्टर गंगाधर नंदा हिनका से गप कर रहा है आशुतोष कुमार झा। दोनों गोटे के बीच भेल गपशप खूब निक लागल। आशा कर छियन किसान श्रोता लोकन के सेहो लाभ हेतन गपशप से।
1: निश्चित निश्चित, जेना कहलौ हैं जे देखियो आवश्यक चीज छे यहाँ का चारा फसल न, जेना अपना सब अपना खपीबे के व्यवस्था को करा के छी। वर्षा बुनी के समय छे तहिना आवे वाला छे ना बुआ।
0: हाँ,
1: व्यवस्था तो कोकरा रखे पड़त।
0: अखने से ना कहबी तो छे जे समय से पहले चेत किसान।
1: चेत किसान एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सेहो आ देबू है। श्रोतागण, गर्मी के मौसम अगर सावधानी नहीं रखल जाए तो लू लगवाक अलावा स्वास्थ्य संबंधी कई टा आन समस्या सेहो भ सकैत अछि। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां यह अछि आकाशवाणी दरभंगा का फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी का अगिला अंकक विषय। विशेषज्ञ हेता डॉक्टर फूलेश्वर झा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़वाक लेल फोन नंबर है 9430002953। एक आन और नंबर है 0627222481। फोन नंबर एक बेर फिर से सुन लेल जाए 9430002953। एक आन नंबर 0627222481। समय याद राखी रवि दिन 24 मई दिन का 11 बजे।
0: एक संग कार्यक्रम संबंधी सूचना सम्पन्न भेल। आई सूचना बहुत निक छल आशुतोष भाई, एहि दुआरे कि जै दौर से मौसम में गर्मी बढ़ रहल है ओहि दौर से हमरा लोकन के सचेत होके सेहो रखबाक
1: चाही।
0: तो अंत में देखै छियनि कि खूब गर्मी आ कखनो खूब ठंड, मौसम में उतार चढ़ाव, तो ये उतार चढ़ाव जो छे अनेको तरह रोग व्याधि के समस्या के सेहो उत्पन्न करते।
1: छोटका काका कहे छथिन ने सावधानी हटल नहीं कि दुर्घटना घटल नहीं।
0: हाँ,
1: तो सावधानी पूरा राखी। जे कहली छे जे अपना सबके छत्ता लोहे के बाहर निकली, पानि पूरा पिए के निकली,
0: जो आवश्यकता हुए तखने घर से बाहर निकली, ओना जो छे बीच दुपहरिया में तो नहीं निकलवाक चाही। आखिनका जो समय है आशुतोष भाई वो भिनसर के काज कर लिया बा संध्याकालीन करूँ, यही दूटा समय छे। बीच बिछहा के जो रौद हो या ना बुझू जो बहुत ही जो छे शरीर के लिए हानिकारक हो या।
1: हानिकारक
0: मुदा जो समय विशेष काज के छे तो जाहे पड़त ना, ओकरा लेल जो छे छतरी लेके चलू, भ सके तो एक तौलिया माथ पर सेहो रख लिया।
1: राखिए टा लियो भ नहीं सके। और मौसम संबंधी किछ सूचना है सेहो सुना दियन।
0: हाँ हाँ सुना
1: दियन। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 23 से 27 मई तक का मौसम पूर्वानुमान के अनुसारे पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिला सब गरज वाला मेघ बन सकते हैं। अय प्रभाव से 24 से 25 मई के लगपास अनेकों स्थान पर हल्लुक बरखा भ सकते हैं। बरखा के समय तेज हवा चलवाक सेहो संभावना छे, कतौ कतौ बिजली खसवाक सेहो संभावना छे 24 और 25 मई के लगपास। अय अवधि में सामान्य से बेसी तापमान रह सकते हैं, जकरा कारण एक दू दिन तक हीट वेव जेहन स्थिति बन सकते हैं। पूर्वानुमानित अवधि में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकते हैं, जखन कि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के लगपास रह सकते हैं। सापेक्ष आर्द्रता भोर में 70 से 75% आ दुपहरिया में 35 से 40% रहबाक अनुमान छे। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 18 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वावसात चलवाक सेहो संभावना छे। ई छल
0: मौसम संबंधी सूचना आ मौसम के अनुकूल आशुतोष भाई हमरा लोकन के खेती बाड़ी सेहो करबाक चाही। तो हमरा लोकन के जो समयक अनुकूल जे जेना जे पहले अखन जो मास चल रहल अछि तो ई मास में हमरा लोकन के सोना पाट के जे ओकर प्रभेद अछि जे आर ओ 32 के बाग और सादा पाट के पौध के जो छै अहाँ के बछनी सेहो करबाक चाही, यानी कमठौनी सेहो कर लेबाक चाही।
1: और
0: संग संग खरीफ धान के बिया के ओरियान करबाक चाही। 20 मई के बाद अगात धान के बिया के खसेबाक चाही,

0: पिया गिरेबासँ पहिने बीजोपचार अवश्य कऽ लेबाक चाही।
1: किसान भाइके सलाह देल जाइ छनि जे 25 मईसँ नमहर अवधिक धानके किसिमके लेल खेतके तैयारी आओर नर्सरी खसेबाक काज शुरू कऽ दैथ। नर्सरीमे नीक तरहें सरल गोबरके खाद दी, उपचार हेतु कार्बेंडाइजियम 1-5 ग्राम प्रति किलोग्राम बिया दरके हिसाबसँ व्यवहार करबाक चाही।
0: तऽ ई छल खेती गृहस्थीक सम्बन्धी कार्यक्रम। आब हमरा लोकनि जे कार्यक्रमके जे छै जे किसान श्रोता लोकनिसँ चलक आज्ञा ली।
1: आब आज्ञा ली किएकि समय
0: भाई
1: नमस्कार देबू भाई।

खेती गृहस्थी किसान भाइयों को संबोधित था। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। राजस्व कार्यों की अब प्रतिदिन होगी समीक्षा। 25 मई से 11 जून तक सभी जिलों का मॉनिटरिंग करेगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। राज्य में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला। दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बांका, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे

0: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत रेल, गृह, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा और उच्च शिक्षा समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य वागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आगामी 25 मई से राज्य के सभी जिलों में राजस्व कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा शुरू करेगा। अभियान की शुरुआत पश्चिम चंपारण, सहरसा और वैशाली जिले से होगी। 11 जून तक चलने वाली समीक्षा बैठक की मॉनिटरिंग विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। बैठकें शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच 3 पालियों में आयोजित होंगी। इस दौरान ऑनलाइन दाखिल खारिज के लंबित मामलों, परिमार्जन प्लस के तहत डिजिटल जमाबंदी के शुद्धिकरण, ई मापी और सरकारी भूमि सत्यापन की प्रगति की जांच की जाएगी। इसके अलावा लोक भूमि अतिक्रमण से जुड़े मामलों में कार्रवाई, जन शिकायत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन, सहयोग शिविरों में मिले आवेदनों और फार्मर रजिस्ट्री अभियान की स्थिति की भी समीक्षा होगी। बिहार को स्किल हब बनाने की दिशा में आज पटना में उद्योगों के साथ सहभागिता सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और सचिव डॉ. कौशल किशोर ने सम्मेलन का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल और सक्षम बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
1: पीएम सेतु योजना, उसके तहत 75 ITI को क्लस्टर में बांटकर उसको उन्नत करना है और उद्योग और उद्योग समूह के साथ बैठकर इस पर चर्चा की जाए कि हम किस प्रकार से, किस तकनीक से उसको करें, कैसे करें ताकि वो रोजगार से सीधे जुड़ सके। तभी आदरणीय सम्राट चौधरी और बिहार की सरकार ने जो संकल्प लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को हम 25 से 30 में रोजगार देंगे तो उसमें एक ठोस पहल हो सकेगी।
0: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को मिल रही सहायता राशि की अगली किस्त की घोषणा की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसी महीने लाभार्थी महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
2: महिलाओं को 10-10,000 रुपया रोजगार करने के लिए दिया गया, रोजगार भी उन लोगों ने शुरू किया। और जहां तक 2 लाख देने का सवाल है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी महीने में उनको 2-2 लाख रुपया का जो सेकंड राशि, वो सेकंड राशि उनको भुगतान किया जाएगा। और पहला किस्त गया तो दूसरा किस्त भी जाएगा 20,000 रुपये का, तीसरा किस्त जाएगा 40,000 रुपये का और चौथा किस्त जाएगा 60,000 का और पांचवा किस्त जाएगा 80,000 का, यानी 5 किस्तों में 2,10,000 रुपया।
0: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। कुंदन कुमार को गृह विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि डॉ. बी. राजेंद्र को निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीलेश रामचंद्र देवरे को बिहार राज्य आवास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अरविंद कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार श्रीवास्तव को वित्त विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। सीमा त्रिपाठी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अरविंद कुमार वर्मा को उद्योग विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि इनायत खान को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य में IPL टीम बनाने की उद्योगपति अनिल अग्रवाल की पहल को सरकार

0: सरकार का समर्थन भी मिलने लगा है। श्री अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार की क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देने की बात कही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार क्रिकेट को लेकर स्पष्ट विजन और मिशन मोड में काम कर रही है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य का खेल विभाग इस पहल के साथ मजबूती से खड़ा है और बिहार की आईपीएल टीम बनाने में हर संभव सहयोग देना चाहता है।
1: हमारे मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने इसका स्वागत किया है। इस सोच को आगे बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं खेल मंत्री और एक खिलाड़ी होने के नाते इसका पूर्णतः स्वागत करती हूँ और मैं पूरा आश्वास उन्हें भी देना चाहती हूँ कि यदि आप इस तरह की आईपीएल टीम को लेकर बिहार के नाम से आगे बढ़ाते हैं, बिहार के बच्चों को खेलने का एक अवसर, एक मौका देते हैं, बिहार सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और हर संभव प्रयास करेगी कि बिहार में हर खेल, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई और खेल, उसके खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते रहे और बिहार का नाम गर्व से ऊंचा रहते रहे।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक ओर जहां दक्षिण बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं उत्तर बिहार में अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना जताई है।
6: दिनांक 23 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बांका, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। वहीं 6 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10:30 तक ही चलेंगी। यह आदेश सभी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों पर 26 मई तक लागू रहेगा। इधर बेगूसराय जिला प्रशासन ने भी 8 कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सुबह 11 के बाद पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25 मई तक लागू रहेगा। वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन ने 23 मई से सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को 10:30 तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेल खंड पर रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव

0: किया गया है। कटिहार रेल मंडल के प्रवर मंडल रेल प्रबंधक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि 10 जून से 14 जून तक 13 जोड़ी से अधिक एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 12 जोड़ी ट्रेनों का मार्ग 7 जून से 13 जून तक बदला गया है। रेल प्रबंधक ने बताया कि जून के बाद ट्रेन सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद है।
1: कि कटिहार मनिया और कटिहार दनखोड़ा सेक्शन में हमारे यहाँ पे NI वर्क किए जा रहे हैं। ये कार्य जो अभी सिंगल लाइन सेक्शन है उनको डबल करने के लिए किया जा रहा है। जहाँ अभी एक लाइन है वहाँ पे दूसरी लाइन भी आ जाएगी। कटिहार मंडल में 13 पेयर गाड़ियों का कैंसिलेशन किया गया है और एक पेयर गाड़ी का पार्शियल कैंसिलेशन या शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया है और 60 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है जिससे कि इस कार्य को पूरा किया जा सके। इसमें जो हमारी एक ट्रेन है शॉर्ट टर्मिनेट हुई वो कोलकाता जोगबनी ट्रेन है जो कि पहले जोगबनी तक जाती थी, अभी इसको कटिहार तक शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। ये गाड़ी यहीं से कोलकाता के लिए भी जाएगी और वापस जोगबनी ना जा करके यहीं से चलाई जाएगी।
0: आज महान समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की जयंती पर राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाकर जाति व्यवस्था, छुआछूत और अंधविश्वास का व्यापक विरोध किया। उनका सामाजिक सुधार, सती प्रथा के खिलाफ अभियान, बाल विवाह का विरोध और ब्रह्म समाज की स्थापना जैसी उल्लेखनीय पहल अविस्मरणीय योगदान का प्रतीक है। उनके जयंती पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। जिलाधिकारी और सिवान सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कुल 7 मामलों की सुनवाई कर सभी मामलों का निष्पादन कर दिया। जिला प्रशासन ने बताया कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली के तहत नियमित रूप से सुनवाई की जा रही है ताकि लोगों को समयबद्ध न्याय और राहत मिल सके। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रोहतास जिले में अलग अलग कार्रवाई करते हुए सासाराम CO आकाश कुमार रोनियार और उनके सहयोगी सोनू कुमार के साथ साथ सदर अस्पताल सासाराम के एक कर्मी सतीश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के हरिणय सीमा के समीप सरकारी भूमि पर अवैध रूप से दुकान निर्माण कर वर्षों से रंगदारी और अवैध वसूली करने वाले 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में गठित जिला धावा दल की टीम ने कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड क्षेत्र से बाल श्रमिकों को मुक्त कराया और नियोजक पर प्राथमिकी दर्ज की। अररिया जिले में परमान नदी पर बने झमटा महिषाकोल पुल का मुख्य पाया धंस जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू की गई है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित वर्ष 2022 के इस पुल में दरारें आने की सूचना है, हालांकि वाहनों की आवाजाही जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। राजस्व कार्यों की अब प्रतिदिन होगी समीक्षा। 25 मई से 11 जून तक सभी जिलों का मॉनिटरिंग करेगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। राज्य में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला। दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बांका, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार

0: कर सकते हैं।
1: अच्छा ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मदेश कुमार तिवारी।
4: गोपालगंज जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिले की सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 26 मई तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अंतर्गत प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से लोगों को लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने गंगा और नारायणी पथवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सारण जिले के दरिहरा से गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट तक अत्याधुनिक नारायणी पथवे फोरलेन ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 73 किलोमीटर होगी। राज्य सरकार से इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद बैकुंठपुर विधायक सह शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बैकुंठपुर सहित गोपालगंज जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि प्रगणक उनके घर पहुंचे तो सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। आर्केस्ट्रा संचालकों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जिले के विभिन्न इलाकों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने छापेमारी कर 44 नाबालिग लड़कियों को आर्केस्ट्रा से मुक्त कराया है। वहीं मामले में संलिप्त 21 संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज पुलिस महिलाओं के शोषण और मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आवाज दो मुहिम चला रही है, जिसके तहत लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। साथ ही शिकायत और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ताकि पीड़ित को समय पर मदद उपलब्ध कराई जा सके। ऑपरेशन मुस्कान के तीसरे चरण के तहत गोपालगंज पुलिस ने चोरी हुई 20 बाइक और 62 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं बरामद बाइक और मोबाइल फोन को उनके धारकों को सौंप दिया गया। बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार गोपालगंज पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जिले के राजापट्टी, बैकुंठपुर और मोहम्मदपुर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा उन पर फूल बरसाए गए। वहीं शहर के एक निजी मैरिज हॉल में शिक्षा मंत्री का अभिनंदन समारोह किया गया, जिसमें सदर विधायक सुभाष सिंह, जिलाध्यक्ष मंटू गिरी सहित एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। श्री तिवारी ने आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में संस्कृति की झलक मिलेगी, विकास भी विरासत भी साथ साथ चलेगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की अवधारणा को आत्मसात करते हुए नई शिक्षा नीति को बिहार में मजबूती से लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा,
5: चाहे गरीब का कितना भी दूर झोपड़ी होगा, और अगर उसके झोपड़ी में कोई बच्चा होगा वो पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं होगा, हमारा शिक्षा विभाग उस बच्चे को खोज करके स्कूल में लाएगा और उसकी सारी व्यवस्था बिहार सरकार करेगी, लेकिन हर हाल में बच्चे को शिक्षा दिया जाएगा, इसका पूरा इंतजाम हम कर रहे हैं।
4: बीते दिनों शहर के अंबेडकर भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डी योजना के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को

0: शुल्क सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और जिला पदाधिकारी पवन सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर संबंधित विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे। गोपालगंज के लामीचौर गांव में सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में 9 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सात फेरे लिए वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। इस अवसर पर ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मदेश कुमार तिवारी।
2: ये आकाशवाणी दरभंगा है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म मिलन का, युगल स्वर था मुकेश और लता मंगेशकर का। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ यह नगमा था जिसकी धुन बनाई थी रवि ने। आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था ख़ानदान। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार में अपने समस्त सुधी श्रोता बंधु के आत्मिक स्वागत अछि। श्रोता बंधु, संसार भरि में जन्म आ मृत्यु के क्रम अहर्निश चलैत रहैत अछि। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल संसारक कोनो ने कोनो कोण में जन्मो होइत रहैत अछि आ ओही क्षण ओही पल मृत्यु के क्रम सेहो अबाध गति सँ चलैत रहैत अछि। एहि नश्वर संसार में मृत्यु ध्रुव सत्य थिक। जकर ककरो जन्म भेल अछि ओकर मृत्यु होयब निश्चित थिक। से गाछ बिरिछ होय आकि कोनो जीव जंतु, जकर

जन्म भेल तकर अंतो निश्चिते होयत। होइतो अछि एहन मनुखो केर यह स्थिति। मनुखो जन्म लैत अछि आ ओकर मृत्यु सेहो होइते अछि। मुदा मनुख में बहुतो एहन होइत आयल छथि जे अपन कीर्ति केर बले अमरत्व सेहो प्राप्त कयलनि अछि। हुनकर काया भने पंच तत्व में विलीन भऽ गेलनि, मुदा ओ अपन पांच भौतिक शरीर में विद्यमान नहियो रहि पबैत अपन नाम के अमर कऽ गेल छथि। ओ अपन योगदानक कारणे सभ दिन मौन पाड़ल जाइत छथि आ मौन पाड़ल जाइत रहताह। अपन कीर्तिक कारणे अपना विचार में ओ सभ दिन जीवित रहताह। कहलो गेल अछि कीर्तिर्यस्य स जीवति, अर्थात जनिक कीर्ति छानि माने यश ख्याति छानि ओ जीवित रहताह, जीवित रहैत छथि। शेष सभ गोटे मृत्यु के प्राप्त होइत छथि। श्रोता बंधु, ई विश्व तो रंगमंच थिक। एहि रंगमंच पर सभ गोटे अपन अपन भूमिका कर संग उतरैत छथि, जाहि में सँ कतिपय अपन छाप छोड़ि कऽ विदा होइत छथि, जखन कि शेष आयल गेल मात्र रहि जाइत छथि। आबि विश्व केर रंगमंच पर क्यों गढ़ै छै इतिहास, क्यों निमाहि कऽ अपन भूमिका, बनि जाइ छै इतिहास। क्यों आयल आ गेल न ककरो केन्द्रित कयलक ध्यान, क्यों क्यों आयला अमर भेला कऽ कीर्तिक अमृत पान, क्यों क्यों आयला अमर भेला कऽ कीर्तिक अमृत पान। श्रोता बंधु, मैथिली साहित्य में सेहो अनेक शह एहन विभूति भेल छथि जे कीर्ति केर अमरत्वक पान कऽ चुकल छथि। अब महाकवि विद्यापति के लेल जाय तो देखब जे लगभग आइ सँ 574-75 वर्ष पूर्व ओ अपन भौतिक काया केर त्याग कऽ एहि नश्वर संसार सँ विदा भऽ गेला, मुदा अद्यापि अपना रचना में अपन कृति में जीवित छथि, जे आइयो ओहिना टटका लगैत अछि जना 500-600 बरख पूर्व अपन साहित्य सर्जन केर काल में रहल होयत।

अखन अपना सब महाकवि विद्यापति केर काव्य रचना एही गीत केर आनंद लो रहल छलाहु। स्वर छलानि राम कुमार मल्लिक केर। अब देखू जे एही गीत रचना केर विशेषता जे एकरा माय बहिनी लोकनि अपना लय भास में सेहो गबैत छथि आ शास्त्रीय संगीत कर क्षेत्र केर महारथी सेहो संगीत बद्ध क गबैत छथि। ये गीत सब आइयो ओहिना आनंद दैत अछि जना अपना रचना काल में दैत।

रहल होयत। श्रोता बंधु, मैथिली साहित्य में अनेक एहन नाम अछि जे महाकवि विद्यापति जकां अपन अक्षर साधनाक बले अमरत्व के प्राप्त कयलनि। एहि श्रृंखला में एहने एक गोट प्रख्यात साहित्य साधक थिकाह डॉक्टर सुभद्र झा। डॉक्टर सुभद्र झा मैथिली भाषा साहित्य क्षेत्र में अपन अमूल्य अवदान दिलनि आ एहि अवदानक बले ओ आइयो जीवित छथि। तो किया ने हिनकर योगदान केर पुनर्स्मरण कयल जाय। आओ पूर्व प्रसारित साहित्य साधक श्रृंखला केर माध्यमे करैत छी हिनक पुण्य स्मरण। साहित्य साधक, नमस्कार। आई एहि श्रृंखला में साहित्य साधक डॉक्टर सुभद्र झा। मैथिलीक जाहि विशाल साहित्य महल सँ हमरा लोकनि

तुझी हिनक पुण्य स्मरण। साहित्य साधक नमस्कार, आई एहि श्रृंखला में साहित्य साधक डॉक्टर सुभद्र झा। मैथिलीक जाहि विशाल साहित्य महल सँ हमरा लोकनि अभिभूत होइत रहै छी, जाहि महल केर सौंदर्य ओकर विशालता हमरा लोकनिकेँ गौरवान्वित करैत रहैत अछि, तकर शिलान्यासकर्ता लोकनिमे अनेकशः साहित्य साधक लोकनिकेर अवदान रहलनि अछि। एहिमे बहुत रास एहनो साहित्य साधक रहलाह जे कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर, महाकवि विद्यापति, मनबोध ओ चंदा झा जकाँ अपन अवदान देलनि। एहिमे प्रमुख थिकाह आधुनिक मैथिली केर प्रख्यात भाषा शास्त्री डॉक्टर सुभद्र झा। मैथिली भाषा केर राष्ट्रीय स्तर पर संस्थापन में हिनको प्रमुख अवदान रहलनि। ई अपन सारस्वत साधना सँ मैथिली भाषा के तेहन निस्सन आधारशिला उपलब्ध करौलनि जे मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धि केर हेतु बनल। हिनक योगदानक जोड़ लगाएब सम्प्रति असंभव सन लगैत अछि। एहि अवदान में डॉक्टर सुभद्र झा केर सर्वप्रमुख भूमिका तो छनि है। हमरा लोकनि डॉक्टर सुभद्र झा केर ओहि वरिष्ठ छात्र मित्र केर सेहो ऋणी छी जे हिनकर नाम विज्ञान संकायक बदला कला संकाय में लिखबा देलथिन। डॉक्टर सुभद्र झा केर इच्छा छलनि जे चिकित्सक बनथि। मैट्रिक केर बाद एहि लेल सन्नद्ध सेहो भेला। विज्ञान विषय पढ़बा लेल कलकत्ता विदा भेला, मुदा एकटा वरिष्ठ छात्र हिनका बुझौलथिन आ हुनकर बात मानि कऽ ई मुजफ्फरपुर पहुँचि गेलाह। ओ छात्र हिनकर नामांकन विज्ञान संकाय में करैबा केर बात कहि कऽ मुजफ्फरपुर लऽ गेल छलथिन, मुदा नाम लिखबा देलथिन कला संकाय में। एकरे सुपरिणाम भेल जे हमरा लोकनिकेँ मैथिलीक प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर सुभद्र झा प्राप्त भ सकलाह। से तेहन भाषाविद जे मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इटैलिक सहित 14 गोट देशी विदेशी भाषा में निष्णात छलाह। डॉक्टर सुभद्र झा के जन्म भेल छलनि मधुबनी जिलाक नागदह गाम में 9 जुलाई 1909 के। पिता छलथिन कुंजी झा आ माय कर नाम छलनि निरंजना देवी। पिता के मार्ग निर्देशन में प्राच्य विद्या संस्कृत सँ प्राथमिक शिक्षा आरंभ कयलनि। पछाति हिनकर नाम मधुबनी केर वाटसन स्कूल में लिखाओल गेल, जत सँ मैट्रिक केर परीक्षा उत्तीर्ण भेला। एकर बाद GBB कॉलेज मुजफ्फरपुर सँ अंतर स्नातक केर डिग्री प्राप्त कयलनि। एकर बाद ओ कलकत्ता चलि गेलाह, जतो स्कॉटिश चर्च कॉलेज सँ 1932 में संस्कृत प्रतिष्ठा में स्नातक केर उपाधि प्राप्त कयलनि। पछाति 1934 में वेद विषय केर संग संस्कृत में MA आ 1935 में हिंदी में MA केर डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय सँ प्राप्त कयलनि। ओहिठाम प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी सन शिक्षक कर सानिध्य हिनका प्राप्त भेलनि। 1936 में बिहार संस्कृत एसोसिएशन सँ साहित्याचार्य कर उपाधि सेहो डॉक्टर सुभद्र झा प्राप्त कयलनि। 1936 में पटना विश्वविद्यालय सँ रिसर्च फेलोशिप प्राप्त भेलनि। मैथिली भाषाक उद्भव ओ विकास पर केंद्रित शोध कार्य में ई सन्नद्ध भेला आ 1940 में कलकत्ता जाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के सानिध्य में शोध कार्य संपन्न कयलनि, जाहि पर हिनका डिलेट कर उपाधि प्राप्त भेलनि। 1946 में हिनका पटना विश्वविद्यालय सँ रिसर्च फेलोशिप प्राप्त भेलनि आ एही अवधि में पेरिस कर यात्रा कयलनि आ एही क्रम में स्कॉटलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली आदि केर परिभ्रमण सेहो कयलनि, जाहि पर यात्रा साहित्य सेहो लिखलनि।
डॉक्टर

सुभद्रझा केर जे शोध से पछा ची द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज के नाम सँ प्रकाशित भेल आ यह पोथी आधुनिक काल में मैथिली भाषा के एकटा निस्सन आधार प्रदान कैलक। यह पोथी डॉक्टर सुभद्र झा के भाषा शास्त्री के रूप में संस्थापित सेहो कैलकनि। प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर सुभद्र झा मैथिली में अपन यात्रा साहित्य प्रवास जीवन के संग यात्रा प्रकरण शतक के नाम से द्विगोट पोथी के सर्जन कैलनि। एकरा अतिरिक्त नातिक पत्रक उत्तर नामक पोथी सेहो लिखलनि जाहि पर हिनका 1980 में साहित्य अकादमी के पुरस्कार प्राप्त भेलनि। मैथिली में व्याकरण मीमांसा नाम से सेहो पोथी प्रकाशित छनि। अंग्रेजी में मैथिली विषयक पोथी छनि द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज आ विद्यापति गीत संग्रह और सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। एकरा अतिरिक्त स्टडीज इन द पेम्पलाद संहिता ऑफ अथर्ववेद सरल संस्कृत शिक्षण विषय के पाठ्य ग्रंथ सेहो ई लिखलनि। मैथिली में विद्यापति गीत संग्रह आ मैथिली वृत्त ओ परिधि नाम के पोथी हिनका संपादन में प्रकाशित भेल। एकरा अतिरिक्त प्रत्यंगिरा सूक्त अथर्ववेद पेम्पलाद संहिता आनंद भट्टोपाध्याय के कर्ण संहिता भाष्य गीताक भास्कर भाष्य महाराज महेश ठाकुर के कृति सर्वदेश वृत्तांत अथवा अकबरनामा धर्मशास्त्रीय व्यवस्था संग्रह शेष कृष्णकृत प्राकृत चंद्रिका हिनकर संपादित कृति छायनि। डॉक्टर सुभद्र झा अनेक पोथी के अनुवाद सेहो कैलनि। अंग्रेजी में जर्मन सँ रिचार्ड पेशेल केर पोथी ए ग्रामर ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज केर अनुवाद कैलनि। एम विंटरनीज केर पोथी ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर एच विंडिस केर हिस्ट्री ऑफ संस्कृत फाइलोलॉजी चीनी भाषा सँ लुइस द्वारा फ्रेंच में कैल गेल अनुवाद केर अभिधर्म कोश केर अंग्रेजी में अनुवाद चीनी भाषा सँ अंग्रेजी में अनुवाद बुद्धदेव। एकरा अतिरिक्त संस्कृत में रिचार्ड पिशेल कृत प्राकृत व्याकरण तकरा संग जर्मन कर कृति अल्तन दिशे ग्रामेटिक एकर अनुवाद कैलनि। किछु एहनो अनुवाद कैलनि जे अप्रकाशित रह गेल। विद्वान लोकनि कर मानव छनि जे बाणभट्ट कृत कादम्बरी कर ई अनुवाद कैने छलाह। तहिना प्रसिद्ध ग्रंथ वर्ड्स केर मैथिली में अनुवाद कैलनि। कबीरक मैथिली पद केर संग्रह कैलनि। लक्ष्मीनाथ गोसाई केर पदावलीक संग्रह कैलनि। मैथिली भाषाक धातुकोश आ निरंजना शब्दकोश केर सर्जन सेहो कऽ रहल छलाह मुदा ई सब अप्रकाशित रहि गेल। डॉक्टर सुभद्र झा आजीविका लेल अनेक ठाम रहलाह। एम के मॉडल स्कूल कलकत्ता में 1940 में हेडमास्टर भेलाह। 1941 में सीएम कॉलेज दरभंगा में हिंदी विभाग में व्याख्याता नियुक्त कैल गेलाह। पटना कॉलेज में व्याख्याता हेबाक कारणे पटना चलि गेलाह। वाराणसी गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में सेहो काज कैलनि। जखन वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित भेल तो पुस्तकालय अध्यक्ष के संगहि व्याख्याता के रूप में सेहो कार्य कैलनि। ओहिठाम सँ 1967 में सेवानिवृत्त भ गेलाह। 1968 में योगदा संस्कृत कॉलेज रांची के प्रिंसिपल भेलाह। 1977-78 में पटना विश्वविद्यालय में एक वर्षक लेल रिसर्च प्रोफेसर सेहो रहलाह। सदाशिव केंद्रीय संस्कृत विद्यालय पूरी उड़ीसा में शास्त्र चूड़ामणि योजना के अंतर्गत सेहो रहला। डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी चेतना समिति मैथिली अकादमी संकल्प लोक आदि विभिन्न संस्था सम्मानित कऽ कऽ गौरवान्वित भेल। मैथिली भाषा के मानकीकरण आ वर्तनी निर्धारण में सेहो डॉक्टर सुभद्र झा अपन योगदान देलनि। एहि महामानव केर महाप्रयाण 13 मई 2000 के भ गेलनि। एकरा संगहि सम्पन्न होइत अछि साहित्य साधक श्रृंखला केर आजुक ई कड़ी।

0: आलेख एवं वाचन अमलेंदु शेखर पाठक कर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद। साहित्य साधक। श्रोता बंधु, आब वर्तमान में जे अक्षर साधना में जुटल छाय थी तनिको रचना कर आनंद लेल जाए। प्रस्तुत अछि उदय चंद्र झा विनोद कर काव्य पाठ।
1: कविता शीर्षक अछि कालू गाम। अनगुतिये उठवा के रिवाज रहे, अंगना सँ बहरा तक काज रहे, जनी जाति के पूजी लाज रहे, बेर एला पर क्यों नहीं बाज रहे, अनगुतिये उठवा के रिवाज रहे, बुढ़वा भई में भोरे जाइत रहे, मिरते आँख किताब पढ़ाइत रहे, पनपियाई में फाकल जाइत रहे, बिना नहे ने क्यों नहीं खाइत रहे, केरा दोगे रौद खेलाइत रहे, केरा दोगे रौद खेलाइत रहे, धोल गहुमिया जात पिसाइत रहे, बबुनी कोर पराती गावल जाइत रहे, अरिपन अंगना में अगधाइत रहे, रग रग में जौवन उधियाइत रहे, हरवाहा हट्ठा अगुताइत रहे, गिरहतनी के टांग टटाइत रहे, जयवालय बस गाम गमाइत रहे, मामा गाम महसवा जाइत रहे, बेटी गामक बुझल जाइत रहे, छोट पैग सौ बेस दखाइत रहे, गीत ब्राह्मणक गावल जाइत रहे, भगवतीक सिर छागर जाइत रहे, रही रही बड़ुआ कंठ सुखाइत रहे, जौहर में पुरहितो पताइत रहे, मधुश्रावणी आ बरसाइत रहे, मधुश्रावणी आ बरसाइत रहे, दुलकल भरिया सगुने जाइत रहे, पबनी पीपर पूजल जाइत रहे, पबनी पीपर पूजल जाइत रहे, सगरे गाम मखान बटाइत रहे, फगुआ में बड़गाल रंगाइत रहे, ननदी कुछ कुछ रंग खेलाइत रहे, हुक्का लोली भाजल जाइत रहे, मालिक दूरा भांग गोराइत रहे, पहुना गामक बुझल जाइत रहे, कोचा ओझाजीक लेटाइत रहे, जाति रहे एना नहीं जाति रहे, जाति रहे एना नहीं जाति रहे, दू विधान संग माटि पढ़ाइत रहे, बहुआ सिनक मरौत कराइत रहे, सुना सुना नहुए बतियाइत रहे, कनिया सुतली राति चियाइत रहे, डाक पीन के बाट तकाइत रहे, कृष्णक बंसी टेरल जाइत रहे, रसकुशियारक पेड़ल जाइत रहे, काकी के चरखा खो जाइत रहे, एको हम के बोध बुझाइत रहे, रुसल जमैया बौसल जाइत रहे, होइ तफरका नहीं तमसाइत रहे, खड़ा साही खेदल जाइत रहे, खेत भोज ले बेचल जाइत रहे, काज बने मुल्की कर ताइक रहे, कोठी मिली बैसावल जाइत रहे, अगहन चढ़ते धान कटाइत रहे, नबका चूड़ा खूब कुटाइत रहे, पोखरियार इनार खुनाइत रहे, तीमन संग तिलकोर तराइत रहे, चिट्ठिया दरखास्त लिखाइत रहे, छोड़ा सब नाटको खेलाइत रहे, लोक अभावो में गरमाइत रहे, ककरो नहीं भरमावल जाइत रहे, सबक देह पर गाम खेलाइत रहे, सबक देह पर गाम खेलाइत रहे, एसगरुआ नहीं सब दोसराइत रहे, एसगरुआ नहीं सब दोसराइत रहे।
0: श्रोता बंधु, अखन हमरा लोकनि उदय चंद्र झा विनोद सँ हुनक काव्य पाठ सुनि रहल छलहुँ। साहित्य चर्चा हो तो ककर मोन एहि सँ अघायत, मुदा समयबद्ध भऽ कऽ चलब तऽ आवश्यक थिक कि नहि, तऽ आउ करैत छी शब्द विमर्श। श्रोता बंधु, आई भरि दिन मेघौन केने रहल। मेघौन, मेघौन शब्द केर अर्थ थिक मेघ सँ आच्छादित आकाश, माने मेघ आकाश।

में लागल अछि मुदा मेघ पड़ल नहि। आ झाँपतोप झाँपतोप कहै छी, कखनो मेघ लागल आ कखनो मेघ हटि गेल। आ मेघ उनार कहैत छी जे मेघ लागल अछि आ क्रमशः हटि गेल, ताहि क्रियाकेँ कहै छी मेघ उनार होयब। आ सुपनि सुपनि भेल मूसलाधार वर्षा। ई प्रायः आकाशसँ सूपक सूप पानि उझिलबाक जे प्रक्रिया, ताहि कारणे बनल होयत जे आइ सुपनि वर्षा भेल तैँ बहरा नहि सकलहुँ। आ मेघडम्बर, ई मेघडम्बर जे थिक से थिक बाँसक छत्ता। जनउमे बरुआकेँ बाँसक छत्ता देल जाइ छनि ने, तकरा कहैत छी मेघडम्बर। आ उभौँ उभौँ भेल उबेर करब। ई प्रायः संस्कृतक उभ जे शब्द ह्रस्व उ आ भ हलन्त्य, ताहिसँ बनल होयत। उभ केर अर्थ होइत अछि संक्षिप्त करब, समटब। आ देखू जे जँ हमरा लोकनि एहिना गप करैत रहब तऽ घड़ी तऽ नहि प्रतीक्षा करत, ई तऽ आगाँसँ सरि जायत। तऽ किया ने घड़ी केर सङ्ग चलल जाय आ विदा लेल जाय। मुदा एकटा आग्रह, एकटा अनुरोध जे ई कार्यक्रम अपनेकेँ केहन लगैत अछि से हमरा लोकनिकेँ अवश्य लिखि पठाबी। हमरा लोकनिकर पता थिक कार्यक्रम सिंहरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिनकोड 846004। अपनेकर पत्रक प्रतीक्षा रहत। अखन कार्यक्रम सँ अगिला भेंट धरिक लेल विदा देल जाय। नमस्कार।

0: सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश

0: लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
0: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एक

0: करण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

0: विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुबरुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुबरुस के सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मज़ाहिर से मुकाबला आरई के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बरए खारजी खिदमात और कुबरुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुबरुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों

0: आधुनिक कैमरास और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: वजीर दाखला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत का यह अज्म है कि वो न सिर्फ दरअंदाजी को रोके बल्कि दरअंदाजी करने वाले फर्द वाहिद की भी शनाख्त करे और उसे निकाल बाहर करे और आबादी में गैर फितरी तब्दीली किसी हाल में भी मुमकिन न होने दे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के चांदीपुर में आज मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 की कामयाबी के साथ आजमाइश की गई। वजारत दिफा ने बताया कि ये आजमाइश तमाम कार्रवाई जाती और तकनीकी पैमानों पर खरी उतरी। ये आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान के तहत की गई। ये कामयाब आजमाइश भारत की कलेदी दिफाई तैयारी में एक और संगे मील की अलामत है और मुल्क की कम अज कम भरोसेमंद दिफाई सलाहियत पर एतमाद को मजीद तकवीत देती है। अग्नि 1 मुख्तसर दूरी का सतह से सतह पर वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत के कलीदी मिसाइल प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुल्क में ही तैयार किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में बच्चों के टीकाकारी प्रोग्राम को फरोग देने के लिए काबुल को BCG, टेटनिस और डिफ्थेरिया वैक्सीन से मुतालिक 20 टन अहम साजो सामान फराहम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा कि इस साजो सामान की मजीद खेप भेजी जाएगी। नई दिल्ली ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने के अपने अज्म का इरादा किया है। भारत की कौमी शाहराओं से मुतालिक अथॉरिटी NHAI ने टनल इंजीनियरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी और सलाहियत साजी में जदीद कंसल्टेंसी मदद के लिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI के साथ मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने अपने बयान में बताया कि ये इश्तराक भारत की कौमी शाहराओं के आलमी पैमानों के मुताबिक रख रखाव और फरोग के तई NHAI के अहद की अक्कासी करता है जहां जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की NGAI की बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरूए कार लाया जाएगा। मफाहमत नामे के तहत दोनों इदारे कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक तहकीक और तरक्की के इकदाम में एक दूसरे का ताउन करेंगे। क्वाड वज्राय खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वज्राय खारजा गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए तबादला ख्याल की बुनियाद पर खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहल के क्वाड विजन पर गौर खोज करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नूरलान यर्मबेकाइव के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इकदामात और सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और इलाकाई मामलों पर भी बातचीत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स यंग डिप्लोमेटिक फोरम और सिफारती इदारों के सरबराहान के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्तेहकाम, इख्तिरा, ताउन, पायदारी और आलमी पेशरफ में शराकत दारी के ब्रिक्स के मौजूदात पर अपने ख्याल का तबादला किया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र के शहर पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम कर रही है। CBI ने बताया कि ये नीट UG 2026 इम्तिहानात के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। CBI ने इत्तला दी है कि उन्होंने नीट UG 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे जिसे इस महीने के 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख कल तक थी। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन के वक्त बिजली की सबसे ज्यादा खपत 270.82 GW रही जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की।

0: पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रिसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी स्टेडियम में जारी आईपीएल क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तिसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम साहित्य की।

साहित्य की। श्रोताओं नमस्कार, साहित्यिकी के आज के अंक में आप सुनेंगे प्रमोद नारायण मिश्र की कहानी संकल्प। इसके बाद सुनिएगा मिथिला की साहित्यिक उर्वरता विषय पर वार्ता, आलेख भारती रंजन कुमारी का होगा और वाचन स्वर अमलनाथ ठाकुर का। कार्यक्रम के अंत में सुनिएगा शंकर प्रलामी से काव्य पाठ, लेकिन पहले संपादकीय। श्रोताओं, संपादकीय में आज हिंदी साहित्य में कहानी की महत्ता को लेकर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि कहानी आज के साहित्य का सबसे सबल अंग माना जा रहा है। समय के साथ हिंदी कहानी में भारत की नवचेतना जिस अनुपात से प्रतिबिंबित हुई है, उस अनुपात से वह कविता को छोड़कर और किसी क्षेत्र में नहीं हुई है। हिंदी में आधुनिक कहानी का जन्म 50 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। मई 1907 की सरस्वती में बंग महिला की एक कहानी प्रकाशित हुई थी। उसका नाम था दुलाई बाली। वह हिंदी की सबसे पहली कहानी थी जो आधुनिक कहानी के सबसे अधिक पास थी, परंतु इसके 4 साल बाद तक इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली कोई दूसरी कहानी प्रकाशित नहीं हुई। सन 2011 में जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा में इंदु का प्रकाशन शुरू हुआ और इसी वर्ष उसमें उनकी कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। इसमें जमींदार के अत्याचार का वर्णन था। बस इसके बाद आधुनिक कहानी की धारा बह निकली, परंतु इस धारा को वास्तविक मार्ग दिखाने वाले थे मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने पुरातन और नवीन कहानी के अंतर को स्पष्ट किया। सबसे पहले उन्होंने कहानी में मनोविज्ञान का प्रयोग किया, लेकिन आधुनिक कहानी केवल मनोविज्ञान के कारण ही प्राचीन से अलग नहीं है, उसके और भी कारण हैं। प्राचीन कहानी में अलौकिक और आकस्मिक घटनाओं की प्रधानता रहती थी, मनोरंजन उसका एकमात्र लक्ष्य था, परंतु आधुनिक कहानी में जनसाधारण तथा संयोग के स्थान पर मनोविज्ञान का प्रयोग शुरू हुआ। टेक्निक की दृष्टि से भी क्रांति

0: हितकारी परिवर्तन हुए। पुरानी कहानी का आरंभ होता था एक था राजा से और अंत जैसे उनके दिन बीते वैसे सबके बीते ऐसे किसी वाक्य से। पर आज का लेखक कथा वस्तु के बीच में से ही कहानी शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए वारंट, मेरे नाम, हां तुम्हारे नाम, मैं ना चलूं तो कानून कहता है तुम्हें चलना पड़ेगा। और अंत की तो आज किसी को चिंता ही नहीं रही है। इन सब परिवर्तनों को देखकर कहा जा सकता है कि आधुनिक कहानी में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ साथ जीवन के यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति बढ़ी। कहानी का सत्य जीवन के सत्य के समीप आने लगा। अभी आप सुन रहे थे संपादकीय, लीजिए साहित्य में प्रस्तुत है प्रमोद नारायण मिश्र की कहानी संकल्प।
1: सक्सेना साहब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वे विद्वान, समझदार और शालीन थे। पढ़ाने की विलक्षण कला थी उनमें। उनके क्लास को छात्र छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। छात्रों के बीच उनका सम्मान था। वे सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर चल रहे थे। वे शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थे। बहुत कम उम्र में ही वे विश्वविद्यालय सेवा में आ गए थे। अपरिचितों को लगता ही नहीं था कि वे इतने विद्वान प्रोफेसर हैं। छात्रों के बीच घुल मिल जाते थे। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। कई लड़की वाले शादी के लिए आए थे किंतु बात जमी नहीं थी। एक दिन अपने निजी कार से वे पटना बस से जा रहे थे। रास्ते में एक दरोगा जी बस में सवार हुए। एक भी सीट खाली नहीं थी। बस खचाखच भरी हुई थी। दरोगा जी को देखकर कंडक्टर परेशान होने लगा। उनको बैठाने के लिए वह बेचैन हो गया किंतु एक भी सीट खाली नहीं थी। कंडक्टर ने पूरे बस का मुआयना किया, फिर सक्सेना साहब के पास आकर कहा, आप सीट से उठ जाइए, दरोगा जी बैठेंगे। कंडक्टर को शायद वही सबसे सामान्य व्यक्ति नजर आए थे। कंडक्टर की बातें सुनकर सक्सेना साहब ने विरोध के स्वर में कहा, मैं क्यों सीट से उठूं? पटना तक के पैसे दिए हैं। दरोगा जी खड़े रहेंगे, यह अच्छा नहीं होगा। आपको सीट छोड़ना ही होगा। चुपचाप सीट से उठकर खड़े हो जाइए। थोड़ी देर के बाद दरोगा जी उतर जाएंगे, फिर बैठ जाइएगा, कंडक्टर ने कहा। तो सक्सेना साहब शालीनता के दायरे में ही विरोध जताते रहे। थोड़ी देर की बहस के बाद कंडक्टर सक्सेना साहब का बांह पकड़कर सीट से उठा दिया, फिर बस से उतार दिया। उन्हें इस तरह की घटना होने की उम्मीद नहीं थी। बस से उतरकर उन्होंने कंडक्टर से कहा, अपना नाम तो बता दीजिए। सुनो, मेरा नाम राम प्रसाद है। कंपनी का नाम और बस संख्या तुम्हारे टिकट पर अंकित है। मेरे ऊपर केस करोगे, शौक से करो, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इतना कहकर उसने बस को आगे बढ़ा दिया। सक्सेना साहब इस अपमान से दग्ध हो चुके थे। उन्होंने आगे की यात्रा स्थगित कर वापस विश्वविद्यालय लौट गए। वे अपना दर्द दोस्तों में बांट भी नहीं सकते थे क्योंकि वे लोग इसका मजाक उड़ा सकते थे। शादी हुई नहीं थी ताकि वे अपनी जीवन साथी के साथ दर्द बांट सकते थे। इस दर्द के नस्तर का चुभन स्वयं सह रहे थे। सारी रात उन्हें नींद नहीं आई थी। रह रह कर वही सीन आंखों के सामने आकर उनका मुंह चिढ़ाने लग जाती थी। उन्हें क्लास लेने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। अतः उन्होंने एक सप्ताह की छुट्टी ले ली और क्वार्टर में रहकर इस अपमान के दंश से मुक्त होने का असफल प्रयास करने लगे। सारी रात करवटें बदलते हुए सुबह में उनकी आंखें लग गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एसपी की कुर्सी पर बैठे हैं और कंडक्टर और दरोगा हाथ जोड़े खड़ा है। नींद टूटने के बाद भी स्वप्न का सीन को वो भूले नहीं थे। उन्हें लगा कि यह स्वप्न नहीं बल्कि मेरे अपमान की दवा है। ईश्वर ने मुझे राह दिखा दी है। उन्होंने संकल्प लिया कि आईपीएस बनूंगा। कलम बहुत चलाई है मैंने, अब कलम के साथ डंडे भी चलाना होगा। यह युग की मांग है। तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है, भय बिन होइ न प्रीत। सिर्फ शालीनता से जीवन पूर्ण नहीं होता है। अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा बनना पड़ता है। इसी सोच और संकल्प के साथ सक्सेना साहब ने संघ लोक सेवा आयोग के लिए आवेदन कर दिया। संयोग था कि 3-4 दिन पहले

0: ही विज्ञापन निकला था, उम्र कम थी ही और प्रतिभावान व्यक्ति थे ही, तैयारी में अधिक कठिनाई नहीं हुई, एक ही बार में आईपीएस में निकल गए। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उन्हें उसी जिला में बतौर एसपी नियुक्त किया गया जिस क्षेत्र में उनको अपमानित होना पड़ा था। उन्होंने कंडक्टर का नाम, बस संख्या, कंपनी का नाम के साथ दरोगा का नाम अपनी डायरी में लिख कर सुरक्षित रख दिया था। एसपी की कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने अपनी डायरी निकाली, फिर एक एक इंस्पेक्टर को चैम्बर में बुलाकर कहा, इस कंडक्टर और दरोगा को 3 दिनों के अंदर मेरे सामने पेश करो। क्या बात है हुजूर, क्या किया है इन दोनों ने? इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया। तुम दोनों को लेकर आओ, कारण नहीं पूछो, समय पर स्वयं पता चल जाएगा। तीसरे दिन इंस्पेक्टर कंडक्टर और दरोगा को एसपी सक्सेना के सामने पेश कर दिया। सक्सेना साहब ने गौर से दोनों को देखा, फिर कंडक्टर से कहा, तुम मुझे पहचान रहे हो? जी सर, आप एसपी साहब हैं, कंडक्टर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। एसपी बनने से पहले तुमने मुझे कहीं देखा था? एसपी सक्सेना ने कंडक्टर से पूछा। नहीं हुजूर, याद नहीं आ रही है। ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगी। आज से 3 साल पहले तुमने दरोगा जी को सीट पर बैठाने के लिए जबरदस्ती किसी को खींचकर बस से उतारा था। जी सर, उसने मेरी शिकायत की है क्या? उसने उतरते हुए मुझसे मेरा नाम पूछा था और मैंने क्रोध में कहा था कि जाओ केस कर देना, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लगता है उसने केस कर दिया है। क्या करता हुजूर, मैंने उससे आग्रह किया था कि सीट से उठ जाए, दरोगा जी बैठेंगे, किंतु उसने बहस शुरू कर दी थी, हार कर जबरदस्ती मुझे बस से उसे उतारना पड़ा। कंडक्टर ने अपनी सफाई दी। इस व्यक्ति ने तुम्हारी शिकायत नहीं की है, बल्कि जिस यात्री को तुमने अपमानित कर बस से उतारा था वह मैं ही था। इतना सुनते ही कंडक्टर के होश उड़ गए, वह भय से कांपने लगा। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हुजूर मैंने मजबूरी में ऐसा किया था, दरोगा जी को सीट नहीं देता तो बस को डिटेन कर देते, हम गरीबों का नसीब ही खोटा है, कम आमदनी पर मालिक की डांट सहते हैं, फिर पुलिस वाले और रंगदारों का भी धौ सहना पड़ता है, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। ठीक है, आज से तुम कसम लो कि किसी भी यात्री को अपमानित नहीं करोगे। मैं कसम खाता हूँ कि किसी भी यात्री के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा, कंडक्टर ने कहा। एसपी सक्सेना ने कहा, मैं जब तक इस जिले में हूँ किसी तरह की समस्या रास्ते में आवे तो सीधे मेरे पास आ जाना, तुम्हारे अपमान के कारण ही आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, जाओ अपने काम में लग जाओ। कंडक्टर के जाने के बाद एसपी सक्सेना दरोगा की ओर गौर से देखते हुए कहा, दरोगा जी आप मेरा अपमान देखते रहे और अपनी मूंछों पर हाथ फेरते रहे, पुलिस का काम सुरक्षा देना है न कि अपराध को बढ़ावा देना। वैसे भी आपकी राम कहानी की जानकारी मुझे मिल चुकी है, आपके साथ क्या किया जाए, हुजूर मुझे माफ कर दिया जाए, कभी ऐसी गलती फिर नहीं होगी, दरोगा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आपका अपराध माफी योग्य नहीं है, अतः आज से ही आपको लाइन हाजिर किया जाता है। इतना कहकर एसपी सक्सेना चैम्बर से निकल गए। आज वे बहुत हल्का महसूस कर रहे थे, अपनी ईमानदारी, सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण सक्सेना साहब बहुत जल्द प्रदेश के चर्चित पुलिस अधिकारी बन गए थे, बराबर प्रमोशन भी उन्हें मिलता गया और कुछ ही वर्षों में वे आईजी बन गए। वे विद्वान तो थे ही, अच्छे वक्ता भी थे, अतः बड़े बड़े समारोहों और सेमिनारों में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाने लगा। अपने उद्बोधन में हमेशा युवकों को प्रेरित करते रहते थे। वे हमेशा कहा करते थे कि दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बल पर सफलता मिल सकती है। उनका कहना था कि हर संकट में सौभाग्य छिपा होता है, हर अपमान में सम्मान छिपा होता है, अतः इन बातों से घबराना नहीं चाहिए, डटकर इसका मुकाबला करना चाहिए, सफलता निश्चित मिलेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रमोद नारायण मिश्र की कहानी संकल्प, और अब प्रस्तुत है वार्ता मिथिला की साहित्यिक उर्वरता। आलेख भारती रंजन कुमारी का, वाचन स्वर अमलनाथ ठाकुर का।
2: उगना रे मोर कतय गेला शिव किदोह भेला। यही मिथिला की धरती जहां शिव उगना बनकर किसी के घर जन्म लिए थे। उनका नाम विद्यापति ठाकुर था, उनका जीवन और साहित्यिक

योगदान मिथिला वासियों के लिए वैसा ऋण है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। वर्तमान के मधुबनी जिले के बिस्फी में गणपति ठाकुर के घर जिस बालक ने जन्म लिया उसने अपनी विद्वता से साहित्य को देश ही नहीं विदेशों में पहचान दिलाई। इनके जन्म के वर्ष में मतांतर पाया जाता है। उन्होंने मैथिली लोक भाषा को जन चेतना का मार्ग बनाया। विद्यापति मैथिली बंगला और संस्कृत के विद्वान थे। उनका शिवनाचारी गोसौनी के गीत राधा कृष्ण संबंधी श्रृंगारक गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अभट्ट में कृतलता और कीर्ति पताका भी लिखा था। विद्यापति ठाकुर ने संस्कृत में भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लेखनावली, विवाह सागर, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति और तरंगिणी लिखा। उन्होंने मैथिली में संस्कार गीत जैसे जन्म मुंडन नामकरण सोहर उपनयन विवाह विधि गीत पूजा एवं अन्य उत्सव गीत भी लिखे जो आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। विद्यापति के मृत्यु को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग उनका मृत्यु स्थल भी विस्फी ही बताते हैं जबकि कुछ लोगों के अनुसार आधुनिक बेगूसराय के मऊबाजिदपुर विद्यापति नगर के गंगा तट पर उन्होंने प्राण त्यागे। नागार्जुन साहित्य के वैदेह जिनकी कविताएं भी वैदेह उपनाम से लिखी गई है। बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था मगर उन्होंने नागार्जुन और यात्री के नाम से साहित्य जगत में महारत हासिल किया और मिथिला जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जग जाहिर था को अब साहित्य में भी ख्याति मिलने लगी थी। इन्होंने मैथिली हिंदी संस्कृत और बंगला में अपनी रचनाएं लिखी। विद्यापति के गीतों और गीत गोविंद का भावानुवाद भी किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बाबा नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी जो 1929 में लहेड़िया सराय दरभंगा से प्रकाशित पत्रिका मिथिला में छपी थी। उन्होंने मेघदूत का मुक्त छंद में अनुवाद भी किया था। उनकी मुख्य रचनाएं कुछ इस प्रकार से है युगधारा भूमिजा रत्नगर्भ अपने खेत में जो नहीं हो सके पूर्ण काम अकाल और उसके बाद शासन की बंदूक तीनों बंदर बापू के घिन तो नहीं आती है कल और आज कालिदास पुलिस अफसर उषा की लाली आदि कई ऐसी रचनाएं लिखी जो सामाजिक भेदभाव और मन के भावों को प्रकट करता है। नागार्जुन की बंगला रचनाएं भी अद्भुत रही। इनकी रचनाओं में वामपंथी विचारधारा भी झलकती है। 1921 ज्येष्ठ पूर्णिमा को दरभंगा के तरोनी में जन्म लिए श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ उपन्यासकार रहे। मैथिली काव्य पत्रहीन नग्नगाश के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्कृत में लेलिन स्तोत्रम देश दशकम चिनार स्मृति मिजोरम भारत भवनम डल झील आदि रचनाएं हैं जो साहित्य और देश को अपनी संस्कृति से जोड़ता है। मिथिला के साहित्यिक उर्वरता की बात हो तो रामधारी सिंह दिनकर को कैसे भूला जा सकता है। कुछ दिनों पूर्व 23 सितंबर को मनाया गया जिनका जन्मदिन और जिनका जन्म वर्तमान के बेगूसराय के सिमरिया घाट में 1908 में हुआ था। वे वीर रस के कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। दिनकर स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाने गए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। उनकी रचनाओं में ओज विद्रोह आक्रोश और क्रांति की पुकार थे तो दूसरी तरफ श्रृंगारे के भावनाओं की अभिव्यक्ति भी उनकी कविताओं में रही। कुरुक्षेत्र और उर्वशी उनकी मुख्य कृतियां हैं। 1942 का जेपी आंदोलन के बाद साहित्य के पटल पर प्रमुखता से लिखना शुरू किया। 1950-52 में लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहते हुए रश्मिरथी लिखा जिसे आज का आधुनिक गीत कहा जाता है। संस्कृत के चार अध्याय भी उन्होंने वहीं लिखना शुरू किया था। हिंदी और मैथिली के एक और विख्यात कवि हुए आरसी प्रसाद सिंह। इनका जन्म 19 अगस्त 1911 को एरौत गांव समस्तीपुर जिला में हुआ था। इनकी रचित कविताओं में जीवन का झरना कविता बहुत प्रसिद्ध हुई। मैथिली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी की ओर से इन्हें सम्मानित भी किया गया। खगड़िया के कोसी कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक की नौकरी की, इलाहाबाद में आकाशवाणी की नौकरी की, नौकरी छोड़कर लखनऊ में बहुत दिनों तक रहे और साहित्य को गति देते रहे। उसके बाद लंबे समय तक मुजफ्फरपुर में रहे। 15 नवंबर 1996 को कुर्जी पटना

0: पटना के अस्पताल में इनका निधन हो गया। नंददास संजीवनी, रजनीगंधा, कुंवर सिंह इनके प्रमुख काव्य रहे। पंच पल्लव, खोटा सिक्का, काल रात्रि, एक प्याला चाय, आंधी के पत्ते इनका मुख्य कहानी संग्रह था। मैथिली कविता में माटिक दीप, पूजा का फूल, मेघदूत और सूर्यमुखी प्रसिद्ध रहा। आरसी प्रसाद सिंह ने बच्चों के लिए भी कई कहानियां, चंदा मामा, चित्रों में लोड़ियां, ओना मासी, राम कथा, जादू की वंशी, कागज की नौ, बाल गोपाल, हीरा मोती, कलम और बंदूक, जगमग इत्यादि लिखे। मिथिला की साहित्यिक उर्वरता। अभी आपने ये वार्ता सुनी, आलेख भारती रंजन कुमारी का था और वाचन स्वर अमलनाथ ठाकुर का। साहित्य के अंत में लीजिए प्रस्तुत है शंकर प्रलामी से काव्य पाठ।
1: मेरी कविता का शीर्षक है अहिल्या। क्षमा करो माँ मुझे और उन्हें भी, मुझे कि करता रहा बस प्रतीक्षा मैं भी, उगते डूबते आजकल की, अचक धमक जाने वाले किसी जादुई पल की, मुझे कि करता रहा बस प्रतीक्षा मैं भी, उगते डूबते आज कल की, अचक धमक जाने वाले किसी जादुई पल की, पता नहीं तुम्हारा मौन युग लांगता आ पहुंचा मेरी सांसों के अनुलोम विलोम तक। क्षमा करो उन्हें किए हैं जिन्होंने अपराध अक्षम्य, अपराधी थे कामी इंद्र का पुरुष गौतम, पाषाण हुई तुम। क्षमा करो उन्हें किए हैं जिन्होंने अपराध अक्षम्य, अपराधी थे कामी इंद्र का पुरुष गौतम, पाषाण हुई तुम। तुम की लज्जा, लज्जा की एक था देवराज, लज्जा की एक था देवराज, देवों की दुनिया जहां शीश नवाती थी, लज्जा की एक था ऋषि, सितारों में लिखा था जिसका नाम, प्रश्न यक्ष पक्ष अर्थहीन थे, प्रश्न पक्ष यक्ष अर्थहीन थे, शोक तो उस पौरुष की अनुगूंज में कब का डूब गया, जो ऋषि की लहकी जुबान से उभरा था, इंद्र कृष्टा तू। शोक तो उस पौरुष की अनुगूंज में कब का डूब गया, जो ऋषि की लहकी जुबान से उभरा था, इंद्र कृष्टा तू। इंद्राणी सची नहीं आई, इंद्राणी सची नहीं आई, अनसुईया, अरुंधति, गार्गी, लोपा, लोमसा भी नहीं, ना ही कोई देवांगना। इंद्राणी सची नहीं आई, अनसुईया, अरुंधति, गार्गी, लोपा, लोमसा भी नहीं, ना ही कोई देवांगना। झुलस गया तेरा स्वातांग, झुलस गया तेरा श्वेतांग, सुलग उठा तेरा अंतस, राख न हो सकी, कोयला हुई तुम स्याह पाषाण, राख न हो सकी, कोयला हुई तुम स्याह पाषाण, इधर अतिचार ने तुम्हें छत विछत किया, इधर अतिचार ने तुम्हें छत विछत किया, उधर पापनाशिनी दिव्य वंदनवार में टांग दी गई तुम। विभत्स वंदनवार में तुम कहाँ थी, विभत्स वंदनवार में तुम कहाँ थी, वहां तो घोड़े का नाद था, यह तो अग्निगर्भा पांचाली थी, जिसने छठा नाल ठुकवाने के पहले ही खूर खुजाते अश्व का पुट्ठा उखाड़ कर किस्सा खत्म कर दिया। उत्तर कथा और भी बर्बर, उत्तर कथा और भी बर्बर, तुम्हारी आंखों में पसरे बियाबान ने किन्हीं कदमों की आहट दी थी, चाप ने चुप्पी तोड़ी थी, पाषाण भीगा था, सियाही पिघली थी, वह सचमुच आया था, वह सचमुच आया था, मर्यादा का मान लिए, पुरुषोत्तम का भान लिए, नैनों में तुम्हारे मुक्ति के मेघ घूम रहे थे, पुरुषोत्तम का भान लिए, मर्यादा का मान लिए, नैनों में तुम्हारे मुक्ति के मेघ घूम रहे थे, आंचल में वात्सल्य उमड़ा था, अधरों की पपड़ियों में स्वर मचला था, आगत के कलेजे से लगकर तुम रोना चाहती थी, आगत के कलेजे से लगकर तुम रोना चाहती थी, युगांधर की गठरी उसके कांधे रख तुम एक नींद सोना चाहती थी, चौंक पड़ी थी तुम तभी एकाएक आगत ने नहीं कहा माँ क्षमा करो, आगत ने नहीं कहा माँ क्षमा करो, जघन्य हुआ है, अपराध किया है मेरे पुरखों ने, स्खलित करूंगा मैं उन्हें स्वर्ग से, सितारों से, मर्यादा का व्रत ले रखा है मैंने, त्रेता पुरुष नहीं, त्राता भी नहीं, मैं तेरा पुत्र हूँ राम, युगों से ठहरे मेरे आंसू गिरने

0: दो अपने चरणों पर, गहने दो अपने पांव, कर लेने दो प्रायश्चित अपने पितरों के पाप का। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगत ने पांव के अंगूठे से तुम्हारे उद्धार का कृत्य किया, आगत ने पांव के अंगूठे से तुम्हारे उद्धार का कृत्य किया। निष्प्राण हो गई तुम, पाषाण भी कहां रह गई? निष्प्राण हो गई तुम, पाषाण भी कहां रह गई? क्षमा करो उन्हें भी, अपने पितरों से अलग नहीं थे वह। क्षमा करो उन्हें भी, अपने पितरों से अलग नहीं थे वह। पुरुष ही थे, सीलवान, उनके अंगूठों में संरक्षित होता है तुम्हारा सील, और बचा रहे अंगूठों में सील, सो वे नहीं जन्मते तुम्हारी कोख से, अवतरित होते हैं और हो जाते हैं युग पुरुष। बचा रहे अंगूठों में सील, सो वे नहीं जन्मते तुम्हारी कोख से, अवतरित होते हैं और हो जाते हैं युग पुरुष। माँ सिले, माँ सिले, पूछना सीता जो कहीं मिले, माँ सिले, पूछना सीता जो कहीं मिले, कर सको तो क्षमा कर दो उन्हें, उन्हें, उन्हें और मुझे भी, उन्हें, उन्हें, उन्हें और मुझे भी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है वह आंगन अब मेरे गांव में नहीं है, वह आंगन अब मेरे गांव में नहीं है। बार बार जाता हूं गांव कि ढूंढ कर रहूंगा वह आंगन, बार बार जाता हूं गांव कि ढूंढ कर रहूंगा वह आंगन, जा बैठूंगा किसी मड़ैया में, दालान पर, अगवारे पिछवारे, कहीं भी सुन सकूं जहां से धान कूटते मूसल के गीत, उखल के अनुभव विभाव से उठते हेमंत राग, लय से एकसार होती सांसों की हाँफ, चूड़ियों की बंदिश, ठिठोलियों से निकलती हंसियों की रहट, श्वास उच्छ्वास की औरस, जीजी विशा का कोरस, कि देख सकूं जहां से कलाई केहनू की सुलह, कलाई केहुनी की सुलह कराता कंगनों का मनुहार, कानों में लुतरी लगाते बुंदे बाली झुमके, नकबूटे को छू छू कर सतरंगा होता सूरज, नागन में बलखाती चोटी, पुरैन के पाट पर बंधन सा लरसता कबंध, हर धमक थिरकता यौवन, मस्त बेपरवाह श्रम का उछा, कि भर सकूं जहां अपने रंध्र रंध्र में वह गंध फिर से, गंध माटी की, गूढ़े भूसे की, खिज्जा धान के कच्चे दूध की, अगहन मांस की, लसियाए बदन के, बसियाए बास की, प्राणों के सुवास की, मगर लौटा हूं फिर एक बार निराश, मगर लौटा हूं फिर एक बार निराश। तीसरी कविता का शीर्षक है विकास का राष्ट्रगान, विकास का राष्ट्रगान। ऊंची ऊंची मीनारे हैं, मीनारों पर स्वर्ण कलश है, स्वर्ण कलश में हर निदान है। ऊंची ऊंची मीनारे हैं, मीनारों पर स्वर्ण कलश है, स्वर्ण कलश में हर निदान है। जम्बू द्वीप है जगमग जगमग, इत उत सगरे उत्सव उत्सव, हम दस में दुनिया के सौ में, दौड़ रहे अपनी ही रौ में, कुछ भी ले लो कुछ भी दे दो, खूब बिको या खूब खरीदो, द्वार द्वार उल्लास गान है, ऊंची ऊंची मीनारे हैं, स्वर्ण कलश में हर निदान है। वह डायनासोर पे बैठा, वह डायनासोर पे बैठा, बस्ती जंगल हांक रहा है, लील रहा रोटी लंगोटी, हीरे मोती उगल रहा है, होरी धनिया घीसू माधो, पेट पकड़ सब देख रहे हैं, अंतरिक्ष में चंद्रयान है, ऊंची ऊंची मीनारे हैं, स्वर्ण कलश में हर निदान है। सोन चिरैया के चूजे अब खंभों पे पर तोल रहे हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे वो, तारों में उलझी पतंग में, शायद आंखों में उतरे हों, पेड़ डाल पत्तों के सपने, कितना ऊंचा आसमान है, चरके देखो मीनारों पर वह अपना ही अस्थि कलश है, चरके देखो मीनारों पर वह अपना ही अस्थि कलश है, अभी अस्थियां मरी नहीं है, जी उठने की आस लिए वह मीनारों पर नित जलती है, मज्जा के संग चट चट फट फट, यह विकास का राष्ट्रगान है। ऊंची ऊंची मीनारे हैं, मीनारों पर स्वर्ण कलश है, स्वर्ण कलश में हर निदान है, स्वर्ण कलश में हर निदान है।
1: अभी आप सुन रहे थे शंकर प्रलामी से काव्य पाठ। इसी के साथ साहित्य के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब समाप्त होते ही। सूत्रधार अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्र।

प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। यह आकाशवाणी दरभंगा है, कृपया अगले कार्यक्रम की थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। अगला कार्यक्रम होगा फरमाइशी फिल्मी गानों का। हेलो आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,

दिल की गली में चांद निकलता रहता है। दिल की गली में चांद निकलता रहता है, एक दिया उम्मीद का जलता रहता है। जैसे जैसे यादों की लौ बढ़ती है, जैसे जैसे यादों की लौ बढ़ती है, वैसे वैसे जिस्म पिघलता रहता है। नमस्कार श्रोताओं, उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है हेलो आकाशवाणी। फरमाइशी फिल्मी गानों का ये फोन इन कार्यक्रम है जो कि 11 बजे तक जारी रहता है आपके लिए। इस कार्यक्रम में अभी के अभी जुड़ने के लिए यानी कि 11 बजे तक के जारी रहने वाले इस कार्यक्रम में जीवंत अर्थात लाइव जुड़ने के लिए आप हमें उसी नंबर पे कॉल करें जिस नंबर पे आप करते आ रहे हैं, यानी 9430029353 9430029353।

0: 3353। हमें आपके कॉल्स का इंतजार है। मंजर मंजर जी लो जितना जी पाओ, मंजर मंजर जी लो जितना जी पाओ, मौसम पल पल रंग बदलता रहता है। बिल्कुल मस्ती की जिंदगी जितनी आपको मिलती है वो जी लें, और हम उस जिंदगी को और भी ज्यादा मस्ती भरी बनाने के लिए आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है हेलो आकाशवाणी। तो बस एक जिंदगी की खुशी देता हुआ ये कार्यक्रम जिसमें मस्ती ही मस्ती है, आपके दिलों को ठंडक मिलती है, आपके रात में जो नींद आपकी होती है उस पे आप महसूस करते होंगे इस कार्यक्रम के बाद क्या आराम आपको मिलता होगा। तो देर किस बात की करें, आप हमें इस नंबर पे बताए गए नंबर पे कॉल, हमें आपके कॉल का इंतज़ार है। और देखिए कॉल हम तक आ भी गया। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर
0: जी, परिचय दें अपना और रेडियो सेट से दूर हो जाएं थोड़ा।
1: सर मैं सुमंगलपुर से बोल रहा हूँ, मेरा घर सुमंगलपुर है, मधुबनी जिला और पन्नौल ब्लॉक पड़ता है।
0: रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाएं ना, ना तो आपकी आवाज हम सुन पाएंगे ना श्रोता। रेडियो सेट से दूर हो जाएं जी।
1: सिस्टम कर
0: दें जी जी। आप शुभंकरपुर मधुबनी से बात कर रहे हैं? जी हाँ
1: जी, शुभंकरपुर मेरा घर, नाम हुआ फूल कुमार राय।
0: अच्छा फूल कुमार जी, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले कभी कॉल किया इस कार्यक्रम में?
1: जी इसमें मैं दो तीन बार हम बात हुई है।
0: अच्छा अच्छा, तो आज कार्यक्रम में आपका पहला कॉल शामिल हुआ है, फरमाइश बता दे।
1: जी जी जी, मेरा फरमाइश है सरगम फिल्म का गाना है कोयल बोली दुनिया डोली,
0: समझो दिल की बोली। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना हम आपके लिए पहुंचा रहे हैं मधुबनी ज़िला के शुभंकरपुर में। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए ये गाना।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम, परिचय दें अपना।
1: मैं लाल पोखर नगर दरभंगा से मोहम्मद कलीम बोल रहा हूँ सर।
0: कलीम साहब, स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आप अपना बताइए सर।
0: हाँ, मालिक की कृपा बनी हुई है, आप लोगों का प्यार, हाँ आप लोगों का प्यार शामिल है तो मालिक की कृपा बनी हुई है।
1: मैंने तो 6 महीने के बाद ही फोन लगाया है।
0: जी जी, तो कहाँ रहते हैं इतने दिनों तक?
1: हमें क्या है कि हम तो चले गए थे बाहर, लेकिन बाहर से आए तो अचानक याद पड़ गया या सज्जाद भाई का ड्यूटी हो गया तो हमने कॉल लगा ली है। इस दफा की कॉल भी लग गया मेरा।
0: फरमाइश बताए।
1: आज फरमाइश है धर्मवीर फिल्म का गाना है, मोहम्मद रफी की आवाज में है, हम बंजारों की बात मत पूछो।
0: जी, मोहम्मद रफी नहीं, लता मंगेशकर जी की आवाज में हम देख रहे हैं। हाँ जी, तो आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए ये गाना आपके लिए।

0: नमस्कार नमस्कार जी,
1: ये परिचय देंगे अपना?
0: सहोरा आनंदपुर से बोल रहे हैं, रामविलास साहब।
1: रामविलास जी, स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं,
1: मालिक की कृपा है।
0: साल तो मेरा बहुत दिन से लगाते लगाते, लेकिन आज से बहुत भाग से लग गया
1: है। यही तो है कि अगर मन से जो है ना काम किया जाता है तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आज लगता है कि बिल्कुल मन से आपने कॉल लगाया और हम तक ये कॉल पहुंचा है, हमें भी काफी खुशी हो रही है जी। और कैसे हैं आप?
0: हर सोमवार शुक्रवार को 10 से 11 बजे तक लगाते रहते हैं, लगने
1: जी। फरमाइश बता दें अपनी आज कार्यक्रम में।
0: फरमाइश एक कुल दो मालिक का।
1: कौन सा गाना?
0: पर्दा।
1: अच्छा, पहुंचा रहे हैं आपके लिए ये गाना, सहोरा आनंदपुर में आपके लिए ये गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्ते सर, आकाशवाणी स्टार मेरी तरफ से नमस्ते और जितना भी सुनने वाले सबको मेरी तरफ से नमस्ते
0: जी। परिचय देंगे अपना?
1: मेरा नाम है चंद्रेश्वर का, ब्रह्मपुर पूर्वी जाले प्रखंड से बोल रहे हैं सर।
0: अच्छा, ब्रह्मपुर जाले से जी। क्या नाम बताया आपने?
1: चंद्रेश्वर शाह।
0: चंद्रेश्वर शाह जी, स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं?
1: ठीक है सर, आप लोगों का आशीर्वाद से ठीक है। आप लोगों का टाइम पास करते हैं और आपका भी इंतजार करते हैं कि आप लोगों से दो बात हो जाती है, बहुत सुकून मिलता है, दिन भर की थकान नहीं होती जाता है एक हफ्ते की, और आप लोग से थोड़ा ज्ञान भी हासिल हो जाता है। दस तरह के दस गांव से आदमी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सभी भाइयों से,
0: सब लोगों से बात सुन करके सभी के ज्ञान में वृद्धि होती है। हम नई नई बातें भी सुनते रहते हैं कहीं के अलग अलग क्षेत्रों से जो कॉल आते हैं। तो जी, तो आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: देवर फिल्म देवी दोनों में कोई गाना है।
0: अच्छा,
1: सबका नसीब है कि अपने अपने किया की।
0: हमारे पास अभी मौजूद है वो क्या कहते हैं, रूठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे जी,
1: अच्छा।
0: चलिए, तो आपके लिए हम पहुंचा रहे हैं ये गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार
1: नमस्कार श्रीमान
0: जी, परिचय दें श्रीमान जी अपना।
1: जी मैं राम कुमार सार सिमेलिया पंचायत कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ
0: जी। स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: जी
0: बढ़िया
1: जी, कृपा है आप लोगों की और ईश्वर की कृपा से मैं
0: कृपा तो मालिक

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार
1: नमस्कार श्रीमान
0: जी, परिचय दें श्रीमान जी अपना।
1: जी मैं राम कुमार शाह पंचायत कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: जी
0: बढ़िया
1: जी, कृपा है आप लोगों की और ईश्वर की कृपा से मैं
0: बस। कृपा तो मालिक की होती है, हम लोगों का तो बस आशीर्वाद होता है या प्यार होता है, दुलार होता है।
1: जी जो कहा जाए वो
0: जी। तो फरमाइश आज क्या है आपकी?
1: फरमाइश है भाभी का है, चल उड़ जा रहे पंछी की अभी देश हुआ बेगाना। थोड़ा सैड न्यूज है लेकिन धुन जो है अच्छा लगता है।
0: सैड गाना है लेकिन धुन इसका बहुत प्यारा है और शब्द भी बहुत अच्छे हैं। शब्द बिल्कुल सच्चाई है ना। शब्द जो है हमारी आज की जो या पहले की भी कभी की भी समाज की जो सच्चाई है उसको बयान कर रहा है ये गाना। तो बड़ा अच्छा प्यारा गाना आपके माध्यम से हम भी सुनते हैं, आपके सिमरिया भिंडी पंचायत में ये पहुंचा रहे गाना। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएं।
1: मुबारकपुर से अक्रम बोल रहे हैं, नाम कुछ वरना पीला।
0: जी इस्तकबाल, स्वागत। कैसे हैं अक्रम भाई?
1: हाँ
0: सब बढ़िया।
1: हाँ सब।
0: दिल्ली में मौसम कैसा है आज के दिन में?
1: हाँ तो गर्मी है,
0: पिछले दिनों में लेकिन काफी बारिश हुई है ना?
1: नहीं तो यहाँ तो नहीं हुआ है, सहारे में हो रहा।
0: अच्छा जी, फरमाइश बता दें।
1: अनारी का है?
0: जी नहीं, अनारी का तो नहीं है। भरोसा का हम सुनवा सकते हैं आपको? चलिए तो भरोसा का गाना हम आप तक पहुंचाएं। जी आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, सुनिए ये गाना।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
0: परिचय दें।
1: मेरा परिचय है, मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश से। आपसे मेरी कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गई, 1.5 साल हो गई।
0: सतीश जी, आप तो बिल्कुल गायब हो गए, फर्रुखाबाद से कॉल आना ही बंद हो गया आपका, जबकि हम तो याद करते रहते हैं भाई।
1: क्या आपको बताना है, आपके आपके चैनल पे दिक्कत आ रही है, जियो से लगता नहीं है, तो मैं लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं,
0: देखिए देखिए नेटवर्किंग प्रॉब्लम हर तरह की जो कंपनियां हैं उसमें कभी कभी आ जाता है, प्रयास कीजिए जी। अच्छा, तो आज आपका कॉल शामिल हो गया है, आज बताएं आपकी फरमाइश क्या है सतीश जी।
1: आज जो नंबर लगाया, एयरटेल से लगाया, सब लगा
0: जी। आप अपनी फरमाइश बता दें।
1: और फरमाइश है, मैं भी फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, और जाने लोग किया मोहब्बत किया करते हैं, शुद्ध रंगा का मौसम कैसा है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया है, आपके लिए हम ये गाना पहुंचा रहे हैं, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए ये गाना फिल्म महबूब की, मेहंदी का।

0: इस समय आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। ये कार्यक्रम जारी है। एक कार्यक्रम संबंधी सूचना है जो आप तक हम पहुंचा दें। सूचना इस प्रकार से है कि श्रोताओं, गर्मी के मौसम में अगर सावधानी न बरती जाए तो लू लगने के अलावा स्वास्थ्य संबंधी कई अन्य समस्याएँ भी हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर फुलेश्वर झा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर होंगे 9430029353, यानी 9430029353। दूसरा नंबर होगा 06272222481, अर्थात 06272222481। समय याद रखेंगे रविवार 24 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई और अब कॉल एक आ गया है हम तक। जानते हैं कौन साहब हैं। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, परिचय दें श्रीमान जी।
1: मैं आपसे बात कर रहा हूँ
0: प्रभाकर जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं और आप बताइए अपने बारे में।
1: जी बहुत बढ़िया।
0: क्या करते हैं
1: सर? पढ़ाई चल रहा है।
0: अच्छा, पढ़ाई चल रही है। और आकाशवाणी दरभंगा सुनते हैं आप?
1: पहले सुनते थे लेकिन 2 साल से देखे हैं कि मेरे वगैरह का घर में था, जाना
0: जी। तो आज आपका कॉल शामिल हो गया है कार्यक्रम में, फरमाइश बता दें। जी, आपके लिए पहुंचा रहे हैं मंजिल फिल्म का ये गाना है। जी, आपके लिए पहुंचा रहे हैं मुजफ्फरपुर में। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए ये गाना।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर,
0: परिचय दें अपना।
1: मैं प्रशांत कुमार सतंगी रत्नपट्टी दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। प्रजात भाई, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर
0: कैसे हैं प्रशांत भाई?
1: बस मालिक की कृपा है, मालिक की मेहर है, बस स्वस्थ हो, निरोग हो, अपना काम कर रहा हूँ सर।
0: बिल्कुल, देखिए जो संतोष धन जिसको मिल जाता है ना, उसको कहते हैं कि किसी और धन की आवश्यकता नहीं। आपकी बातों से लगता है कि आपके पास संतोष धन है, कि आप स्वस्थ हैं, मस्त रह रहे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल, सभी लोग यहाँ अपने काम में लगे हुए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ये मेरा भी मानना है। सब अपनी जगह योगदान दे रहे हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, और कोई किसी से कम नहीं है। तो अच्छा लगा, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी हमको, जिस अंदाज में आपने कहा कि अपने काम में लगे हैं। जी
1: जी सर, जी सर।
0: और मौसम का क्या असर हो रहा है आपकी तरफ?
1: सर कल तो मौसम बहुत खराब हो गया था सर। मैं उस समय विद्यालय में था और ऐसा तेज आंधी का बहाव आया कि पूरा बच्चे लोग लगा कि बह जाएंगे, उड़ जाएंगे।
0: आपके क्षेत्र में जो है ना, आपके क्षेत्र में वृक्ष काफी हैं, काफी बागान हैं, और विशेषकर आम के बागान काफी हैं आपकी तरफ, है ना?
1: जी बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: तो उस तरफ थोड़ा सा राहत भी गर्मी में मिलती होगी आपको।
1: जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। गांव और शहर दोनों का मिश्रण जो है हमारा एरिया है सर।
0: चलिए फरमाइश बता दीजिए आज आप अपनी।
1: जी रफी साहब का एक गाना है सर, मेरे हमदम मेरे दोस्त का, कोई शाम,
0: ये उनका ख्याल आ गया।
1: जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: बिल्कुल। आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये गाना, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। सुनिए रत्नपट्टी
1: सर, आपको बहुत बहुत

तो ये गीत था इस कार्यक्रम की अंतिम भेंट। आपको बता दें, आप जो ये कार्यक्रम सुन रहे थे, फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, इसे आप तक पहुंचाने में जो योगदान रहा वो इसके प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक थे असद दाऊद, और मैं था आपके साथ सज्जाद अहमद खान। अगले अंक में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, बात होगी, सुनेंगे आपकी बातें, पूरी करेंगे आपकी फरमाइश। इससे पहले कि आपसे विदा लें, चलते चलते अज़ीज़ इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अज़ीज़ इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो

0: के दम निकल जाए। मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, कि जाने कौन कहाँ रास्ता बदल जाए, कि जाने कौन कहाँ रास्ता बदल जाए। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: हेलो आकाशवाणी,

0: हेलो आकाशवाणी, ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का फ़ोन इन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
4: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी।

तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।